12.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: FM 102 और FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC+ ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है।

0: संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी कोटाबूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

इस जीवन में हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये दो ही लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। ये दोनों ही हमारे भीतर हैं। ईश्वर की हर रचना अपने आप में बेहतर है, अद्भुत है। तो आइए उसी परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हैं और वंदन करते हैं।

जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा ही है, वहाँ भय कैसा। जहाँ भय रहित अभयता है वो घर, वो स्थान परम स्थान है, परमात्मा का वहाँ निवास है और वो हमारे

प्रेम और नम्रता एक ऐसी महक है जिसकी खुशबू से परम पिता भी मनुष्य की तरफ खींचे चले आते हैं। प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का प्रमाण है।

की डोरी दिखाई तो नहीं देती, लेकिन मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को हमसे बांध सकती है। बांधना अर्थात भक्ति द्वारा वो डोर हमसे हमेशा जुड़ी रह सकती है।

अगर आपको शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो सिर्फ समर्पण करें।

भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्चना में आज आपने सुना लता मंगेशकर, तुलसी कुमार, अनुराधा पौडवाल व सूरज कुमार के स्वरों को। और इसी के साथ भक्ति संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।

मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्या वासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं, मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुरवासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर था सुरेश वाडकर का, आकाशवाणी कोटा के इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब आबोहवा में सुनिए वार्ता। विषय है विश्व महासागर दिवस। वार्ताकार हैं हिमांशु नामा।
1: श्रोताओं, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। विश्व में समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी। पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को मनाया गया था। इसके बाद से प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व भर में यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नाम के फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद और वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद मनाया जाने लगा। साथियों, महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ महासागरों से ही माना जाता है। महासागर असीम जैव विविधता का भंडार है। हमारी पृथ्वी का लगभग 70% भाग महासागरों से घिरा।

0: है। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल का 97% जल महासागरों में समाया हुआ है। पृथ्वी पर मुख्यतः 5 महासागर हैं, जिन्हें प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर के नाम से जाना जाता है। महासागरों का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्व मानव के लिए इन्हें अति महत्वपूर्ण बनाता है। इसीलिए महासागरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग और जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डालना इस दिन का उद्देश्य है। हर साल पूरे विश्व में महासागर से जुड़े विषयों पर विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, जो महासागरों के सकारात्मक पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैव विविधता से संपन्न होने के साथ ही महासागर धरती के मौसम को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं। समुद्री जल की लवणता और विशिष्ट उष्माधारिता का गुण पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करता है। मौसम के संतुलन में समुद्री जल की लवणता जीवन के लिए एक वरदान है। यदि महासागर न होते तो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली धाराएं सक्रिय न होती और पृथ्वी पर तापमान जीवन के पनपने लायक नहीं बन पाता। जलवायु के निर्धारण में महासागरों का महत्वपूर्ण योगदान है। पृथ्वी के विशाल क्षेत्र में फैले अथाह जल का भंडार होने के साथ महासागर अपने अंदर और आसपास अनेक छोटे छोटे परितंत्रों को पनाह देते हैं, जिससे उन स्थानों पर विभिन्न प्रकार के जीव और वनस्पतियां पनपती हैं। कुछ उदाहरण लिए जाएं तो समुद्र में प्रवाल भित्ती ऐसे ही एक परितंत्र का उदाहरण है। इसी प्रकार मैंग्रोव जैसी वनस्पतियों से संपन्न वन समुद्र के अनेक जीवों के लिए आश्रय का कार्य करते हैं। लेकिन मानवीय गतिविधियों का प्रभाव समुद्रों पर भी दिखाई देने लगा है। महासागरों के तटीय क्षेत्रों में दिनों दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। जहां तटीय क्षेत्र सूर्य के प्रकाश की पर्याप्तता के कारण अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाते थे, वहीं अब इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में प्रदूषणकारी तत्वों के मिलने से वहां जीवन संकट में है। तेल वाहक जहाजों के तेल के रिसाव के कारण समुद्री जल के मटमेला होने पर उसमें सूर्य का प्रकाश गहराई तक नहीं पहुंच पाता और वहां जीवन पनपने में परेशानी होती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से महासागरों की कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने की क्षमता में कमी आती है, जिससे वायुमंडल में गैसों की आनुपातिक मात्रा में परिवर्तन होता है और जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों में असंतुलन होने से पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ सकता है। समुद्रों से तेल और खनिज के अनियंत्रित व अव्यवस्थित खनन और अन्य औद्योगिक कार्यों से समुद्री परितंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर के मौसम में बदलाव हो सकते हैं। श्रोताओं, ये हम सभी का दायित्व है कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें और जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं उसे सुंदर और स्वच्छ बनाने में अपना अधिकतम योगदान दें। हमारे द्वारा फैलाई जाने वाली गंदगी किसी न किसी रूप में नदियों और महासागरों को प्रदूषित कर रही है, इसलिए हम सभी को अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाना होगा, स्वयं को भी स्वच्छ बनाना होगा और इसी के साथ पर्यावरण भी स्वच्छ हो सकेगा। आज का आबोहवा कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्रोताओं हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से थोड़ी ही देर में 7 बजे आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से गीत, और आज की जो फिल्म होगी वो होगी टू स्टेट्स। आठ बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे काव्यांजलि में काव्य पाठ तवर सिंह हाड़ा से।

0: 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम। नौ बजे होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। सुबह 9:10 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। नौ बजकर 30 मिनट पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत। आज के इस कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी भेंट वार्ता, वंदे गंगा अभियान से जल संरक्षण, श्री हरफुल सिंह यादव जिला कलेक्टर बूंदी से बातचीत। चर्चा होगी जिसका विषय होगा मोरल पुलिसिंग से बच्चे होते माता पिता से दूर। दस बजे सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। वहीं दोपहर 12 बजे होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण। शाम 5 बजे युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। आज किस कार्यक्रम में युवा श्रोता सुनेंगे और जानेंगे नॉलेज कॉर्नर, साथ ही उनका स्पेशल सेगमेंट होगा परिवेश हमारा। विश्व महासागर दिवस पर होगी जानकारी और संवाद होगा, विषय होगा सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होते हैं एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। साथ ही आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में गीत संगीत। शाम 6 बजे होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 6:05 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। शाम 7 बजे किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे भेंट वार्ता जिसका विषय है बाग लगाने हेतु उद्यान विभाग से सुविधाएं। जानकारी देंगी श्रीमती सोनल सिंगर और साथ ही जानकारी होगी बीज उपचार पर, जानेंगे मौसम और मंडी भाव। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत, 8 बजे सुनेंगे फिल्म संगीत और 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे आप सुनेंगे परिचर्चा जिसका विषय है भारतीय संगीत के विकास और प्रचार प्रसार संवर्धन में आकाशवाणी का योगदान। प्रतिभागी होंगे पंडित महेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर सुधा अग्रवाल और डॉक्टर रोशन भारती। संचालन होगा राम नारायण जी मीणा का। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार व 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला की कड़ी सभा की समाप्ति तक। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अष्टमः भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोगस्य उपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तस्य इंडोनेशिया देशस्य समकक्षीयेण सुगियोनो इत्यनेन च सभायाः सहाध्यक्षता कृता। भारत इंडोनेशिया देशौ राजनैतिक रक्षा सुरक्षा समुद्रीय व्यापार निवेश औषधीय स्वास्थ्य सेवा डिजिटल ऊर्जा संपर्क अंतरिक्षम शिक्षा दूतावास संस्कृति क्षेत्रम इत्यादीनां विविध क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितानां क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विषयेपि विचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुरुताम्। डॉक्टर जयशंकरः स्वस्य प्रारंभिक भाषणे उक्तवान् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये संयुक्त आयोगः चतुर्णां वर्षाणाम् अन्तरालस्य

बड़े ही कमाल की बात कही है कि ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख आपको गलत बोले तो बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। इससे ना आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, ना ही किसी और के जीवन पर। अगर आपने किसी से कि कुछ भी कह दिया हो, कुछ भी कह देने पर प्रतिक्रिया दी हो, तो चीजें आपकी बिगड़ सकती है। तो यही है आज का मूल मंत्र। दुनिया चाहे जैसा रिएक्शन दे, आप सिर्फ मुस्कुराएं, मस्त रहें और खुश रहें। वो कहते हैं ना कि जीवन चाहे छोटा हो, पर दिल जो है वो बड़ा होना चाहिए। इंसान दिलवाला होना चाहिए, मन से मतवाला होना चाहिए, और यही सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर हमें जीवन को जीना चाहिए। जीवन के हर पल को खुशी से, सुंदरता से, आनंद से जीना चाहिए। श्रोताओं, हर दिन हर सुबह आशा की किरण के साथ आपके जीवन को आनंदित करने के लिए आती है, तो उसे ऐसे जाने मत दीजिए। अपने आप को, अपने मन को छोटा मत कीजिए। चाहे जीवन छोटा हो, पर इस दिल को बड़ा कीजिए। और आपको बताएं कि दिन चाहे छोटा हो, पर अगर आपने दिल को बड़ा कर लिया, तो ये जीवन के जो दिन छोटे लग रहे हैं ना, वो भी आपको बड़े लगने लगेंगे। फिलहाल सुबह सवेरे का ये कार्यक्रम नमस्कार कोटा, इसमें आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल सुनिए ये मधुर संगीत, मधुर गीत, और आनंद लीजिए इस सुबह का।

0: बड़े दिलवाला फिल्म का ये लोकप्रिय गीत हमें वर्तमान में जीने, हर पल आनंद लेने और उदार दिल को रखने की प्रेरणा देता है। बड़ा ही खूबसूरत संदेश है इस गीत में कि भविष्य की चिंता में आज खराब ना करें। हमने आपको पहले भी बताया, ये सुख और जो दुख हैं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, ये चलते रहेंगे। ये जिंदगी दर्द भी है, दवा भी है, ऐसा इस गीत में बखान है। तो श्रोताओं, सुख दुख आते जाते रहेंगे, हमें अपना जीवन हर हाल में मुस्कुरा कर जीना है। फिलहाल नमस्कार कोटा कार्यक्रम में बने रहिए हमारे साथ, करेंगे और भी ढेर सारी बातें आपके साथ।
1: श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 31 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसके लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जमा की जाएंगी। पोर्टल का पता है https://awards.gov.in। पोर्टल का पता पुनः सुने https://awards.gov.in। इसके माध्यम से ऑनलाइन ही ये नामांकन और अनुशंसाएं जमा की जानी है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई सन 2026। सूचना समाप्त हुई।

एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम नमस्कार कोटा में। श्रोताओं, आज है 8 जून और आज है विश्व महासागर दिवस। संयुक्त राष्ट्र हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाता है। रियो डी जेनेरो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के बाद से 1992 से कई देश इस विशेष दिवस को मनाते हुए आ रहे हैं। विश्व महासागर दिवस को पहली बार 8 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में ग्लोबल फोरम में घोषित किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन का एक समानांतर कार्यक्रम था, जिसमें गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज को पर्यावरणीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया था। और इस घोषणा पत्र को कनाडा के महासागर संस्थान द्वारा आयोजित, जो वहाँ की सरकार थी उसके द्वारा समर्थित एक कार्यक्रम से प्रेरणा मिली। ग्लोबल फोरम में महासागर दिवस नीला ग्रह के रूप में 2008 में कनाडा के नेतृत्व में महासभा ने संकल्प लिया कि 8 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व महासागर दिवस के रूप में नामित किया जाएगा। और इसी बीच महासागर दिवस का जो प्रचलन था वो और भी अधिक व्यापक और भी अधिक जो है गहन हो गया। इसकी आवश्यकता और दायरा 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा की गई और वहीं विस्तृत श्रृंखला में ये परिलक्षित हुआ, जिसमें समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का कार्यान्वयन, समुद्री क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी, समुद्री सुरक्षा, समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री जैविक विविधता, समुद्री पर्यावरण और सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उसमें शामिल है। वही वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व महासागर दिवस के पहले आयोजन का विषय था हमारे सागर, हमारे महासागर, हमारी जिम्मेदारी। और विश्व महासागर का पहला आयोजन हमें उन अनेक तरीकों को उजागर करने का अवसर देता है और ये वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने, आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने और स्थायी आजीविका को और सुरक्षित मनोरंजन प्रदान करने की और उनकी क्षमता को बनाए रखने की, हमारे सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों को पहचानने का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। सन 2020 की अगर बात करें तो उसमें संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागर दिवस का पहला आभासी आयोजन हुआ, जो पहली बार डिजिटल रूप में हुआ, जो वैश्विक जनता के लिए सुलभ था। और सन 2022 में पहला हाइब्रिड संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागर दिवस 2022 का वार्षिक आयोजन रहा। उसके बाद सन 2023 में 10 वर्ष पूरे हुए, 10 वर्ष पूर्ण होने पर जश्न मनाया गया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित 2023 की प्रदर्शनी में प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। उस शुरुआत के बाद से पिछले एक दशक की विजेता तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया। सन 2024 में हमने महासागर के प्रति समझ को, करुणा को, सहयोग को, प्रतिबद्धता की गहराइयों का पता लगाया और फिर सन 2025 में महासागर के मूलभूत आश्चर्य का जश्न मनाया। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस के लिए एक विषय का चयन करता है, ताकि जो है वैश्विक समुदाय को महासागर से संबंधित जो मुख्य विषय में शामिल किया जाए। और श्रोताओं, आपको बताएं कि इस वर्ष 2026 की थीम है पुनर्कल्पना, जिस दुनिया को हम जानते हैं उससे परे हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध।

आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पीव जी, ओ ढोला जी, ओ पीव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाश।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: जी हाँ श्रोताओं, आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल और यहाँ से सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नमस्कार कोटा। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज का दिन 8 जून इसलिए भी खास है क्योंकि 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस भारतीय राज्य सेवा प्रसारण का आधिकारिक तौर पर नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था, जो आज आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। ऑल इंडिया रेडियो, जिसे आकाशवाणी, आकाश से आवाज या भविष्यवाणी के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत का सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है। श्रोताओं, AIR कई भाषाओं में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें से भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को वो पूरा करता है। भारतीय रेडियो के इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सन 1930 में भारतीय राज्य सेवा प्रसारण सेवा शुरू की गई थी, जो सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बन गई। सन 1923 और 1924 में बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में 3 रेडियो क्लबों की स्थापना के साथ भारत में रेडियो प्रसारण एक निजी उद्यम के रूप में शुरू हुआ। सन 1927 में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ। आकाशवाणी आज 591 स्टेशनों का संचालन करता है, 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारित करता है। और वर्तमान युग की अगर बात करें तो वर्तमान युग में श्रोताओं, आकाशवाणी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी पूरी दुनिया भर के जो हमारे प्यारे श्रोता है, जो चहेते श्रोता है, उनसे जुड़ा हुआ है।
2: उन्नीस सौ 1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा, जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।

आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं आज के सूर्यास्त और कल के सूर्योदय के बारे में। इसी बीच हम जानेंगे तापमान की जानकारी। आज सूर्यास्त होगा शाम 7:20 पर और कल सूर्योदय होगा प्रातः 5:35 पर। तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान रहेगा 40.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस।

शहर की गतिविधियों के बारे में जानते हैं और आपको जानकारी दें, आईआईटी कानपुर बीटेक और बीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा 24 जून को जारी की।

दी गई है। आईआईटी कानपुर बीटेक और बीएससी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अलग और विशेष प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया है और आयोजन जो है वो 24 जून को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पर आईआईटी कानपुर में किया जाएगा। इसमें केवल वे विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियाड क्वालिफाई किया हुआ है। और आपको बता दें, सीबीटी मोड पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा का पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम तो घोषित कर दी गई है, लेकिन प्रश्नों का प्रकार पूर्व घोषित नहीं किया गया है। और आपको और बताएं कि 27 जून को इसका फाइनल रिजल्ट होगा। इन तारीखों का ध्यान रखें। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून है। इसके बाद 20 जून को पात्र विद्यार्थियों की जो सूची है वो जारी हो जाएगी। 24 जून को परीक्षा के अगले दिन 25 जून को प्रोविजनल उत्तर तालिका यानी कि आंसर की जारी की जाएगी।

और आपको जानकारी दें तापमान सहित कोटा में एक दिन पहले जहां अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री था, वहीं रविवार को अधिकतम तापमान में तो विशेष बदलाव नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन जो है बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में 0.1 मिलीमीटर बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार कोटा समेत कई जिलों में आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने से मौसम में और गर्माहट होने की संभावना है, जबकि कई जिलों में तापमान में अधिक होने से हीट वेव चलने की भी संभावना है।

और एक और जानकारी आपको दें, बाघ संरक्षण की दिशा में बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। रामगढ़ रिजर्व में रिवाइल्डिंग नर बाघ RVTR7 को रविवार को रेडियो कॉलर पहनाया गया है। अब उसके स्वास्थ्य और व्यवहार को निगरानी के बाद अगले 5 से 7 दिनों में उसे खुले जंगल में रिलीज किया जाएगा और वर्तमान में उसे 5 हेक्टेयर के एनक्लोजर में रखा जा रहा है, जहां पर 22 महीने से उसकी रिवाइल्डिंग ट्रेनिंग जारी है और अब खुले जंगल में रहने लायक वो हो गया है। तो श्रोताओं, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इस कार्यक्रम का संयोजन रहा तेजराम मीणा का, सह सहयोग रहा राजेश महावर का। अब दीजिए आपकी रेडियो साथी निशा को अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म संगीत एक ही फिल्म से गीत। फिल्म का नाम टू स्टेट्स। फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा रावल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से गीत और फिल्म का नाम है टू स्टेट्स। आपको इस फिल्म के बारे में बताएं, सन 2014 में बनी ये भारतीय फिल्म हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अभिषेक वर्मन ने किया, निर्माण करवन जौहर और साजिद नाडियाडवाला ने किया और इस फिल्म में अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म से जो पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं वो है ओफो गीत, जिसको प्रसिद्ध कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा द्वारा परिकल्पित किया गया था। लीजिए सुनिए पहला गीत, अदिति सिंह शर्मा और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में ये गीत।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से गीत, और फिल्म का नाम है टू स्टेट्स। फिल्म टू स्टेट्स के सभी गाने श्रोताओं चार्ट बस्टर घोषित किए गए थे। तब जो एक गीत था लोचाए उल्फत 2014 में 13 मार्च को रिलीज हुआ था, और तब इस गीत की वजह से एक धूम से मच गई थी। तो लीजिए अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, लोचाए उल्फत। बेनी दयाल द्वारा गाया ये गीत, जिसमें शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत है शंकर एहसान लोय का।

टू स्टेट्स फिल्म 18 अप्रैल को और 2014 में रिलीज हुई थी और आपको बताएं ये सफल भी रही, बड़ी रोमांटिक फिल्म थी। 7वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में टू स्टेट्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सहायक अभिनेत्री सहित नामांकन प्राप्त हुए थे और 2 पुरस्कार जीते सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और नवोदित निर्देशक के रूप में। और आपको बताएं इस फिल्म का जो संगीत था वो टब्बी पारिक ने तैयार किया था, जबकि जो इसके गाने थे वो शंकर एहसान लोय ने संगीतबद्ध किए। फिल्म के साउंडट्रैक के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ

0: संगीत निर्देशक का IIFA पुरस्कार मिला। इस फिल्म का जो सबसे मशहूर रोमांटिक गाना है वो है मस्त मगन, जो अरिजीत सिंह और श्रीप्रदा ने गाया।
1: इश्क की धूल रोज जलाए।
0: तो लीजिए सुनिए टू स्टेट्स फिल्म से ये

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने

0: नोट्स बदलिए? अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोताओं, फिल्म संगीत में एक ही गीत फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं और फिल्म का नाम है टू स्टेट्स। फिल्म टू स्टेट्स में एक पंजाबी गीत लिया गया था जो शादी समारोह को, दो परिवारों के मिलन और सांस्कृतिक टकराव और मस्ती को बखूबी प्रतिबिंबित करता है, जो पंजाबी तड़के से भरपूर है। और इसके बारे में आपको बताएं उससे पहले लीजिए सुनिए ये गीत। शाहिद माल्या और आकृति कक्कड़ की आवाज में ये गीत, शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की, संगीत शंकर एहसान लोय का।

के मोहन और इच्छिता शर्मा की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना और फिल्म का नाम था टू स्टेट्स। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से। लीजिए सुनिए इसी फिल्म से अंतिम गीत, और अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन, सिद्धार्थ महादेवन और रसिका शेखर की आवाज में। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत शंकर एहसान लोय का।

0: शंकर महादेवन, सिद्धार्थ महादेवन और रसिका शेखर की आवाज में गीत अभी आपने सुना और इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
1: Is there a living Indian who at least privately hasn't hummed some of Melody Queen's songs and derived personal satisfaction? Lata Mangeshkar has turned...

0: हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
4: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने से विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ, इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं।

0: जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
4: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी।

0: दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 8:15 का समय है, लीजिए सुनिए काव्यांजलि में काव्य पाठ श्री तवर सिंह हाड़ा से।
3: आकाशवाणी कोटा पर सुनने वाले सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं तवर सिंह हाड़ा तारच, जो मेरी कुछ चंद कविताएं लेकर उपस्थित हुआ हूँ, प्रस्तुत है। पहली कविता आपके समक्ष में सुनाने जा रहा हूँ कि आज हमारी महिलाओं को, बेटियों को किस तरह से मजबूत रहना चाहिए। महिला शक्ति, कि तुम्हीं माँ बहन बेटी और पत्नी, तुम्हीं माँ बहन बेटी और पत्नी, साबित किया कथनी और करनी, धरती से आकाश तूने नाप दिया, इसीलिए सबने तुम्हें दुर्गा नाम दिया। हिम्मत तेरी है नारी, कौन तोड़ सका, सब अंधविश्वासों को तोड़ा तुमने। तुम अबला हो ना उलझ इन बातों में, उठ थाम खड़क अब अपने हाथों में। डगर डगर शकुनी है, कब तक हारोगी, बार बार राधे कृष्ण कब तक पुकारोगी। काल के भाल पर अब प्रहार कर, तू शक्ति है दुशासन का संहार कर। काल के भाल पर अब प्रहार कर, तू शक्ति है दुशासन का संहार कर। चौसर में हारने से पहले तू वार कर, ना यूं अहिल्या बन ना इंतजार कर। अग्नि परीक्षा को अब अस्वीकार कर। उठ जाग और अब तो प्रतिकार कर, तू गार्गी मैत्रेयी सीता और शक्ति, दुर्गा लक्ष्मी कंचन और मुक्ति। हताश न हो अब दामनी बन, विरोध में उठे कुचल वो विशेला फन। तुमने थल जल आकाश में दी दस्तक, ऐसा कर अब आगाज कि हो ये संसार नतमस्तक।

अब सोना नहीं, जागना और मजबूत रखना मन, हर चक्रव्यूह को भेद सके, अब तू ऐसा अभिमन्यु जन, अब तू ऐसा अभिमन्यु जन। इसी के क्रम में मैं एक दूसरी कविता लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं कि दुकान पर मोमबत्तियां सजी देखकर मैंने दुकानदार से पूछा, कि भैया अभी ना दिवाली ना ही क्रिसमस का त्योहार है, फिर क्यों दुकान में तुम्हारे मोमबत्तियों का

दुकान पर मोमबत्तियां सजी देखकर मैंने दुकानदार से पूछा कि भैया अभी ना दिवाली ना ही क्रिसमस का त्यौहार है, फिर क्यों दुकान में तुम्हारे मोमबत्तियों का इतना भंडार है। उसने मुझे अजीब दृष्टि से घूरा, ऊपर से नीचे तक देखा, फिर वो सहज होकर बोला, साहब आप किस मुगालते में हो, देश के हालातों के बारे में कुछ जानते भी हो? दीपावली और क्रिसमस पर आजकल मोमबत्तियां कौन लेता है? आजकल तो मोमबत्तियां पूरे साल भर ही बिकती है, अक्सर तब जब जब कोई दरिंदा किसी घर का चिराग बुझाता है, और अक्सर तब तब जब कोई इन्हें जलाकर सिर्फ सिर्फ मौन रहता है। वो बेचैन होकर बोला, साहब मोमबत्तियां बेचकर दुख तो मुझे भी होता है, मगर क्या करूं, मोमबत्तियां बेचने के लिए किसी कागज की जरूरत नहीं, बस इसीलिए मजबूरी में मोमबत्तियां बेचता हूं, बस इसीलिए मजबूरी में मोमबत्तियां बेचता हूं। कुछ आज के युवाओं को संबोधित करते हुए मैं चंद लाइनें आगे की कविता में प्रेषित करता हूं। शीर्षक आह्वान कि लहू में सदा देश प्रेम का संचार मांगता हूं, लहू में सदा देश प्रेम का संचार मांगता हूं, देश पर न्यौछावर होने का उन्माद मांगता हूं, तूफानों का रुख मोड़ दे वो जवानी मांगता हूं, पर्वतों को चीर रास्ता बना दे वो विश्वास मांगता हूं, आज फिर तुमसे अखंड भारत की क्रांति मांगता हूं, उठो अब सुभाष के सपनों का हिंदुस्तान मांगता हूं, चक्षु खोलो निंद्रा तोड़ो छोड़ो ये उदासी, अब नहीं माँ भारती बेड़ी में ना किसी की दासी, ना अंग्रेजी बारूद ना सजा काला पानी काल कोठरी, ना अंग्रेजी बारूद ना सजा काला पानी काल कोठरी, ना अब कोई गुलामी ना कोड़े ना फंदा फांसी, बस आजाद और सावरकर के विचारों वाला मैं भारत के भरत वाला हिंदुस्तान मांगता हूँ, बस लहू में सदा देश प्रेम का संचार मांगता हूँ, देश प्रेम का संचार मांगता हूँ। अब थोड़ी सी कविता की बात कविता के साथ कि कविता कभी हंसाती है तो कविता कभी रुलाती है, कविता कभी हंसाती है कविता कभी रुलाती है, कविताएं कभी कभी सोचने पर मजबूर कर जाती है, कविता कभी भाव है कभी घाव है, कभी धूप तो कभी छांव है, कविता कभी माँ की ममता तो कभी है पिता के पांव, कविता कभी साहस कविता कभी कभी दुस्साहस, कविता कभी अश्क भरे चक्षु कभी कभी हास और परिहास, कविता कभी कारण तो कभी कभी जीवन निवारण, कविता कभी घर में सूर्य किरण है कभी सृष्टि के लिए विकिरण है, कविता कभी कांटो भरी डगर तो कविता कभी राजपथ, कविता हमेशा शाश्वत सत्य कभी जीवन की शपथ तो कभी जीवन की शपथ। कुछ इसी के साथ महिला बेटियों पर ही एक जो आजकल बड़े दुख के साथ हमें सुनना पड़ता है कि आज हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, उस पर कुछ बात में कहना तो कहता हूं कि सरे रहा लूट रही है असमत माँ बहन और बेटियों की, सरे रहा लूट रही असमत माँ बहन और बेटियों की, शायद आदत हो गई हमें चुप रहने और जुल्म सहने की, कब तक इन्हें तुम अखबारों की सुर्खियां बनवाओगे, आंचल में तुम इसके पले बड़े कब तक वो दूध लजाओगे, अब तो बाजू खोलो भोए तानू क्या अभी चुप रह पाओगे, अब तो बाजू खोलो भोए तानू क्या अभी चुप रह पाओगे, अरे कब तक खुले हाथों को मुट्ठी बनने से रोक पाओगे, पूछो अपने आप से फिर कब राखी के बंधन को तुम निभाओगे, डर डर कर जियोगे तो राखी की जगह चूड़ियां मंगवाओगे, अब कह दो बहनों से वो तुमसे राखी बंधवाए और करे रक्षा तुम्हारी, क्योंकि तुम जैसे भाइयों के रहते हुए भी आज सुरक्षित नहीं नारी, ख्याल रखना आज वो लुट रही है तो कल तुम्हारे घर की है बारी, वक्त है समझ जाओ वरन समाज की अवधारणा मिट जाएगी सारी, वरना समाज की अवधारणा मिट जाएगी सारी। आजकल जैसा आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग कुछ करे नहीं करे पर कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर रीले बना रहे हैं, अब रीले में आप देख रहे होंगे कि कुछ सार गर्भित भी होती है और कुछ तो उसी पर चार लाइनें लिखी कि जीवन लग जाता है मकान को घर बनाने में, जीवन लग जाता है मकान को घर बनाने में, आज घर टूट रहा है बेहुदा रील बनाने में, जीवन लग जाता है मकान को घर बनाने में, आज घर टूट रहा है बेहुदा रील बनाने में, पति पत्नी के बीच

0: रोज झगड़ा हो रहा है, झगड़ा इतना तगड़ा कि पति सिर कूट रहा है। कई परिवारों में इस बात को लेकर ही झगड़ा है। तो पति पत्नी के बीच रोज झगड़ा हो रहा है, झगड़ा इतना तगड़ा कि पति सिर कूट रहा है। अजब स्थिति है सोशल मीडिया जमाने की। पत्नी किसी की लाइक कोई और कर रहा है, अजीब शौक है साहब, हर कोई भद्दे कमेंट कर रहा है, हर कोई भद्दे कमेंट कर रहा है। दो तीन शेर और सुना देता हूँ, शेर सुना देता हूँ आपको मैं, कि महफिल में नुमाइश ना करना, महफिल में नुमाइश ना करना, दिल में पड़े छालों की लोग खाल निकाल लेंगे तुम्हारे जख्मों के बालों की। महफिल में नुमाइश न करना, दिल में पड़े छालों की लोग खाल निकाल लेंगे तुम्हारे जख्मों के बालों की। बस हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, नाचना और गाना, बस हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, नाचना और गाना। जमाने से बचे रहोगे क्योंकि वो समझेंगे तुम्हें पागल या दीवाना। दो तीन शेर और मैं आपको नजर कर देता हूँ। फूलों मुझे तोड़ दोगी, मसल भी दोगी, मगर दिल दिमाग से कैसे हटाओगी। फूलों में मुझे तोड़ दोगी, मसल भी दोगी, मगर दिल दिमाग से कैसे हटाओगी। यकीनन टूट जाऊं, बिखर भी जाऊं, मगर अपने हाथों में से खुशबू कैसे मिटाओगी। फूलों में मुझे तोड़ दोगी, मसल भी दोगी, मगर दिल दिमाग से कैसे हटाओगी। यकीनन टूट जाऊं, बिखर भी जाऊं, मगर अपने हाथों से खुशबू कैसे मिटाओगी। किसी किताब में रख कर बंद भी कर दोगी, तब भी सूख कर मुस्कुराऊंगा। जब भी खोलोगी किताब तुम, आसपास तुम्हारे खुशबू बनकर बिखर जाऊंगा, आसपास तुम्हारे खुशबू बनकर बिखर जाऊंगा। एक छोटा सा व्यंग्य और, कि कोई डोर संग पतंग उड़ा रहा है, कि कोई डोर संग पतंग उड़ा रहा है, कोई डोर काट कर इतरा रहा है। फितरत कोई आसमां छूने को है, कोई काट कर जुदा करने को है। कोई ना उड़ा रहा है ना काट रहा है, कटे पतंग पर टकटकी लगा रहा है। जब जब जुदा हुआ कोई डोर से, तब तभी लुटा गया वो चहुं ओर से, तभी तभी लुटा गया वो चहुं ओर से। एक कविता, आजकल मोबाइल का जमाना है और मोबाइल पे जो संदेश आदान प्रदान होते हैं उनमें वो गहनता नहीं जो चिट्ठियों में हुआ करती थी। तो मैंने एक चिट्ठी अपनों के नाम शीर्षक से एक कविता लिखी। तो मैंने पहली चिट्ठी लिखी बेटी को पाती, कि आज याद बहुत आ रही है, मन है भारी और भारी है छाती। तो आज याद बहुत आ रही है, मन है भारी और भारी छाती, आज मोबाइल नहीं मन कर रहा है लिखूं तुम्हें एक पाती। बस कलम उठाई वो कह रही थे कुछ शब्द कागज पर, बस कलम उठाई वो कह रही थे कुछ शब्द कागज पर, मन भावुक उठा अश्रु बूंद टपक गई कागज पर। क्या लिखूं क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या लिखूं और क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मन मस्तिष्क में अक्ष यादों में अल्लड़पन तुम्हारा। कैसी हो ठीक ही होंगी, हाँ जानता हूं छुपा लोगी तुम अपना दर्द। ख्याल रखना, ख्याल रखना सबका परंतु स्वयं का भी। कल की ही तो बात थी तुम्हें डोली में बिठाकर विदा किया था। असमंजस में रहता हूं, क्या मैंने तुम्हारे हक में सही निर्णय लिया था। तुम गई हो तब से आंखें माँ की लगती पथराई सी है, आंगन सुना घर में सन्नाटा ना खुशी की अंगड़ाई सी है। ध्यान रखना चिट्ठी लिखना, जवाब जरूर देना। लिखो चिट्ठी तो पोस्ट करने को रामू काका से कहना, लिखो चिट्ठी तो पोस्ट करने को रामू काका से कहना। अब मेरी आंखें भर आई, हाथ कांप रहे हैं, शब्द नहीं है, लिखने की हिम्मत नहीं है, लिखने की हिम्मत नहीं है, तुम्हारा मजबूर पिता।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे काव्यांजलि में काव्य पाठ श्री तवर सिंह हाड़ा से। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं सुनिए सुगम संगीत।

0: थोड़ी ही देर में प्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: '1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला, ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।
2: हमने अमृत को कभी चखा तो नहीं, उसकी अमर मिठास।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम।
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
1: सुगम संगीत में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खेर की आवाज में।

कैलाश खेर की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं और श्रोताओं आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए सुनिए अगला गीत फुजन की आवाज में। शब्द रचना है शफकत अमानत अली और संगीत शेलुन का।

0: फुजन की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। शब्द रचना थी शफकत अमानत अली की और संगीत चेलुम का। सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से।
1: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा।

0: का चंबल चैनल।
1: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी थोड़ी सी ना जा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से सुन रहे हैं आप सुगम संगीत। श्रोताओं, फिर से स्वागत आप सभी का। लीजिए सुनिए अगला गीत। सुगम संगीत में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नुसरत फतेह अली खान के स्वर में।

आबिदा परवीन द्वारा गाए इसी गीत के साथ सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

अभी आप सुन रहे थे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना, पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस सीटों पर जीत के आधार पर अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भाजपा ने वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। नामांकनों की कल जांच की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होने हैं। भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार

0: उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा समावेशी विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और सक्रिय नागरिक भागीदारी द्वारा निर्देशित होना चाहिए। युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए श्री बिरला ने कहा कि शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 7 से 8 सालों में बढ़कर लगभग 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। ये अर्थव्यवस्था वर्तमान में 9 अरब डॉलर की है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में दृष्टिकोण को लेकर जो बदलाव आया है वह बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव छोटे शहरों से आने वाले सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर्स की बढ़ती संख्या में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें कहा गया है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है।
1: यावत् चतस्रः प्रदिशश्चक्षुर् यावत् समश्नुते तावत् समैत्विन्द्रियं मयि तद्धस्ति वर्चसम्।
2: चारों दिशाओं के विस्तार व नेत्रों की दृष्टि शक्ति की जागरूकता से युक्त ऐसी समृद्धि हमें प्राप्त हो जहां प्रकृति के साथ पूर्ण संतुलन में रहकर पर्यावरण का संरक्षण हो और समस्त जीवन का सतत कल्याण सुनिश्चित हो।
0: भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद सीमांत जिलों में प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सरहदी जिले जैसलमेर की जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि सीमा से सटे क्षेत्रों में अवैध निर्माणों का सर्वे कर उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई थी।
3: मंत्री महोदय ने, सीएम महोदय ने जो बैठक ली थी उसमें पांचों जिले जो है सीमावर्ती जिले उनके कलेक्टर एसपी के साथ बैठक थी, जिसमें बहुत क्लियर कट ये निर्देश दिए कि 0 से 15 किलोमीटर के दरमियान किसी भी तरीके का एंक्रोचमेंट है कि सबसे पहले तो उसका हमें पूरा सर्वे हमारे पास होना चाहिए और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि जो नियम विरुद्ध है तो उस पे कार्रवाई करने के लिए दिवाली पर्व से पहले इसमें निर्देश दिए गए। निर्देश क्लियर है कि एंक्रोचमेंट हटने की कार्रवाई करनी है और उससे पहले एक सर्वे का कहा गया है, तो सर्वे के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को हमने यहां से पाबंद कर दिया गया है कि सबसे पहले सर्वे आए, सर्वे स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा और जैसे स्टेट से निर्देश मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। देश विदेश के 566 शहरों में एक पारी में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक ये परीक्षा ली जाएगी। एनटीए की जानकारी के अनुसार पंजीकृत उम्मीदवार अब अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को देखते हुए जयपुर पुलिस और जिला प्रशासन सतर्क मोड पर है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए

0: जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ राजीव पचार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कमिश्नरेट क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह की रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी, डंडा लेकर चलने पर रोक रहेगी। प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भड़काऊ, भ्रामक या सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने वाली सामग्री के प्रसारण पर भी नजर बनाए हुए है। इस बीच आज जिला प्रशासन ने एहतियातन जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थम जाने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज से 11 जून तक तापमान में बढ़ोतरी होने और पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस बीच पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 11 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर सहित प्रदेश के कुछ शहरों में हल्की बारिश हुई। अजमेर में भी कई जगह पश्चिमी विक्षोभ के चलते देर रात धूल भरी आंधी के बाद मूसलाधार बारिश हुई।
1: कल दिन भर की गर्मी और उमस के बाद देर रात करीब 2 बजे से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं और तेज मूसलाधार बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि शहर में कई जगह पेड़ और सोलर पैनलों की प्लेटें होर्डिंग उड़ गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हालांकि आज सूर्योदय के साथ ही उमस फिर बढ़ने लगी है। नीलिमा दादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: जयपुर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए भरतपुर में कल विशेष अभियान चलाकर करीब 14 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में जिला मुख्यालय सहित उज्जैन, छोकरवाड़ा, वैर, बयाना और रूपवास में ये कार्रवाई की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना, पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 102 और FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.3 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 9:10 का समय है, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा रावल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, फिल्म संगीत में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान की आवाज में। शब्द रचना है इरशाद कामिल की, संगीत प्रीतम का। फिल्म का नाम जब वी मेट।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए श्रोताओं सुनिए अगला गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान और सोनू निगम की स्वर में। शब्द रचना है प्रसून जोशी की, संगीत निर्देशन जतिन ललित का, और फिल्म का नाम है फना।

अभी आपने सुना सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाज में ये गीत। लीजिए सुनिए अगला गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में। शब्द रचना है प्रसून जोशी की, संगीत निर्देशन जतिन ललित का। फिल्म का नाम हम तुम।

अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। लीजिए श्रोताओं, फिल्म संगीत से सुनिए अब अंतिम गीत। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान के स्वर में। शब्द रचना है इरशाद कामिल की, संगीत निर्देशन संदेश शांडिल्य का। फिल्म का नाम चमेली।

सुनिधि चौहान द्वारा गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

आपकी नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, दुखों की सारी बातें आपकी पुरानी हो जाएं, दे जाए इतनी खुशियां यह नया दिन कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। आपके लिए खुशियों की दुआएं लेकर आज आपसे मुखातिब हो रही है आपकी अपनी रेडियो सखी कविता। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में, और इसके साथ ही स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ सखियों, बच्चों का जो मन होता है वो बहुत ही कोमल और संवेदनात्मक होता है। उन्हें हम जो कुछ भी कहते हैं वो उनके मन पर गहरा छाप छोड़ता है। और अक्सर हम माता पिताओं की तो आदत भी होती है बात बात पर बच्चों को टोकना। और कई विद्यालय, कोचिंग या फिर यूं कहें कि हमारे समाज में ही बच्चों को उनके कपड़ों, हेयर स्टाइल, पार्क या कैफे में या सड़कों पर दोस्तों के साथ दिखने पर और विशेष परिस्थिति जैसे कि विपरीत लिंग के दोस्तों से बात करने पर समाज के लोगों द्वारा पूछताछ और डांट फटकार भी की जाती है। उन पर पाबंदियां भी लगाई जाती हैं और आजकल सोशल मीडिया की पोस्ट पर भी बड़ों या अनजान लोगों द्वारा अश्लीलता या संस्कृति के नाम पर ट्रोल किया जाता है। और ऐसे कई केस हम न्यूज चैनल्स पर देखते हैं और अखबारों में भी पढ़ते हैं, जो बहुत ही दुखदायी है। सखियों, बड़ों के और समाज के इस व्यवहार से बच्चों में असुरक्षा व भय का माहौल पनपता है। उनमें सीखने की क्षमता कम हो जाती है और वे तनाव में आ जाते हैं। और कई बार देखने में आता है कि ज्यादा दबाव के कारण बच्चों का स्वभाव विद्रोही हो जाता है। इसे मॉरल पुलिसिंग कहते हैं। इन सबसे अपने बच्चों को बचाने के लिए उनसे मित्रवत व्यवहार बनाएं ताकि वे अपनी बातें खुलकर आपको बता सकें। मॉरल पुलिसिंग के कारण करें डरे या सहमे बच्चों के लिए स्कूल में और माता पिता को भी प्रोफेशनल काउंसलर्स की मदद ली जानी चाहिए ताकि उनके मानसिक तनाव को कम किया जा सके। उनके साथ वक्त गुजारें।

0: जी हाँ सखियों, इसी तरह उनके साथ समय व्यतीत करें ताकि वो खुश रहें और आपको अपना दोस्त समझें और वो आपसे अपनी सारी परेशानियां साझा करें। श्रोताओं और मेरी प्यारी सखियों, बूंदी जिला प्रशासन की सजगता और दूरदर्शी सोच के चलते क्षेत्र में जल क्रांति की एक नई इबारत लिखी जा रही है। जिला कलेक्टर के कुशल नेतृत्व में प्रशासन ने वंदे गंगा जल संरक्षण योजना को महज एक सरकारी कवायद न मानकर इसे बूंदी की तरक्की का मुख्य आधार बना दिया है। बूंदी जिला कलेक्टर की सख्त मॉनिटरिंग और थ्री लेयर सिस्टम की बेहतरीन कार्यशैली के कारण धरातल पर काम ने अभूतपूर्व रफ्तार पकड़ी है। इससे न केवल जिले के ग्रामीण इलाकों के पारंपरिक जल स्रोतों और ऐतिहासिक बावड़ियों को नया जीवन मिल रहा है, बल्कि आम नागरिकों और किसानों में भी श्रमदान के लिए गजब का उत्साह है। आधुनिक वाटर हार्वेस्टिंग पारदर्शी प्रबंधन के दम पर बूंदी जिला आज जल आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। प्रशासन का यह प्रोग्रेसिव विजन आने वाले समय में बूंदी को पूरे प्रदेश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने जा रहा है। इसी बारे में हम आज बात कर रहे हैं बूंदी जिला कलेक्टर श्रीमान हरफूल सिंह यादव से। सर, आकाशवाणी के महिला जगत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद बहन जी, आकाशवाणी के माध्यम से मुझे जिले के वासियों को वंदे गंगा अभियान के बारे में जानकारी देने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है।
0: सर, वंदे गंगा जल संरक्षण योजना को लेकर बूंदी जिले के लिए आपका क्या बड़ा विजन है? इस योजना से बूंदी के जल स्तर में कितना सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा?
1: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान न केवल जल बचाने का बल्कि जल के प्रति लोगों की सोच और आदत को एक पॉजिटिव दिशा में बढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्रयास राज्य सरकार का है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय समय समय पर इस बात की चिंता जाहिर करते रहते हैं कि प्रदेश में जल के कारण से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को, किसी भी महिला को समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और हर घर घर तक नल जल पहुंचाने का जो अभियान है तो जल की बर्बादी भी रोकना आवश्यक है। साथ ही जल के प्रति लोगों में चेतना आनी आवश्यक है, चाहे वो महिला है, चाहे वो ग्रामीण है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो व्यवसायी है, चाहे वो कोई उद्यमी है, चाहे वो कोई किसी प्रकार की भी अपने सेवा में व्रत है। और आज हमारा बूंदी जिला बावड़ियों का शहर माना जाता है। यहाँ वाटर बॉडीज अच्छी तादाद में है लेकिन उनका नियमित रूप से रखरखाव, संरक्षण, उनमें आम आदमी की एक सकारात्मकता श्रमदान के माध्यम से जुड़े, ये प्रयास हमारा इस अभियान के तहत जिले वासियों के साथ में रहा है और इस संदेश को हमें खुशी है कि हम इसको आम आदमी तक, प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक मोहल्ले तक हम इसको पहुंचा सके।
0: सर, इस योजना के माध्यम से बूंदी के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संचयन को लेकर क्या नए और आधुनिक प्रयास किए जा रहे हैं?
1: देखिए, अभी कुछ समय बाद में जिले में जो हमारी जो नहरें हैं, सीडी की नहरें हैं, हमारे डब्ल्यूआरडी के बांध हैं, उनमें पानी आएगा और उनमें नहरें चलेंगी, उनमें और सीडी की नहरें भी चलेंगी फसल के लिए। ऐसे में लोगों को जब हमारे जो नहर धोरे खाड़ हैं उनसे कहीं टूट फूट मरम्मत या किसी रुकावट या अवरोध की वजह से पानी खराब ना हो तो किसान भाइयों के साथ में हमारे सीडीओ डब्ल्यूआरडी विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मिलकर जगह जगह पर एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार श्रमदान किया। साथ ही जो तालाब हैं और जो बावड़ियां हैं गाँव में सब जगह विद्यमान है और हमने तो कई गाँव ऐसे भी देखे जिनमें आज से 30 साल पहले तक लोग उन बावड़ियों का पानी पीते थे लेकिन समय के साथ में उन बावड़ियों को एक तरह से बिना किसी देखरेख के छोड़ दिए जाने से वो क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई और उनमें किसी न किसी प्रकार का कोई जो है उनमें जो गाद और जो उसमें एक जो मिट्टी का भरा हो गया उसकी वजह से उसका एक स्वरूप बिगड़ गया। अभी एक गांव है पंचायत समिति तालेड़ा के ग्राम सिंटा में जिले के प्रभारी मंत्री महोदय हीरालाल जी नागर साहब की मौजूदगी में एक जल संरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए अभियान की विधिवत प्रारंभ करने

0: के लिए
1: जी।
0: 26 मई को कार्यक्रम आयोजित किया गया था
1: जी।
0: मुझे वहाँ इस बात की बहुत अधिक प्रसन्नता हुई कि एक वहाँ बावड़ी है जो करीबन उस गांव की स्थापना के साथ में 500-700 साल पुरानी बावड़ी थी, लेकिन उस बावड़ी में दीवारें टूटने से और मिट्टी गाद बढ़ने से वो खराब हो गई। माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने कुछ समय पहले उसकी दीवारों को मरम्मत करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए अपने फंड से राशि स्वीकृत की थी, उसका काम चल रहा है। लेकिन गाँव वालों को उस बावड़ी के प्रति इतनी सकारात्मकता है कि हमारी पीढ़ियों ने इस बावड़ी के साथ में पानी पिया है और श्रमदान करने के लिए पूरा गांव एकजुट होकर वहां हमारे साथ में इकट्ठा हो गया और उसका गाद मिट्टी निकालने का पहले से काम चला था, हमने भी उसमें हाथ बटाए और गांव वाले उसको बरसात से पहले इधर से उसका जीर्णोद्धार कार्य हो जाएगा, इधर से उसकी गाद मिट्टी निकल जाएगी और वो भले उसका पानी पीने के लिए अब कोई आवश्यकता नहीं रही है क्योंकि नल जल का पानी सब जगह उपलब्ध हो गया है, लेकिन एक जो भावनात्मक जुड़ाव है उस बावड़ी के साथ और उसकी सराउंडिंग में पेड़ पौधे लगाए गए, वहां पर एक सौर ऊर्जा चालित हैंडपंप है, उस हैंडपंप का जो पानी वेस्टेज जाता है उसके लिए सोखता खड्डा बनवाया गया। तो ये जो सकारात्मकता थी, ये सारी की सारी चीजें गांव वालों ने खुद अपने मन से ये सारे कार्यक्रम उन्होंने किया हमारे साथ
1: जी।
0: तो ये अपने आप में एक परिपूर्ण उदाहरण है कि गांव की जो पुरानी जल स्रोतों की जो पूजा करने का हमारा जो एक संस्कार था,
1: धार्मिक
0: संस्कार थे, उन संस्कारों को नियमित रूप से लोगों को जब चेताया जाए और उनको जब किसी चीज के लिए बताया जाता है तो उसके साथ वो जुड़ते हैं
2: जी। अभी आपने जो कहा धार्मिक जो हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं नदी बावड़ियों के साथ में, तो हमने देखा है कि जो हमारे घर में पूजा सामग्री होती है तो उसमें भी हमारे पुराणों में या कहीं लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन जो हमारी सामग्री होती है पूजा की उसको भी नदी में और बावड़ियों में प्रवाहित किया जाता है, तो इससे भी हमारे जो नदी और तालाब जो होते हैं वो गंदे होते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, इस प्रकार से समय के अंतराल के साथ में पूजा सामग्री में भी जो भी आइटम उसमें इस्तेमाल होते हैं, पहले तो पंच तत्व की चीजें हुआ करती थी, दूब है, मिट्टी के गणेश जी हैं, ये सब चीजें तो पूजा के साथ में वो चीजें उसमें जैसे ही विसर्जित होती थी तो पंच तत्व विलीन हो जाती थी, लेकिन अब कोई चुनरी आ गई, कोई प्लास्टिक टेरेलाइन टाइप का कोई कपड़ा आ गया, कोई और कोई ऐसी कोई हार्ड वस्तु आ गई जो उस वाटर बॉडी में जब वो उसको डाल दिया जाता है तो वो उसका ना केवल उसका गंदगी का स्वरूप को बिगाड़ता है बल्कि उसका डिग्रेडेशन भी हो पाता और वो गंदगी का संभाल का कारण बन जाता है। तो इस विषय पे एक जागरूकता का विषय है, समय समय पर शीर्ष न्यायालयों ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, राज्य सरकारों ने दिशा निर्देश भी जारी किए हुए हैं कि जो वाटर बॉडीज हैं इनको संरक्षित सुरक्षित स्वच्छ बनाए रखने के लिए इस प्रकार के जो विसर्जन है जो गलते नहीं है और कुछ चीजें हैं उनसे बचना चाहिए और प्रशासन भी उनकी सावचेती के लिए कार्य करता है और इस अभियान के माध्यम से हम लोगों को इस बात के लिए जो है काफी प्रेरित कर चुके हैं।
2: ये आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई हमारे श्रोताओं को कि जो हमारे प्लास्टिक का सामान और पूजा सामग्री हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम नदियों में और तालाबों में डालने के बजाय हम उसका दूसरी तरीके से उपयोग लेकर दोबारा से उसे रियूज कर सकते हैं। सर, इस योजना के तहत जिले को जो बजट मिला है उससे बूंदी में मुख्य रूप से कौन कौन से बेहतरीन काम प्राथमिकता के साथ आप करवाते हैं?
0: देखिए, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है, वंदे गंगा हर हर गंगा, ये अपने आप में एक परिपूर्ण शब्दावली
1: है
0: और हमने जिले में इस अभियान के साथ में प्लास्टिक से मुक्ति का भी एक उपक्रम स्टार्ट किया है और इस अभियान के माध्यम से जन जन तक लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्लास्टिक का जो गार्बेज है वो गलता नहीं है, वो मिट्टी का दुश्मन है, वो खेती की उर्वरा क्षमता को खराब करता है और अल्टीमेटली हमारा जो जैविक स्वास्थ्य जो मिट्टी का जो जैविक स्वास्थ्य है वो उसको खराब करके हमारे खुद के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है। तो प्लास्टिक के इस्तेमाल से लोग बचें और प्लास्टिक का कचरा जगह जगह जहां फैला हुआ है तो हमने समस्त ग्राम पंचायतों को नगर पालिकाओं को निर्देशित किया है कि जिले में 3 जगह पर प्लास्टिक कचरे की निपटान वाली इकाइयां राज्य सरकार के विभिन्न प्रयासों से स्थापित करवा दी गई थी जिनको कुछ समय से वो बंद थी, केशवरायपाटन में, सिथूर में और कापरेन में, तो इनको हम चालू करवाने के लिए अच्छी पोजीशन आ गए हैं, वो फंक्शनल हो गई है इकाइयां। तो उन क्षेत्रों के आसपास की जो पंचायतें हैं वो सारा प्लास्टिक हम वहां भेजेंगे उसको। केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियम भी नए लागू कर दिए हैं तो अब वैसे भी जो भी प्लास्टिक का जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उन सब का निस्तारण करने की प्रक्रिया निर्धारित हो गई है। तो हम इसको प्रैक्टिकली इसका क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करवाएंगे और आम आदमी में प्लास्टिक के प्रति चेतना जागृत हो
2: जी।
0: आप जब सब्जी मंडी जाएं, बाजार जाएं, तो अपना थैला साथ लेके जाएं या जो व्यापारिक बंधु हैं वो थैली प्लास्टिक में देने की बजाय हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं

0: जी कपड़ों
1: का। हमारी राजविका महिलाएं हैं वो बहुत अच्छी कपड़े के और कागज के छोटे बड़े उनकी कॉस्ट क्वालिटी उसके हिसाब से हर कैटेगरी के उम्दा सब तरह के वो जो है इस तरह की कैरिंग बैग्स तैयार कर रही हैं। तो हमने इसमें एक पंथ दो काज करने की कोशिश की है, हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं, उनकी रोजी रोटी बने और वो जो चीज कपड़े की और कागज की थैलियां और थैले बनाएंगी उसे दुकानदार व्यापारी लोग भी उनको इस्तेमाल करें और वो जहां भी कहीं उसका डिस्पोजल होगा तो हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब नहीं करेंगे। तो ये एक हमारा इस अभियान के माध्यम से प्रयास रहा है और इसको हम काफी हद तक किया है। साथ में हमने एक और कोशिश की है कि जो भी हमारे सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रम हो उनमें प्लास्टिक की बजाय एकदम से तो चीजें खत्म नहीं हो सकती हैं, लेकिन क्रमिक रूप से जैसे मैं बताना चाहूंगा जो भी प्रोग्राम फंक्शन होता है तो उसमें चाय के और कॉफी के जो कप होते हैं उसको हम मिट्टी का जो कुल्हड़ है उससे रिप्लेस
0: मिट्टी का इस्तेमाल करें
1: और मिट्टी के कुल्हड़ के लिए अब आधुनिक रूप से मिट्टी गोंदने की मशीनें सरकार दे रही है, प्रमोशन हो रहा है। बस केवल मुझे उस चयन को जोड़ना ही तो है और करना क्या है, मुझे जो पात्र व्यक्ति हैं उनको सहायता करनी है, उनको जो पात्र लाभ दिलाना है वो मिट्टी कप बनाएंगे और मुझे उसकी इस्तेमाल की सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम है राज्य के कार्यक्रम है कम से कम उनमें तो मैं इसकी शुरुआत कराने वाला हूँ ताकि देखा देख दूसरे लोग भी उसको प्रमोशन अपने इस्तेमाल करें। साथ ही बुके देते हैं, कोई मेहमान आता है तो बुके के साथ में प्लास्टिक रैपिंग होता है। तो हमारी राजविका बहनें जो हैं क्रोशिया से बनाए हुए बहुत ही सुंदर गुलदस्ते बनाती हूँ, 100 रुपए की एक उनकी स्टिक होती है, कुछ बड़ा कलो 200 रुपए की 300 रुपए की 500 रुपए का एक गुलदस्ता बन जाता है और वो बहुत ही उपयोगी और सुंदर गुलदस्ता है। यदि उसको आप घर में भी रखोगे तो सुंदर दिखेगा और आपको ऐसा लगेगा कि बड़ी अच्छी वाली चीज है ये,
0: लंबे टाइम तक चलेगी।
1: इसी तरह जो हमारा बैनर बनता है उस बैनर में कोई जो प्रोग्राम हमारे पहले से कार्यक्रम निर्धारित होते हैं तिथियां निर्धारित होती है तो उनका बैकड्रॉप बैनर भी हम यहाँ जो लोकल बूंदी शैली के जो कलाकार हैं तो उन लोगों से हम इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करवा रहे हैं कि वो अपने हाथ से कैलीग्राफी से बड़े बड़े जो कार्टन्स के गत्ते वगैरह जो निकलते हैं उनका प्रॉपर तरीके से सदुपयोग करके और उनके बैकड्रॉप्स भी हैं वो उसमें बना सके। वे भी हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ ग्रुप्स को मैंने बुलाया भी है कलाकारों को ताकि उनकी रोजी रोटी बढ़े और प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो कंट्रोल में हो। ये इस अभियान में हमारे एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है जिसको हम वर्ष पर्यंत आगे बढ़ाएंगे। चीजें एक दिन में तो नहीं हो पाती है लेकिन इस भावना से इस उद्देश्य से राज्य सरकार के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशानुसार जल संरक्षण प्लास्टिक से कैसे मुक्ति पाएं, प्लास्टिक फ्री सिटी बना दें हम, साथ ही लोगों की आम धारणा में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आ जाए, जो भी छोटे मोटे रेडी ठेले वाले लोग जो भी हैं वो जहां भी कहीं अपना काम करते हैं वो रोजी रोटी कमाएं, गंदगी नहीं फैलाएं, ये उनको हम स्वच्छता का संदेश वो सघनता से देना चाह रहे हैं। वृक्षारोपण के लिए हरियाणा राजस्थान में बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है, उसकी भी इस वंदे गंगा संरक्षण अभियान में हमने एक शुरुआत अच्छी वाली की है। पेड़ पौधे लगे, हर आदमी उसके साथ जुड़े और जल और पेड़ पौधों का जब संगम इस धरती पर है तो क्या कमी है। इतनी खूबसूरत बूंदी शहर है, इसके आसपास की पूरी आब हवा है वो इतनी सुंदर पेड़ पौधों से सजावट है इसकी, इसके जब वर्षा ऋतु के फोटोग्राफ्स देखते हैं तो बूंदी अपने आप में बहुत सुंदर हरियाली वाला क्षेत्र बन जाता है। ये क्षेत्र हमेशा हमेशा सुंदर बना रहे, वो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की आदतों की वजह से गंदगी स्वच्छता प्लास्टिक इसकी वजह से खराब नहीं हो, हमारी वाटर बॉडीज खराब नहीं हो, कहीं उनके प्रति लोगों की चेतना भावनात्मक रूप से जुड़ जाए। ये सब गतिविधियां हमने वंदे संरक्षण अभियान में पूरे 10-11 दिन का जो हमारा कार्यक्रम था राज्य सरकार ने निर्धारित किया था, प्रत्येक विभाग को प्रत्येक दिवस की अलग अलग उनकी एक्टिविटी निर्धारित की हुई थी। ग्राम विकास पंचायत राज का एक दिन है, नगरीय विकास का एक दिन है, टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक दिन है, जल संरक्षण विभाग का एक दिन है, सभी विभागों की अपने अपने जिम्मेदारियां हैं तो वो सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं।
0: जी, अभी जैसा आपने बताया बूंदी शहर है और जो पहाड़ों से तीनों ओर से घिरा हुआ है तो इसे देखने के लिए इसे निहारने के लिए हमारे विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं, तो यहाँ की जो बावड़ियां हैं इनको देख के वो बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये जो हमारे जो सफाई अभियान चल रहा है तो एक नेगेटिविटी जाती है यहाँ की गंदगी को देखकर, इसके लिए आप ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ताकि बूंदी की हमारी जो छवि है वो पर्यटकों के सोच के अंदर अच्छी बनी रहे।
1: हमारी कोशिश कोशिश रहेगी कि वर्षा ऋतु के दरमियान और वर्षा ऋतु के बाद तक में हम शहर को पूरी तरह से साफ सुथरा स्वच्छ शहर बना दें, ताकि दीपावली के आसपास में जब पर्यटकों का आगमन स्टार्ट होता है तब तक ये शहर पूरी तरह से एक साफ सुथरा स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाए और पर्यटकों की जब यहाँ

0: मन हो तो उनको यहाँ सुखद एहसास हो।
1: सर, बूंदी जिला ऐतिहासिक बावड़ियों और तालाबों के लिए प्रसिद्ध है, तो इस तरह से ही आप काम कर रहे हैं तो किस तरह से इसको नया जीवन मिलेगा?
0: यहाँ के प्रमुख जो लाइफ लाइन तालाब है, जैत सागर और नवल सागर और नागर सागर कुंड, तो अभी माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय के प्रयासों से नगर परिषद को एक हुडको के माध्यम से ऋण राशि भी स्वीकृत हुई है और बूंदी शहर की प्रमुख सारी सड़कें, बूंदी शहर के सारे चौराहे, बूंदी शहर की जितनी भी सारी पुरानी बावड़ियां और छतरियां, उन सबका जीर्णोद्धार विकास का काम कराया जाएगा उनका। तो हम सब ये चाहेंगे कि ये जो सरकार अपना इतने प्रयासों से शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की तरफ दिशा में काम कर रही है, आम आदमी की भावनात्मक से जुड़ाव इस कार्यक्रम के साथ हो जाए और जो भी हमारे धरोहर हैं उन पर कहीं हाथ से कुछ लिख देना, कुछ निशान लगा देना, बना देना, तो ये प्रवृत्ति जनरली कहीं ना कहीं देखी जाती है। तो जनता का सहयोग मिलेगा तो हम इन सारी जो भी धरोहर को सुरक्षित और सुंदर बनाएंगे, तो ये हमारी एक जो प्रयास रहेगा वो बूंदी शहर को अच्छा बनाने, पर्यटकों का आगमन बढ़ाने, इसकी वजह से यहाँ के लोगों की रोजी रोटी बढ़ावा मिले और एक पूरा एक मीडिया और पत्रकारिता और समाज सेवी संगठनों और विभिन्न जो सूचना संप्रसारण के माध्यम है, आकाशवाणी भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, तो आपके माध्यम से मैं सभी सुधी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि ऐसा एक सकारात्मकता का भाव बने कि इस व्यवस्था में बूंदी शहर को सुंदर बनाने में, बूंदी शहर को स्वच्छ बनाए रखने में आम आदमी, युवा, महिला, छात्र, उद्यमी, नौकरी पेशा, सभी का इसमें योगदान हो और जिला प्रशासन जो कुछ भी कर सकता है वो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा।
1: सर, एक सवाल और मन में आ रहा है, जल संरक्षण के इस महाअभियान में बूंदी के युवा, किसान और आम नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रशासन को जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उन्हें आप प्रोत्साहित करने के लिए क्या खास कदम उठा रहे हैं?
0: बहुत ही शानदार प्रयास है और बूंदी शहर में हमने प्रतिदिन एक बावड़ी को साफ सुथरा स्वच्छ करने के लिए श्रमदान का कार्यक्रम रखा। सभी जगह सुबह जब भी कार्यक्रम होता है तो 200 से 300 लोगों का, बच्चों का जुड़ाव वहाँ हो जाता है। अभी जैत सागर में हमने 3 दिन पहले मैं खुद उस अभियान में गया था, वहाँ करीबन 300 लोगों की भीड़ मेरे साथ वहाँ थी। हम सब लोगों ने मिल के जैत सागर की काफी सारा उसमें कचरा गाद जो है श्रमदान करके बाहर निकाला। इसी बात ही हमारा जो खेल संकुल है उसमें हम प्रति बुधवार को सुबह 7:30 बजे 7 से 7:30 बजे आधे घंटे का श्रमदान रखते हैं। तो वहाँ जो भी जॉगिंग करता है, खेलने आता है, वो आधा घंटे का जो योगदान है वो अभी उसका जो एंट्री पॉइंट है वो काफी हद तक, जो पहले उसमें कितनी मतलब कचरा और गंदगी पड़ी हुई थी, लेकिन अब वो काफी हद तक अपने आप में उसका स्वरूप निखरता जा रहा है। तो छोटे छोटे कदम जब उठाते हैं तो समय के साथ में यदि हम थोड़ा धैर्य के साथ में काम करें तो वो कुछ ही समय में वो कारवा बन जाता है। और मेरी भी यही आशा उम्मीद है कि बूंदी शहर के लोगों के लिए हम जो एक सोच के साथ प्रयास कर रहे हैं, इस अभियान में सब लोगों की सहभागिता है, सब लोग जुड़ाव अपना प्रदर्शन रख रहे हैं और एक समय में ये भावना आ जाएगी कि हर आदमी अपनी ये जिम्मेदारी महसूस करने लग जाएगा कि ये मेरा शहर है, इसको स्वच्छ रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है और मैं बूंदी शहर को किसी भी सूरत में गंदा या खराब या स्वच्छ कहीं पे भी नहीं होने दूंगा।
1: हमारी इस बातचीत के अंत में आकाशवाणी के माध्यम से आप जल संरक्षण के इस अभियान से जुड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को?
0: देखिए, जल संरक्षण अब इस धरती पर इंसान के अस्तित्व के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि हमें जल की हमने महत्ता समझी और जल स्रोतों को हमने संस्कारों की, हमारे धार्मिक संस्कारों की भांति जिस प्रकार से पूजन करने का हमारा संस्कार था और उनको हम साफ सुथरा, स्वच्छ और उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए ये जो एक वर्ष पर्यंत हमारा एक जो हर पिछले वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आयोजित करवाया था वंदे गंगा अभियान, इस साल भी हो रहा है और प्रतिवर्ष हम इस चीज़ को करते रहेंगे, तो इससे लोगों में जल स्रोतों के प्रति एक सकारात्मकता, भावनात्मक तक जुड़ाव है और हम जब स्रोतों की साफ सफाई, स्वच्छता रखने का जब काम करते हैं तो हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो भी उससे प्रेरित होते हैं। कल वो भी युवा होंगे तो वो भी इसी बात को, संदेश को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जल संरक्षण अभियान से सबसे बड़ा विषय यह है कि आम आदमी की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक प्रयासों में मिली है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि बूंदी शहर मेरा है, बूंदी शहर को स्वच्छ रखना मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। ये भावना हर नागरिक तक पहुंचे और हर नागरिक बूंदी शहर को अपना शहर मानकर इसको स्वच्छ रखने में, वाटर बॉडीज को स्वच्छ रखने में अपने योगदान दे। बूंदी बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है।

0: और बावड़ियों का शहर में हर बावड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए
1: जी, बिल्कुल।
0: और अभी जो हमारा जो एक जल स्रोतों को पुनरुद्धार करने का कार्यक्रम चल रहा है उसमें नार दूस की बावड़ी और जो शहर की 10-12 बावड़ियां हैं उस सारी बावड़ियां रिनोवेट हो रही है उसमें। तो एक जो बाहर से पर्यटक आएंगे उनके लिए भी एक ये अपने आप में कोतूल का विषय है
1: जी, बिल्कुल।
0: और हमारी साड़ोती और इस बूंदी शहर में पुरानी बावड़ियां जितनी तादाद में है वो अन्यत्र और कहीं आपको ढूंढने नहीं मिलेंगे
1: जी, बिल्कुल कहीं नहीं है।
2: सखियों, बूंदी जिला कलेक्टर श्रीमान हरफूल सिंह यादव जी ने हमें वंदे गंगा जल योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन ये सिर्फ प्रशासन का ही नहीं, हम सभी का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम पानी की बचत करें। हमारी आज की बचत आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान साबित होगी। बूंद बूंद को तरस जाओगे अगर जल नहीं बचाओगे। जल है जीवन का आधार, इसके साथ मत करो तुम दुर्व्यवहार। सर, आपने अपने कीमती समय में से कुछ वक्त निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद बहन जी, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को एम आकाशवाणी से आप पधारे हैं, आपको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत आभार है कि आपने मेरा संदेश हमारे बूंदी जिले के हर नागरिक तक पहुँचाने के लिए एक सुधी प्रयास किया, धन्यवाद।
2: आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं बूंदी जिला कलेक्टर की फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत जो हमें पानी की महत्ता बता रहा है। हर्फ अपने ही मानी की तरह होता है, हर्फ अपने ही मानी की तरह होता है, प्यास का जायका पानी की तरह होता है।

और सखियों, गर्मी के इस मौसम में आप अपने आप को हाइड्रेट और पेट को ठंडा रखने के लिए घर में बनी पुदीना, जीरा और काला नमक मिली छाछ, नारियल पानी, सत्तू का शरबत, नींबू पानी, तरबूज और खरबूजे का जूस पीना ही फायदेमंद है। बाहर के पेय पदार्थों से परहेज करें। कार्यक्रम का संयोजन था हिमांशु नामा और निर्देशन तेजराम मीणा का। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसके लिए हमें मेल जरूर कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है enjoyairkota@gmail.com। अब दीजिए अपनी रेडियो सखी कविता को आज्ञा। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
1: उजाली

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिक

0: तो कभी छान।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, चल चल रे नौजवान या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, झांकी हिंदुस्तान की या दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी।

0: इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था, आपके घर का क्या माहौल था, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
1: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीजें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहां पर शहादत हुई रेजांगला में, और वो चीज से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं रास्ते पे चल रहे थे और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहां पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहां चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए, बोलते यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है, बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहां पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे
0: जी।
1: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में
0: जी।
1: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहां पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहां पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
0: बिल्कुल।
1: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहां पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
0: ठीक है।
1: तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गीत जब तक वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है
0: जी।
1: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइन्स। तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब व्हाटएवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है
0: जी।
1: अब जब तक

0: गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी। उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे, ठीक है। अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है, आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे। लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में हुई। ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने
1: दिल्ली में,
0: तो रिहर्सल कैसे करेंगे। एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी, एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना। लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने में। और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहां बज रहा है, वहां हाँ। गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना
1: जी।
0: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहां पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए
1: जी।
0: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, लोग एकदम सुनना शुरू किया। हाँ। कि ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे। और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे, एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो
1: था।
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको, क्योंकि उनके मन में भी ग्लानी बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानी थी
1: जी,
0: गिल्ट फीलिंग
1: जी।
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है?
1: अच्छा।
0: ये लिखा किसने है
1: जी?
0: तो लता दीदी ने कहा नहीं, वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहां के हैं, ये तो बंबई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बंबई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को जरूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है। हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में, हमारे देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं
1: जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी।
0: वो आए दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में।
1: अच्छा।
0: बोलते हम सब तो थे, लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था, और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना। इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूं कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी
1: जी, जी।
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा, और उनको ये कहते हुए सुना, ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए, ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा, पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए, और नेचुरली भूल गए। लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा।

0: और बात खत्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए
1: जी,
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया, वहां पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों आपने लिखा है, अरे ये तो हम गाते थे हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं
1: जी,
0: आपका लिखा गीत है, चल चल रहे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी,
1: बताइए
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो जाते थे दिल्ली
1: जी, जी जी।
0: तो ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है
1: कि जो होता है अच्छा के लिए होता है
0: जी। उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
1: अच्छा इसी गीत को सुनाए।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूँ, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं जैसे आप गाएंगे। फिर वहां पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहां पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया। और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया
0: जी।
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है
1: जी।
0: ए मेरे वतन के लोगों की जो भी रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को। वो मेरे पिता की इच्छा थी तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुन ले मेरे वतन के लोगों,
0: जरूर जरूर
1: आंख में भर लो पानी।

0: तो देखिए हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरे वतन के लोगों
1: जी।
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए
1: जी।
0: एक समय ऐसा भी आया, आप इस बात को कैसे कहेंगी, आप किस तरह का माहौल लगता था, कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे
0: जी।
1: तो ये नहीं है कि कभी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे
0: जी।
1: आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद

0: थेरेपी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
1: बिल्कुल।
0: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास, और कभी कभी ऐसा होता था तो अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे हम लोग खड़े। तो ये बात थी, एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट देके रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई, और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं।
1: जी।
0: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे। हमारे घर पे मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
1: जी
0: काफी आते थे। जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए।
1: जी जी।
0: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
1: जी।
0: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
1: बिल्कुल।
0: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे
1: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो जादू था।
0: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो हम मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था? न्यूज, अखबार। मतलब जो अखबार सुबह आए तो 4-5 अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
1: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
0: हाँ, अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस। क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार।
1: जी।
0: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे, और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये 6 अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
1: इतनी भाषाओं के
0: हमारे वहाँ अखबार आते थे
1: और उसे पढ़ा
0: जाता, और आज भी आते हैं, वो मैंने बंद नहीं किए।
1: जी।
0: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं होती। बीबीसी न्यूज, उनका रोज का सवेरे का 6:45 का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में आएंगे, वो सब उनको सुनना जरूरी था।
1: तो घर में एक रेडियो था?
0: हाँ हाँ
1: जी।
0: एक नहीं, 2-3 रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में 3 अलग अलग रेडियो बजते थे। तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
1: अच्छा।
0: जैसे मैंने कहा, वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है। तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में,
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था और हर कण कण तो में वो
0: ये जो जागरूकता थी ना, वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं, माँ और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता, मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे

0: रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी, अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो, अरे ओ रोशनी वालों।
1: वाह क्या बात है, महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है ये
0: जी।
1: और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को, गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप दोनों बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए ये दो चीजें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसी, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: सबसे दुनिया में रहते हुए भी
1: उस
0: माहौल में रहते हुए भी,
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा।
0: और किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के बताइए?
1: हाँ हाँ, नहीं नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूंगा, बप्पी लहरी ने
0: जी,
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी मैं जानती हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूं, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो?
1: हाँ, हम
0: जो अभी फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था, हाँ, कविताओं का।
1: हाँ, हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ
0: जी।
1: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा था कि आजाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद, तब कविता लिखी थी, उसी दौरान उसके बाद में जब हमको आजादी मिली
0: जी,
1: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले गए, लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए, कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही, निखिल प्रकृति लहलही विमल वातास बही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि हमको उस वक्त आजादी मिली थी। और आप अगर सुने एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
0: यही पैगाम,
1: ये वही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह पाए। तो ये गीत भी उनका बहुत देश के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से उभाई जा रहा, और कुछ
0: यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते,
1: ठुकरा नहीं सकते,
0: भुला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते। तो आप कहें तो यही गीत हम सुन लें,
1: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है,
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई, मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंधेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से, मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारे पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाए और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
0: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
0: जागृति मिली हमको, जो बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
1: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
0: जी जी।
1: और लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
0: अच्छा।
1: जब मिल गई आजादी उसके 2-4 साल के बाद, उनको लगा कि आजादी तो मिल गई है लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
0: बहुत बड़ा सवाल।
1: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आजादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आजाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
0: इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के,
1: तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से, और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ।

0: जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश,
1: जी
0: आज भी वो ही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
1: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं। उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है।
0: हर एक लाइन सुनिए आप
1: जी।

0: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही है और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भाई मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
1: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा, क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाक्या हुआ था
0: जी,
1: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलते मैं कोशिश करूंगा लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपी नैयर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ। संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए, तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ और ओपी नैयर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं, प्रदीप जी के साथ काम कर सकता।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूँ मंजू द्विवेदी। कभी कभी इस एल्बम का गाना अनिरुद्ध झा की आवाज, इन्हीं का लिखा हुआ गाना, रिकी का संगीत।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल। शायर हैं राजेश रेड्डी, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाजें इन्हीं का संगीत। शब्दकार आर एस हरियाणवी रतन। एल्बम का नाम तस्वीर।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। यूफोरिया की आवाज पलाश और दीक्षांत का लिखा हुआ गाना, संगीत पलाश और डीजे का।

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। कमाल खान की आवाज, संगीत साजिद वाजिद का एल्बम कल रात।

FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे का समय है। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
3: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
1: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
3: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
3: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
3: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडेय, संजय मारकंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
3: जी।
1: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
3: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
3: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
3: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
3: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
3: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा

0: प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गाँव में पड़ता है।
1: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
1: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है।

0: उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
1: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
2: मंगला
3: हाँ?
2: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
3: ठीक है।
2: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना,
3: हाँ हाँ,
2: उठाकर मुझे दे।
3: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
2: हाँ,
3: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
0: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
2: ये हाँ ऐसे, ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
3: अरे वाह।
2: और ये इसकी पूंछ।
3: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
2: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
3: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
2: ओ, अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
3: ठीक है।
2: अब बना।
1: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
3: भाई
2: हा?
3: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
2: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
3: ठीक है,
2: चल चल चल चल, चल।
3: हाँ,
2: हम दोनों हाँ, झाड़ियों में छिप जाते हैं।
0: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
1: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए

आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन ये भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, माँ से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आ

साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यही करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।
2: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामास्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
0: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
3: रामास्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामास्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि

0: को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
2: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
2: जी। रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
3: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
3: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
0: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
3: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
0: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
4: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
4: और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
5: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
6: सखी सहेली।
7: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का भी जन्मदिन है, तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उन्हीं की फिल्मों के कुछ गाने अब आपको सुनवाएंगे। ये है बॉबी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, विट्ठल भाई पटेल का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अब आपको सुनवाते हैं लेकिन फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं। बंटवारा फिल्म का ये गाना अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। हसन कमाल का लिखा हुआ गाना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: यह आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों ने अपने नाम पत्र दाखिल कर दिए हैं। भाजपा के उम्मीदवार सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने आज अपने नामांकन प्रस्तुत किए। नामजदगी का पर्चा दाखिल करने के बाद दोनों नेता पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उधर कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नामांकनों की कल जांच की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नकली बीज प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपी बीज निगम के निदेशक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। एसीबी ने बताया कि आरोपियों ने एक बीज कंपनी के जब्त बीजों को गुजरात भेजे जाने की एवज में कंपनी से 1,20,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सूचना मिलने पर एसीबी की टीम ने आरोपी को बीकानेर के लूण करणसर से बस से उतार गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 85,00,000 रुपए की अवैध धनराशि बरामद की गई। एसीबी ने बीज निगम के निदेशक के घर छापा मारा, जहां से 1,50,000,000 रुपए की राशि भी जब्त की गई। प्रदेश भर में पीने के पानी की उपलब्धता के लिए चलाए जा रहे अभियानों के तहत 5 मई से 6 जून तक 19,000 से अधिक पेयजल समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान हैंडपंप मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज, कम दबाव के साथ पानी और अनिश्चित जलापूर्ति की शिकायतों का समाधान किया गया। इसके अलावा करीब 7,500 सुधारात्मक कार्यों के जरिए पेयजल व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया। इस दौरान 6 जून को एक दिन में 3,000 से अधिक कार्य संपन्न करवा के लोगों को राहत दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पेयजल व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए विशेष अभियान 30 जून तक लगातार जारी रहेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी जयपुर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज शहर के जगतपुरा और मालवीय नगर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन सख्त कदम उठाए हैं। जेडीए दस्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस बल और आरएसी का जाप्ता शामिल रहा। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं। प्रदेश में हाल ही में आए आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुए विद्युत तंत्र को सुचारू करने के लिए सभी विद्युत वितरण निगम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ भंवर लाल डेलू ने बताया कि सरहदी और पश्चिमी जिलों में बिजली आपूर्ति की समीक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस बीच डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों ने जैसलमेर जिले के फतेहगढ़, चांधन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद लक्ष्य में बढ़ोतरी किए जाने से किसानों को राहत मिली है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के जिलों में किसान सरकार के इस फैसले से उत्साहित है और मंडियों में गेहूं बेचान के लिए पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम रतन सौकरिया ने बताया कि जिले का कुल गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़कर 8.75 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसके साथ

मन्ना डे की आवाज में सीमा फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि सागर महासागर के कई ऊंच नीच लहरों में छिपी अनगिनत यादों को, मन की भावनाओं को दिल की गहराइयों से सलाम। मिटने वाली सभी निशानियों का कभी अंत नहीं, सूरज को अपने भीतर समाने वाला सागर अथांग तीर में बंदिस्त होकर भी सभी नदियों का पानी पीकर सीमा नहीं छोड़ता है, ये उसकी खासियत है, अपनी सीमाओं से वो बंधा होता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि समंदर शोर भी करता है और सुकून भी देता है, ऊपर से नीला शांत और अंदर मूंगा मोती तूफान सब छुपाए बैठा है। समंदर की हर लहर आती है, वापस जाती है और कहती है कि फिर आऊंगी। वो बना तो बूंद बूंद से है पर बड़े बड़े जहाजों को भी डुबो देता है, फिर भी न छोटा होने का गम और न बड़ा होने का घमंड। वो हजारों नदियों का दर्द पीकर भी गमगीन नहीं होता, इसलिए अक्सर टूटे हुए लोग समंदर के किनारे जाते हैं और उससे सीखते हैं कि दर्द पीकर भी कैसे मुकम्मल रहा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बारूद फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। इसमें जो आवाज है वो लता मंगेशकर की है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है। ये कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

मेरी हद है कहाँ तक। जी हाँ, इस बात को हमें याद जरूर रखना चाहिए कि हमारी हदें कहाँ तक है। सागर के किनारे हम जाते हैं, अटखेलियाँ करते हैं, आनंद लेते हैं पानी के आने और जाने का, लहरों का आनंद लेते हैं, वहाँ की जो ठंडक होती है उसको महसूस करते हैं। दूर तक दिखता हुआ सागर, जहाँ उसका कोई किनारा नहीं दिखता है, सूरज डूबता रहता है, वो जो मंजर होता है बहुत खूबसूरत होता है। क्या हमें इस खूबसूरती को बरकरार नहीं रखना चाहिए? ये प्रश्न अभी हमारे सामने है। जब हम समुद्र किनारे जाते हैं, बहुत सारी गंदगी फैला करके आते हैं, उसे गंदा करते हैं, पानी को गंदा करते हैं, तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये हमारी हदें हैं। तो

इस बात को बताता हुआ ये गाना आपने सुना। मैंने आपको बताया कि ऋषि कपूर और शोमा आनंद पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समंदर सिर्फ पानी का विशाल संग्रह नहीं बल्कि हमारी भावनाओं का आईना है। उसकी खामोशी में भी एक शोर महफिल है। इसकी हर लहर में एक रहस्य छुपा हुआ है, तो गहराइयों में दबी है एक असीम दुनिया। सदियों से बहता फिर भी ताजा लगता है। उसकी गहराइयों में कितने रहस्य दफन हैं, उसके हर मोती में कितने ख्वाब छुपे हैं। समंदर की शरण में जिंदगी मुस्कुराती है, उसकी विस्तृतता में एक आजादी का एहसास है। देखने में अथाह और शक्तिशाली समंदर फिर भी कितना बेबस है। यह बेबसी इंसानी फितरत और भावनाओं से भी मेल खाती है, जहां हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ खास चीजों के लिए लाचार होते हैं। अब आपको हम आगे जो गीत सुनवाने वाले हैं, ये झुक गया आसमान इस फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

झुक गया आसमान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, राजेंद्र कुमार और सायरा बानू पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि आज की इबारत में विशाल अनंत कभी शांत चित्त तो कभी विकराल रौद्र रूप सिंधु की महिमा बखान है, कभी अटखेलियां करती लहरों और ज्वार भाटा से पर्यटकों को आनंदित करती है तो कभी पर्यावरण असंतुलन से असंतुष्टि का प्रदर्शन अपने रौद्र रूप चक्रवातों

और सुनामी से करती है। समंदर मानव कल्याण के लिए खनिज, जीव जंतु, संचार, परिवहन, देश सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ भी है। अनेकों रहस्यों को समेटे सिंधु आज भी दहाड़ते हुए आकर्षण की प्रधानता स्वयं प्रमाणित करती है। सागर की लहरों संग का मनोरंजक सफर का हमें इंतजार है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज बातें होंगी समुद्र की, जिसे हम सागर, जलधि, पयोधि, रत्नाकर, अर्णव आदि नामों से भी जानते हैं। पृथ्वी का लगभग 71

कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले सबसे बड़े सिंक के रूप में काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, सागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। गाना है सागर जैसी आंखों वाली। अभिनेत्री कौन है, उनका आज जन्मदिन भी है, तो उन्हें हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी फिल्म का ये गाना सुनते हैं। किशोर कुमार की आवाज से जावेद अख्तर के बोल, संगीत आरडी बर्मन का।

ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना है। सागर जैसी आंखों वाली अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, आज उनका जन्मदिन भी है, तो एक बार फिर हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र केवल खारे पानी का अथाह विस्तार नहीं बल्कि पृथ्वी का धड़कता हुआ हृदय है। दूर तक फैला उसका नीला कैनवास जितना मनोहारी है उतनी ही गहरी उसकी संवेदनाएं हैं। उसकी लहरें तट से मिलने की उत्कंठा में दौड़ती है, टूट जाती है, फिर भी जाते जाते सीप शंख और मोतियों जैसी अनमोल सौगातें दे जाती है। मानव की उपेक्षा प्रदूषण और प्रकृति की चुनौतियों को सहते हुए भी वो एक मौन तपस्वी की तरह बिना किसी शिकायत के सब कुछ न्यौछावर कर देता है और सृष्टि के लिए जीवन संतुलन तथा समृद्धि का आधार बना रहता है। अनंत गहराइयों, असीम धैर्य और मानवीय भावनाओं के इस जीवंत दर्पण में अनगिनत कहानियां, रहस्य और जीवन के सूत्र समाये हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनोखी रात फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत, संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। संजीव कुमार इस गाने में एक वाहन चलाते हुए दिखाई देते हैं, वो वाहन कौन सा है आप हमें बताइए।

फिल्माया गया है और इस फिल्मांकन में वो बैलगाड़ी चलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र हमें सिखाता है कि गहराई में ही असली खजाना छिपा होता है। ऊपर लहरों का शोर होता है लेकिन भीतर अनगिनत मोती पलते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि इसका यानी कि समुद्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारी पृथ्वी को करीब 70% घेर के रखता है और हमें हवा पानी मुहैया करवाता है, हजारों लोगों को रोजगार देता है। इसके किनारे खड़े होने पर अलग अलग समय में अलग अलग दृश्य देखने का रोमांच अलग ही होता है। ठंडी हवा के झोंके से मन आनंदित होता है तो कभी दूर तक शांत दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि समुद्र केवल भौगोलिक संरचना नहीं है बल्कि एक भावना है। इसे देखकर मन में असीम शांति और कभी कभी विचारों का ज्वार भाटा उठता है। यह बाहर जितनी अटखेलियां करता है इंसान के भीतर भी उतनी ही गहरी हलचल पैदा करता है। समुद्र की लहरें जब तट की रेतीली किनारे से टकराती है तो वह दृश्य अद्भुत होता है। लहरें अपने साथ गहरे समंदर में सुंदर सीप शंख और मोती तट पर छोड़ जाती है जिन्हें लोग यादों के तौर पर समेट लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रंगोली फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल और संगीत है शंकर जी जयकिशन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है आप बताइए हमें।

जयंती माला ये गीत गा रही है फिल्म में जो हमें दिखाई देता है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सागर की लहरें किनारे से टकराकर लौट तो जाती है लेकिन हार कर नहीं, वे फिर जाती है, फिर कोशिश करती है। शायद इसी में जीवन का सबसे सुंदर संदेश छिपा है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज विश्व महासागर दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वस्थ महासागर ही स्वस्थ पृथ्वी और उज्जवल भविष्य की नींव है। बढ़ते प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें समुद्रों को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेना चाहिए। जी हाँ, ये सबसे जरूरी बात है कि ऐसी चीजों का उपयोग हम कम करें या ना करें जिनसे ये जो जलाशय हैं हमारे ये प्रदूषित हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप घूमने के लिए जाए तो प्लास्टिक का बहुत सारा कचरा और गंदगी वहां पर फेंक करके ना जाए, क्योंकि दूसरे भी तो सैलानी वहां आने वाले हैं ना देखने के लिए, और वो जब देखेंगे इस गंदगी को तो उन्हें फिर कहाँ आनंद आएगा। और वैसे भी इन चीजों से, प्लास्टिक से या गंदगी से, वो जलाशय जब गंदे होते हैं, प्रदूषित होते हैं, तो जब हम दोबारा जाएंगे तो क्या देखेंगे, या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या देख पाएगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर ये गंदे हो गए तो ये हमारे दिल को बहला नहीं पाएंगे। दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, संगीत नौशाद का।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना दिलीप कुमार पर यह गाना फिल्माया गया है। एक हमारे साथी की बात है कि समुद्र सागर या फिर महासागर मनुष्य की जीवन शैली को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये मात्र विशाल जल राशि का स्रोत नहीं है बल्कि असीम धैर्य स्थिरता और जीवन चक्र को प्रतीकात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। सागर की लहरें चाहे कितनी भी उग्र हो सागर की गहराई उतनी ही शांत और गंभीर होती है जो एक संदेश देती है। मनुष्य के जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो जीवन का उतार चढ़ाव में संयम और धैर्य रखें, मन को विचलित न होने दें। समुद्र के सामने मनुष्य का अस्तित्व उसकी एक बूंद के बराबर है। समुद्र की विशालता हमें अहंकार मुक्त होकर प्रकृति के प्रति विनम्र रहने की प्रेरणा देती है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नीले जल में छिपे हैं कितने अनकहे राज, लहरों की जुबां पर बस प्रकृति का साज। शाम ढले जब सूरज समंदर में खो जाता है, हर कतरा तब प्रेम का दीप जलाता है। सीप की खामोशी में मोती का जन्म होता है, दर्द सहकर भी जीवन अनुपम कर्म होता है। मन के वेग को थाम लेती है ये लहरें, जैसे माँ की गोद में सो जाए सारी दहशतें। समुद्र कहता है बहते रहो, ठहरना मत, सपनों की राह में कभी बिखरना मत। प्रकृति का अटूट समर्पण यही कहता है, जो प्रेम में डूबा हो वही मोती बन पाता है। धन्यवाद आपका। और अब प्यार का सागर इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। आशा भोसले और मुकेश की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए हमें।

राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्म आया गया ये गाना अभी हमने आपको सुनवाया। एक साथी की ये बात है कि जब हम सागर के किनारे अपने पैर डालकर बैठे हैं तो वहां से हटने का दिल नहीं कर रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी, आती जाती लहर को हम देख रहे थे, मानो वो हमसे धीरे धीरे कुछ बोल रही हो, कुछ बताना चाह रही हो। हम सुनना चाहते थे उनकी बातें, कुछ सुनी, हर जाती लहर मानो हमारे सारे दुख दर्द अपने साथ दूर, बहुत दूर ले जा रही हो और आती लहर हमें अनगिनत खुशियां दे रही हो। बस फिर क्या, हमारी नटखट सी परी ने कहा, नानी उठो, हम दोनों इसमें पत्थर फेंकेंगे और हमारी बातें अधूरी रह गई। हम बहुत सारी बातें करना चाहते थे समुद्र से। एक साथी लिख रहे हैं कि सागर की आती जाती लहरें हमें ये संदेश देती है कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशियों की लहर आती, कभी चुनौतियों की। लेकिन जैसे लहरें बार बार किनारे पर पहुंचने का प्रयास करती है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार कर लौटना नहीं, बल्कि फिर से उठकर आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे सुंदर सीख है। चलिए अगला गाना अब हम आपको सुनवाते हैं, तकदीर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ और साथ में कुछ और भी आवाज़ें हैं, सुलक्षणा पंडित, मीना पत्की और इला देसाई की इसमें आवाज़ें हैं और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है ये, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए ये गीत कि जब हमारे घर के कोई व्यक्ति सात समंदर पार जाते हैं तो हम क्या उम्मीद रखते हैं, यही ना कि चाहे जो भी हो, बस आप सुरक्षित घर लौट आइए, घर लौट आइए।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सागर किनारे जो शाम होती है वो प्रकृति में सबसे मनमोहक और सुरमई सा रूप लेते हुए मनुष्य में एक कौतूहल उत्पन्न करती है, प्रतीत होती है। इस समय सागर में उठने वाली लहरें मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम, विरह और शांति को बहुत ही मनोयोग से बयां करती है। ढलती हुई शाम को सूर्य जब लालिमा बिखेरता है और सागर में उठती लहरों से किरणें आर पार गुजरती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सागर का 16 श्रृंगार कर दिया है। साथ ही नीला आसमां भी लालिमा बिखेरता है जो एक मनमोहक दृश्य बना देता है। एक साथी लिखने की महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है बल्कि प्रकृति की अनंत भावनाओं का प्रतीक भी है। इसकी अथाह गहराइयां हमें जीवन के रहस्यों का एहसास कराती है जबकि इसकी लहरें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। महासागर प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो अपनी सुंदरता, शक्ति और शांति से हर हृदय को छू लेता है। धन्यवाद आपका। और अब मजेदार फिल्म का गाना एसपी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

एक साथी लिखते हैं कि कुछ बातें गीतों की तरह होती है, जितना सुनो उतनी ही अच्छी लगती है, और कुछ रिश्ते लहरों की तरह जो दूर रहकर भी मन के किनारों को छूते रहते हैं। कुछ गीत भी ऐसे होते हैं जो मन के किनारों को छूते हैं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना संकल्प फिल्म का गाना, कैफी आजमी के बोल, संगीत खय्याम का, आवाज किसकी है बताइए हमें।

जी हाँ, इन सागरों की गहराई को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

आज जिधर भी नजर जाती है सब दौड़ रहे हैं धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे। इस अंधी दौड़ में हमारा सुख चैन कहीं खो गया है। न जाने कितने लोग इस रैट रेस के कारण अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बलि चढ़ा देते हैं। सारा धन और वैभव हमें मानसिक शांति नहीं पहुंचा सकता, इसके लिए तो संतोष रूपी धन की आवश्यकता होती है। सब कुछ झटपट पा लेने की बजाय संतोष के साथ थोड़ा थोड़ा संचय ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए।

कई बार हम देखते हैं कि रहने वाले तो एक दो ही हैं और कई कमरों का मकान है, आभूषण और धन इकट्ठा करने की मानो होड़ सी लगी है। सोचकर देखिएगा, हमारी आवश्यकता तो बेहद कम होती है और बाकी संचय तो हमारे ईगो को तुष्ट करने के लिए ही होता है ना? और इस चक्कर में हमारा जीवन पिसता रहता है। अगर हम संतोष धन को अपना लें तो हमारा परिवार सुखी परिवार लगेगा और अपना छोटा सा घर भी मानो सोने के महल जैसा मालूम

0: भारत ऋषियों मुनियों का देश रहा है। यहाँ त्याग और संतोष को महान गुण माना गया है। इन गुणों को हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में मानो भूलते से जा रहे हैं। आज आवश्यकता है सहज रूप से जीवन यापन की, मस्त मौला होकर बेफिक्र अंदाज में जीने की। संतोषी व्यक्ति अपने आप में, अपने अंतर्मन में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता है।
1: मैं हूँ

मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुमरो फक्कड़ घूमू बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का

तो दोस्तों, जीवन में संतोष हमारे मन को शांत रखता है और हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है, हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मधुर बनाता है। तभी तो कहते हैं, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया।

0: इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय

0: निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: Aman Yadav ke saath Saklain Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन

0: रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूँ। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो भारती राष्ट्रीय सेवा, देश के सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आज और कल। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

आज और कल फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत रवि का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब अगला जो गीत आपको सुनवा रहे हैं ये बहुरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर ने गाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीत तैयार किया सी रामचंद्र ने।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं ये बंदिनी फिल्म का गाना, आवाज लता मंगेशकर की, गुलजार के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

आइए अब सुना जाए ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: बेदर्द दगा बाज
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना बेगाना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कैप्टन शेरू। इस फिल्म का ये गाना सुमन कल्याणपुर ने गाया है, नक्श लायलपुरी के बोल और संगीत है एस मोहिंदर का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा यानी मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस वही जैसे आपने पूछा क्या हाल है, तो हमेशा की तरह हम कहते हैं बहुत अच्छे
1: हैं। और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती हैं तो लहरों में खूब मौज मस्ती करती होंगी निश्चित रूप से।
2: बिल्कुल।
1: फिर वहां जाती हैं तो क्या छोड़कर आती हैं और क्या लेकर आती हैं?
2: देखिए हम जो हैं उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। और रेत जो होती है ममता जी, वो अक्सर आप जहां पैर रखेंगे दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे तो वहां खिसकती है रेत। तो अगर आप भूल से भी किसी पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और जब आप पैर नीचे रखेंगे तो आपका पैर बहुत अंदर तक जाएगा, तो ये सावधानी हमें
1: बिल्कुल
2: बताई थी।
1: ये कहा जाता है ना कि आग और पानी का कोई भरोसा नहीं होता है, तो खास तौर से समंदर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो जैसे कि मुंबई तटीय इलाका है और यहाँ पर बीच है और नियमित रूप से लोग आते जाते हैं, तो यहाँ का मालूम है यहाँ के निवासियों को, और इतना गहरा भी नहीं है समंदर यहाँ का। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर महासागर की गहराई ज्यादा है और जो बहुत इंटीरियर बीच है, वहां जब आप जाते हैं तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अंदर तक पानी में ना जाएं और कहीं पर रेत धसकती है। और कुछ ऐसे जगह खास तौर से रायगढ़ में एक जगह है दापोली, जहां पर हमने देखा, हमने खुद देखा है कि वहां पर पैर रखिए तो आप एक जरा सा कुछ सेकंड के लिए खड़े होंगे तो आपके पैर मतलब घुटने तक रेत चली जाती है इतना तक। और कई बार गाड़ियां वहां पार्क की जाती हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं और ये बाकायदा इंसिडेंट होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहां जहां जा रहे हैं पहले वहां के बारे में सावधानी और नियमावली पढ़ लें उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में। और एक बात और है जो आप भी जानती होंगी कि वहां पर ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए आप क्या कहेंगे?
2: क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीजें ले जाते हैं या वहां से परचेज करके खाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है तो उसमें जो पॉलिथीन चीज जैसी चीज होती है या आपने दोने में कोई चीज खाई है तो वो सब वहीं पे छोड़ के चले आते हैं, तो वो वापस समुद्र में जाते हैं जो उसको दूषित कर देता है पानी
1: और आपको वापस देता भी है,
2: वापस पलट के वो लहरों के थ्रू वापस आता भी है।
1: तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूंगा। मतलब समंदर ये एक तरह से मूक भाषा में ये कहता है,
2: संदेश देता।
1: तो ये मत करिए, जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला पानी में और एक पॉलीथिन फंस गया और एक कचरा कागज का टुकड़ा या कुछ भी आ गया, तो बहुत बुरा सा लगता है ना, आपको डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, मछली तो नहीं आ गई।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे जैसा वो उसके साथ करेंगे वो भी वापस जवाब देता है, तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए खाइए पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथीन में पैकेट में झोले में रख के ले आइए अपने घर में आसपास जो आपका कचरा दान है उसमें डालिए, या वहां पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए, वहां समुद्र के वातावरण को उसके किनारे को उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं करिए।
1: और बारिश के मौसम में समंदर के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मुंबई में भी खासतौर से एक बीच है अक्सा बीच जो कहा जाता है, वो थोड़ा सा गहरा है तो वहां पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है। और उस वहां पर जो युवाओं का झुंड है अक्सर जाता है
2: जी,
1: और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं। तो प्लीज अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है जिंदगी। और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव साझा करें, बजाय ये लिखने की कि हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है।

0: तो ममता जी हम पहले विषय बता देते हैं कि हम बात करेंगे व्यंजन में मथुरा की दाल और आलू की कचौड़ी जो वहाँ प्रसिद्ध है उसके बारे में, और एक विषय हमारा है तपाक से बोलने की आदत। तो हमारे साथी इस पर लिखकर भेज चुके हैं और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विद भारती के पेज से वो भी लिखकर भेजे। और धरती की धड़कन है महासागर, विश्व महासागर दिवस
1: वो हमने
0: बताई दिया है। और कथा सुधा में हम आभूषण का भाग दो सुनेंगे।
1: और तपाक से बोलने की जो आदत है, कई बार लोग तपाक से बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं, तो जरा सोच समझ के बोलिए क्योंकि कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। तो जब बोले तो सोच समझ के। फिलहाल ये गाना सुने।

0: भी खाया के दिन में।
1: आइए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण इसका भाग दो।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से

0: लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
2: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नव वधू मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
2: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी जिसने एक ही धावे में

समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा, यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष। पर उनका ये सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय ना कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: संध्या के समय बड़ी गर्मी थी। पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते फिर हाँप कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
2: क्या बात है।
1: मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली।
0: चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
3: ये क्या बेवक्त की शहनाई है। यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है।
4: रूप सुहाना लगता।
3: मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है। उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग रंग, आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है।
0: अंत को न रहा गया। जनान खाने में आकर बोले,
3: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है? बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
0: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
5: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
3: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
5: तुम्हें सुनाता ही कौन है? क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है?
3: फजूल की मचमच।
5: तुमसे मतलब?
3: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
5: तो मेरा घर कहीं और है।
3: इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए।
5: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
3: ओहो, हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
5: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे? तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्टे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला?
3: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
5: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो। यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
3: क्यों व्यर्थ की

0: बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ?
1: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
0: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो?

रमेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहू विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं।

0: मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे तो क्या अब यहाँ तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहाँ प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहाँ है?
2: मैं के कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे तो तब कहाँ जाओगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
0: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में है।
0: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कने महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती

0: जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल व्हेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यही मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, और मछली तो वहां पर मिलती ही मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
1: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है हम सब
0: ईंधन का साधन है, और व्यापार और पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
1: बिल्कुल, हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान है। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरें और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
0: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती है, ऐसा लगता है वो दृश्य।
1: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांध दी और नूपुर बज उठते हैं। उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी सखियां बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
0: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर हैं। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
1: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरती देखे तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है। तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा है ये। इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएं तो वहां स्वच्छता, साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
0: जब आप तो ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी

0: कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
1: शुक्रिया मंजरी जी, लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
0: जी,
1: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय, हम प्रकृति के उन नजारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
1: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं। दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार, और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए। सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है, इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है। बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है। जो
1: क्या बात है, अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देव बर्मन ने संगीत दिया। बारूद।

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था।
1: देखिए ना, कुछ कहने वाले
0: अरे, हैं हमें। आपने मुझे बोले ही नहीं थे, काट दिया।
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: तपाक से मतलब ये तपाक से बोलना हुआ लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, और तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसा बोला ना कि तपाक से बोल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं, कई बार सही भी तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता है।
0: जैसे अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया लेकिन आप घबरा गई।
1: हमें लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं गलत ना असर पड़ जाए, तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी कि मतलब वो
0: अच्छी बात बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं ये ऐसा था।
1: बिल्कुल, और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है मतलब है, कहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए कहाँ बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं, कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है, और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी, और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूँ भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से।
1: बिल्कुल,
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो, तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को पर वार करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुपते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए, पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार स्नेह बढ़ता है, इन्होंने बात लिख करके।
0: और हमारी सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलतफहमी, विवाद या सामने वाले

0: को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
1: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है। जहां लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं, वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन, रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो, मित्रों, आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता, संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी, अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में। इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है। इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में न काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से, कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं मान गई, चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं। तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो इसलिए एक दूसरे को काटकर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोलें और चिंता में और गुस्से में ना बोलें। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
1: देखिए, एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे। ममता जी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है, लेकिन प्राय महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है। इन्होंने लिखा है पड़ोसी की
0: काफी विश्लेषण किया है इन्होंने।
1: देखिए ना, पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ। कभी कभी हमारी भी ऐसी करती है, अब नहीं तो कहकर सब मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाऊं।
0: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना, फटाफट तपाक से ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
1: सही बात
0: तो
1: है।
0: ये क्या वजह है, हमें लगता है कि
1: बड़े बैठे होते होंगे इसलिए बोल जाते होंगे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती है?
1: नहीं, अब गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं।

0: करना है।
1: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हमें
2: आज ही कहना पड़ेगा
1: तुरंत कहना पड़ेगा। और तपाक से जी, तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज?
2: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी
1: तो
2: खाते
1: ये
2: हैं।
1: रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
2: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
1: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना,
2: अभी तो
1: सिर्फ बनाया नहीं जाता है।
2: जी वो तो मैं जानती हूँ, आपके इशारे, आपकी आंखों की जो चमक थी वो मैं समझ गई थी।
1: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही
2: हैं? आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं। इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी, आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच अमचूर और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है, तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। और आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो आटा साना है उससे लोइयां बनाइए, उसमें आलू का ब्रावन भरिए और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियां तैयार हो जाएगी।
1: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
2: बिल्कुल ये ताली भी नहीं जाएगी
1: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, 1/2 कप धुली उड़द की दाल, 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1/6 चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाए, भीगी उड़द की दाल का पानी निकालकर दरदरा पीस लें, कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें, अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें, अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें, इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
2: जी।
1: और अब ये गाना सुनिए।

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोली बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूं। और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं।
0: डॉक्टर

0: अब ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है, और देखिए इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से तो अच्छा भी लगता है।
1: जी बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहाँ से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूँ और उनको मेरे विचार पहुँचा सकता हूँ और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूँ आज के विषय के बारे में।
0: जी आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल ये कॉमन सी बात हो गई है और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलिटस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस जो कि एडल्ट्स में होता है जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह डायबिटीज इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है, महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है, कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
0: देखिए ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वे किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया। हम कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
1: सी डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है जिसके कारण कि शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
0: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरिए वाली बात होती है तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
1: टाइप 1 के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे, ये जैसे कि मैंने कहा इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है।
0: ओह ओहो,
1: इतना ज्यादा शुगर होता है।
0: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
1: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो

0: 30 के अंदर होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है, वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
1: अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो, कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वजन कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज्यादा खा लिया है तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
0: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा। बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में, तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ, वही देखिए, चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप
0: श्रोताओं को। मैं ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज़ ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
1: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले, देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप टू मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज हो सकता है, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इंफेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है, जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का इंडिकेटर है, और अगर ये ज्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज का मरीज है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स है और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं।
0: तो कभी कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा, क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है, तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में उसे हम टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज का

0: इंडिकेटर मिलता है और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं।
1: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज का मरीज ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है, तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
0: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है। अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होकर एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है। बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का बीपी बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इस ओपीडी बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
1: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है। ये आप देखते हैं, पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ रहा है। कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
0: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें जैसे कि मैंने कहा पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या है, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है, इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
1: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
0: पेशेंट वो दूर टेंशन होती है।
1: अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
0: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है, ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा जो मेरे MD के बैचमेट्स है, मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा।
1: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, इसकी कोई उम्र नहीं है। 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके।
0: हाँ।
1: तो इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहां पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज इटसेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
0: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा, जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था

0: अवस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज आ जाता है?
1: जरूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स है, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है तो काफी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज आ सकता है, बट जरूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
0: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि ये पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता?
1: टाइप 1 डायबिटीज में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज है कि नहीं। पर अगर बच्चा है उसको टाइप 1 डायबिटीज है तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है, हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज होता है उसमें इंसुलिन इज द लास्ट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन दवाइयां मार्केट में हैं, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा।
1: जी सही बात है, इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा, बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं।
0: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दुर्बलता आती है?
1: डायबिटीज में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, बट अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
0: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
1: डायबिटीज जो है इसका कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स है जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दे, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशन है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज हो रहा है, इसके कारण डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली है।
0: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
1: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है और ये मैं डेडिकेट करना चाहूंगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे जमी पर का ये बहुत ही उमदा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूंगा।
0: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे जमीन पर फिल्म का ये गाना।

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण है। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज के लिए प्रोन है। जरूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज होने की। आजकल जो उससे ज्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि हैं, ये पेशेंट्स में डायबिटीज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या

0: आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज को बढ़ावा दे सकते हैं, आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज को डायबिटीज हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको कि पिता को था लेकिन तीन भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, दो को नहीं हुआ है।
0: डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट जरूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज है तो सभी बच्चों को डायबिटीज होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे तो चांस है कि उसको डायबिटीज नहीं हो।
1: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं, तभी इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं आप?
0: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ, ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है, उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है, ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पे भी स्टडीज है जो बताती है कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफ़ी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले, कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूं, भगवान ने हमको दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर लो, बीच में जो दिमाग है उसको बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो
1: जी।
0: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
1: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए
0: जी। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर
1: जी।
0: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज जो कॉम्प्लिकेशंस है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊं तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है जहां पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोतीबिंदु कहते हैं, तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, बट अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं, इतना गंभीर रूप से डायबिटीज का असर होता है। तीसरा असर डायबिटीज का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में। स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज्यादा है, तो हम पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज में न्यूरोपैथी होती है जिसमें हम

0: हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे है उसमें जलन होती है। ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
1: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताई है, पैरों की पगतलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
0: डायबिटीज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि पैरों में ज़ख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये ज़ख्म बढ़ता जाता है। और डायबिटीज़ के जो मरीज़ है ये काफ़ी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं, इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए और फुट वेयर जो है वो प्रॉपर फुट वेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पिटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक की कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते हैं तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
0: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है, लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज नहीं है उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज नहीं पहने और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा।

0: हमें जो गीत आपने सुनवाया, उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना जरूर चाहेंगे कि डायबिटीज ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफस्टाइल सही रखे, हम एक बैलेंस्ड डाइट फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज के भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होगी। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहाँ से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है, इनमें बहुत ही कम होती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम खत्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी छः दिन जो है हफ्ते के उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाद, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोंड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाड्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए। और तली हुई चीज़ें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज़्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यस, आप डायबिटीज़ की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ होने की संभावना है।
0: ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है, खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
1: यस।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री, तो व्हाट इज शुगर फ्री?
1: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि सैकरिन हो गया या कुछ केमिकल्स है जो स्वीट टेस्ट देते हैं बट इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है इनमें इन केमिकल्स, शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं लें,

0: कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
1: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
0: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूंगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम,
1: आइए सुनते हैं।

0: साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुने तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102, 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5 बज चुके हैं। हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नई उमंग, नए जोश और ढेर सारी बातों के साथ आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त खुशी।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त इशिका। दोस्तों, हर शाम कुछ खास होती है, लेकिन जब उसमें साथ हो अपनों का, दिलचस्प बातों का और मधुर गीतों का, तो वो शाम यादगार बन जाती है।
0: बिल्कुल इशिका। और आज हम लेकर आए हैं

0: इस ऐसी ही खूबसूरत शाम जहाँ होगी ज्ञान की बातें, प्रेरणा के रंग, युवाओं के विचार और मनोरंजन का भरपूर तड़का।
1: तो दोस्तों, कुछ पल अपने सारे कामों से निकालिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अगले कुछ समय तक हम बनेंगे आपके साथी और करेंगे दिल से दिल की बातें।
0: दोस्तों, युवानी सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जहाँ युवा सोच को मिलती है आवाज और हर दिल को मिलता है अपना सा एहसास।
1: तो तैयार हो जाइए एक खूबसूरत सफर के लिए जहाँ हर पड़ाव पर कुछ नया सीखने को मिलेगा और हर मोड़ पर आपका मनोरंजन होगा।
0: तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का युवानी कार्यक्रम और सुनाते हैं आपको शाम का ये पहला गीत।

0: दोस्तों, इस बेहद ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। और आज आपके साथ है आपकी दो रेडियो दोस्त, मैं शिका
1: और मैं खुशी।
0: तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बढ़ते हैं हमारे आज के संवाद की ओर।
1: दोस्तों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि सेवा का कार्य केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत धन संसाधन या बड़ा पद हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है।
0: दोस्तों, सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता होती है एक अच्छे इरादे की और लगातार किए गए प्रयासों की।
1: दोस्तों, सेवा का अर्थ केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, किसी जरूरतमंद को सही मार्ग दिखाना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी निराश व्यक्ति को हौसला देना या अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के योगदान देना भी सेवा ही है।
0: बिल्कुल दोस्तों, इतिहास और वर्तमान दोनों गवाह है कि समाज में बड़े बदलाव अक्सर छोटे छोटे प्रयासों से ही शुरू हुए हैं। जब एक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ता है तो उसके कार्य दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, यही प्रेरणा धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप ले सकती है।
1: दोस्तों, सेवा का सबसे सुंदर पहलू ये है कि इसमें देने वाला और पाने वाला दोनों समृद्ध होते हैं। किसी की मदद करके हमें आत्मसंतोष मिलता है और समाज में आपसी विश्वास तथा सहयोग की भावना मजबूत होती है।
0: इसलिए यदि आपके पास बड़े संसाधन नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अपने आसपास देखें, किसी की छोटी सी आवश्यकता को समझें और अपनी क्षमता के अनुसार मदद का हाथ बढ़ाएं, क्योंकि याद रखिए, हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे कदम से ही शुरू होता है।
1: तो दोस्तों, आइए हम सब ये संकल्प लें कि अच्छे इरादे और निरंतर प्रयास के साथ सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे,
0: क्योंकि सच्ची सेवा साधनों की नहीं बल्कि

0: तो दोस्तों आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता राजेश मोदी जी से कि विद्यार्थियों के जीवन में योग का क्या महत्व है।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त खुशी। दोस्तों आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी हेल्थ और मेंटल पीस को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में योगा एक ऐसा माध्यम है जो न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। और दोस्तों यही रीजन है कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग योगा को अपने जीवन का हिस्सा बना सके। और दोस्तों इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजेश मोदी जी जो कि एक शिक्षक हैं। नमस्कार राजेश जी, युवाणी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूं और सभी को नमस्कार, युवाणी कार्यक्रम बुलाने के लिए आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो राजेश जी आप हमें बताइए कि क्या आप रोज नियमित रूप से योगा करते हैं?
2: हाँ, नियमित रूप से योगा करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, दैनिक क्रियाकर्म करने के बाद सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उसके बाद आने के बाद हम 30 से 35 मिनट हम योगासन और प्राणायाम और एक्सरसाइज करते हैं। योगासन में पहले प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में हम भ्रामरी, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम करते हैं, उसके बाद हम योगासन करते हैं। योगासन में भुजंगासन, मत्स्यासन, वक्रासन, शशकासन आदि आसन करते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात है राजेश जी। राजेश जी आप अभी बताइए कि आप योगा को किस तरह से देखते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी नजरों में?
2: मेरे विचार में योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की एक प्राचीन विज्ञान है जो मन को एकाग्र व संतुलित रखता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। योग एक संपूर्ण जीवन शैली है जो मनुष्य को निरोगी व शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाता है।
1: बिल्कुल, आजकल आपने देखा होगा कि हमारी जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत बिजी हो गई है, बहुत अनहेल्दी भी हो गई है, और इतनी हैक्टिक लाइफ में योगा को रेगुलरली करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो प्लीज इसके बारे में आप हमारे दोस्तों को बताइए।
2: आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग शारीरिक, मानसिक और अध्यात्म के बीच संतुलन बनाता है। नियमित योग से शरीर का लचीलापन बढ़ता है, मांसपेशियां और जोड़ मजबूत होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, अनेक रोग जैसे हाई बीपी, श्वसन तंत्र के रोग, पाचन तंत्र के रोग, डायबिटीज, इनको नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। प्राणायाम और योग रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और वजन को नियंत्रित करने में भी हमारी सहायता मिलती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आजकल ये जो डायबिटीज, बीपी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आजकल बढ़ भी गई है, आजकल हर किसी में ये कॉमन भी है, तो इसीलिए सभी के लिए जरूरी है कि वो योगा रेगुलर करें।
2: प्राणायाम से तनाव, चिंता, घबराहट आदि को कम करने में हमको सहायता मिलती है। आजकल लोगों को अनिद्रा का रोग भी है, तो प्राणायाम करने से हमको अनिद्रा के रोग को भी कम करने में सहायता मिलती है और हमें नींद अच्छी आती है, मन और आत्मनियंत्रण और सकारात्मकता बढ़ती है।
1: जैसे कि आप एक टीचर हैं, तो एक टीचर के रूप में आप स्टूडेंट्स की लाइफ में योगा की क्या भूमिका देखते हैं?
2: योगा का विद्यार्थियों के जीवन में बहुत महत्व है। प्राणायाम और योग से मस्तिष्क कार्यप्रणाली बढ़ती है जो कि स्टूडेंट को कक्षा में ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ाती है और याद करने की क्षमता को भी बढ़ाती है। योग से पढ़ाई का दबाव और परीक्षा का डर कम होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। योगासन से घंटों बैठकर पढ़ाई करने में जो कमर दर्द होता है और जो गर्दन की अकड़न, उससे भी विद्यार्थियों को राहत मिलती है।
1: आजकल ये तकलीफ बहुत बढ़ भी रही है स्टूडेंट्स पे, क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे टाइम तक बैठकर पढ़ते हैं, तो इनमें कंप्लेन आ भी रही है कि हमें कमर में दर्द होता है, हमारी गर्दन में दर्द होने लगा, इतनी कम उम्र में ये सारी परेशानियां वो फेस कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम।
2: कुछ विशेष प्रकार के योगासन भी है जिससे आपके गर्दन की अकड़न है या कमर दर्द है उससे आपको लगातार

0: योगासन को करो तो उससे आपको राहत भी मिलती है, योगासन से चिड़चिड़ापन जो होता है विद्यार्थियों में वो भी दूर होता है।
1: तो राजेश जी, जो युवा या विद्यार्थी हैं जो योगा की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: विद्यार्थियों को योग की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो समय निश्चित करना चाहिए, क्योंकि 10 योगासन जो होता है उसके लिए आपको 20 से 30 मिनट आपको देने पड़ेंगे। अच्छा। तो आपकी जो पढ़ाई का जो समय है, विद्यालय का जो समय, उसमें से आपको 20 से 30 मिनट निकालने होंगे। और जब योग की शुरुआत करो तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। वो पॉइंट्स हैं, पहला तो आपको योग खाली पेट करना पड़ेगा, या भोजन अगर कर लिया तो उसे 3 से 4 घंटे बाद आपको योग करना होगा। योग के लिए जगह ऐसी चुने जो हवादार हो और शांत वातावरण हो। योग के समय आप जो वस्त्र पहने वो ढीले और आरामदायक वस्त्र होना चाहिए। योग की शुरुआत जब करें आप तो योग क्षमता के अनुसार आपको करना चाहिए। पहले सरल योग आसन से आप शुरुआत करें। योग निरंतर करें, ये नहीं कि आप 1-2 दिन करके फिर योग दिवस के दिन योग करके,
1: जरूरी है
0: योग निरंतर करें। अपनी दैनिक जो दिनचर्या उसका हिस्सा बनाएं। और विशेष ध्यान रखें, जब योग खत्म होता है तो उसके बाद तुरंत पानी ना पिए, इसका विशेष ध्यान रखें। कम से कम 20 या 30 मिनट का अंतराल रखने के बाद पानी आपको पीना है।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी थी, क्योंकि आपने बोला ना कि 20 से 30 मिनट लगता है, तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी लोग हैं वो इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि वो आजकल फोन स्क्रॉल करने में, रील्स देखने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि 20 से 30 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है अपनी हेल्थ के लिए। और अब मैं मोबाइल की बात कर ही रही हूँ, तो आपने देखा ही होगा कि आजकल सब लोग, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, सब फोन चलाने में ही बिजी रहते हैं। एक एक घंटा निकल जाता है उसमें, हमें पता ही नहीं चलता है, और इसी वजह से मोटापा, आलस और कितनी सारी बीमारियां बढ़ रही है। तो आप इन पे क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे हम इस आलस को कम करके योगा को अपनी लाइफ में ला सकते हैं?
0: जो लगातार मोबाइल का उपयोग करते हैं तो उनकी आंखों पर वो दुष्प्रभाव पड़ता है, दिमाग पर वो दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी। जब भ्रामरी की जाती है तो हमारे मस्तिष्क वाइब्रेशन होता है, इससे आंखें का और कानों का और अपने जो दिमाग है वो स्वस्थ होंगे। दूसरा, आपके लगातार मोबाइल का उपयोग करने से गर्दन में अकड़न भी होती जाती है, तो उसके लिए भी आपके विशेष योगासन हैं, उनको करें नियमित रूप से, इससे भी आपको जो दिक्कत आती है वो दूर हो सकती है।
1: तो राजेश जी, आपने बताया अभी अलग अलग आसनों के बारे में भी आपने बताया कि योगा कितनी इम्पोर्टेंट है ये बताया। आप अभी एक बात कर रहे थे कि जो है स्टूडेंट्स जो है उनका पढ़ाई में भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है इससे, और उन पे जो प्रेशर है वो भी उनको थोड़ा कम फील होता है। आजकल जो है मेंटल समस्याएं हैं वो भी कितनी बढ़ रही है, कितना लोग मेंटली प्रेशराइज होते जा रहे हैं, पढ़ाई की टेंशन है, स्ट्रेस है, तो स्टूडेंट्स आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो क्या जो योगा है वो उनको इसमें भी हेल्प करता है कि ओनली फिजिकल नहीं, मेंटली भी ये आपको स्वस्थ रखता है?
0: हाँ, मेंटली भी स्वस्थ रखता है। योगासन करने और प्राणायाम करने से विद्यार्थी का ध्यान एकाग्र होता है, मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, इससे वो अपना ध्यान अन्य बातों से हटा करके पढ़ाई में लगाने की कोशिश करता है। स्कूल में जब उसको योगासन या प्राणायाम के सेशन आयोजित किए जाते हैं तो उसका ध्यान और जगह न जा करके योगासन पे जाएगा और उस दिशा में सोचने लग जाएगा और लगन पैदा हो जाएगी पढ़ाई के प्रति।
1: आपके अनुसार विद्यालय स्तर पर योग शिक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि आप जो है वो टीचर हैं, तो आप की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कैसे योगा को और स्प्रेड कर सकते हैं। तो आप स्कूल लाइफ में उस चीज का एप्लीकेशन बताइए कि क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं जिससे बच्चों को और टीचर्स को भी इसका बेनिफिट मिले।
0: विद्यालय में योग को प्रभावी बनाने के लिए इसको छात्रों की दिनचर्या में शामिल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब विद्यालय की जब दिन की शुरुआत होती है तो प्रार्थना सभा होती है, तो सबसे पहले प्रार्थना सभा की शुरुआत 10 से 15 मिनट विद्यार्थी विद्यालय में सामूहिक योगाभ्यास कराया जा सकता है, जिससे आपके विद्यालय में योग के द्वारा आपका दिन का प्रारंभ हो जाए। विद्यालय में योग के जो विशेषज्ञ उनको आमंत्रित किया जाए, उनके सेशन आयोजित किए जाए, ताकि वो सही आसन और प्राणायाम का बच्चों को ज्ञान दे सके और विभिन्न आसनों से प्राणायाम से क्या लाभ है उसका बच्चों को ज्ञान दे सके। विद्यालय में छोटे बच्चे भी होते हैं, तो छोटे बच्चों को योग सिखाने के लिए हम कहानी के माध्यम से या खेल के माध्यम से योग करा सकते हैं, तो कई बार संगीत के माध्यम से भी हम योग करा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे लगातार एकदम प्राणायाम या आसन तो कर नहीं सकते हैं, तो उनको संगीत के माध्यम

0: से भी हम छोटे छोटे योग शुरू में कराएं, उसके बाद फिर उनको थोड़े योग को सरलता से कठिन की ओर उसको ले जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि छोटे बच्चों का मन एकदम से नहीं लगता है, उनको हमें ध्यान लगाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए,
0: संगीत के माध्यम से भी।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया।
0: और विद्यालय में योग क्लब का गठन किया जाए तो योग क्लब क्या करेगा, समय समय पर योग का सेशन आयोजित करेगा, योगासन से संबंधित प्रतियोगिताएं विद्यालय में आयोजित की जाए, प्रश्नोत्तरी योगासन से संबंधित, भाई कौन से आसन से कौन सा लाभ होता है, कौन सा आसन किस तरह से किया जाता है, उस पर प्रश्नोत्तरी का सेशन आयोजित किया जाता है, विभिन्न योगासनों की पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। इससे विद्यार्थियों में योग और प्राणायाम के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। और इसी तरह से अगर पाठ्यक्रम में जो आपका सिलेबस है उसमें अगर योगासन या योग पाठ को शामिल किया जाए तो उससे भी बहुत लाभ होगा। बच्चे जब उस योग का कोई अध्याय पढ़ेंगे तो उनको फिर वो पढ़ेंगे तो फिर उसको देखेंगे भी सही कि योग से हमें क्या लाभ होगा, इससे योग के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी और योगासन करना या प्राणायाम करना प्रारंभ करेंगे। समय समय पर पेरेंट्स

0: या योग को पाठ को शामिल किया जाए तो उससे भी बहुत लाभ होगा। बच्चे जब उस योग का कोई अध्याय पढ़ेंगे तो उनको फिर वो पढ़ेंगे तो फिर उसको देखेंगे भी सही कि योग से हमें क्या लाभ होगा। इससे योग के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी और योगासन करना या प्राणायाम करना प्रारंभ करेंगे। समय समय पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का योग सेशन आयोजित किया जाए। एक नई चीज है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट का सम्मिलित योग सेशन आयोजित किया जाए। उसमें अभिभावक भी आएंगे और छात्र भी आएंगे और स्टूडेंट भी अध्यापक भी रहेंगे। सभी मिलकर के योगासन जब करेंगे तो विद्यालय में और परिवार में भी योग का माहौल बनेगा, प्राणायाम का माहौल बनेगा।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि उनके साथ में उनकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना, इससे उन बच्चों का ही नहीं साथ में उनकी फैमिली तक भी वो नॉलेज जाएगी। वो लोग भी जी वो भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। तो आप हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं राजेश जी, तो आप एक बात बताइए कि आप खुद एक टीचर हैं तो आप ये जानकारी भी हमारे दोस्तों को दे दीजिए कि ये जो योग दिवस है ये मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है।
0: 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने 2014 में इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। तभी से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में जान सके और शारीरिक और मानसिक जो विकार है उनको योगासन और प्राणायाम के माध्यम से दूर कर सके। आधुनिक जीवन शैली में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए योग एक अच्छा साधन है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करने के और दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाने के लिए भी योग दिवस मनाया जाता है, क्योंकि योग का जो दिवस है पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता है। एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी यहाँ पर जागृत होती है।
1: बिल्कुल राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। आपने अभी इतनी अच्छी बात बताई हमको कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है और योग का मतलब भी होता है जोड़ना, तो इससे जो हम है विश्व के साथ जुड़ सकते हैं और भारतीय योग जो है वो भी दुनिया भर में कितना प्रसिद्ध है क्योंकि ये भारत से ही निकला है और हम तो इसका लाभ ले ही रहे हैं। इसके साथ में बाकी विश्व भर के जो देश है वो भी इसका लाभ ले रहे हैं।
0: 21 जून को हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है, तो इसी दिन योग दिवस मनाया जाता है ताकि हमारी आयु भी उसी तरह से दिन की तरह से लंबी हो। इसलिए योग दिवस मनाया 21 जून को ही इसको सेलेक्ट किया गया है। और ये योग दिवस का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक फायदों के लिए दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है।
1: तो राजेश जी, अंत में राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप हमारे दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे।
0: योग एक शारीरिक व्यायाम नहीं, इसको शारीरिक व्यायाम न समझें। यह शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का एक माध्यम है। मेरा आप सभी से यह आग्रह है, श्रोताओं से, कि प्रतिदिन अपने डेली लाइफ में कुछ समय निकाल अवश्य निकालें, योग और प्राणायाम के लिए अपना कुछ समय जरूर दें। यह आपकी स्टूडेंट के लिए पढ़ाई और आपकी जो जीवन शैली है, आपका जो कार्य है उसमें सकारात्मक लाएगा और शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा। यही मेरा आपको सबको संदेश है।
1: बिल्कुल राजेश जी, आपने आज हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी ये जानकारी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दोस्तों तक पहुँचाई। तो दोस्तों, आप भी योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। अपनी बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त खुद के लिए भी निकालिए, क्योंकि हम अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही सकते हैं ना। और जैसा कि सर ने अभी हमें बताया कि 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उसी दिन योगा करें, बल्कि हमें रेगुलरली ये योगा करनी चाहिए। और दोस्तों, सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त खुशी। नमस्कार
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता जिसमें बात कर रहे थे राजेश मोदी जी। तो चलिए दोस्तों, फिर से ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं आपको एक बेहद बेहद बेहद प्यारा गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आइए सुनते हैं।

0: तो दोस्तों, इस बेहद ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त इशिका, और मेरे साथ हैं,
1: मैं हूँ आपके साथ खुशी।
0: तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट परिवेश हमारा की ओर, जिसमें आज हम बात करेंगे नमामि गंगे अभियान और गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस पर।
1: दोस्तों, हमारा पर्यावरण पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि नदियां भी उसकी जीवनदायिनी धारा है। भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी गंगा करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और आजीविका का आधार है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों के कारण गंगा के पारिस्थितिक तंत्र को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
0: और इन्हीं चुनौतियों से निपटने और गंगा को स्वच्छ एवं अविरल बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने नमामि गंगे अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही गंगा जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस एक अभिनव पहल है।
1: दोस्तों, गंगा नदी केवल जल का स्रोत नहीं है, बल्कि ये एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का भी आधार है। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए वर्ष 2014 में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नदी में गिरने वाले प्रदूषित जल को रोकना, सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करना, घाटों का विकास करना तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना है।
0: और दोस्तों, नमामि गंगे के अंतर्गत अनेक शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं, नदी किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया है तथा औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले उपशिष्ट पर निगरानी रखी जा रही है। इस अभियान ने गंगा संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है।
1: बिल्कुल दोस्तों, गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये डॉल्फिन स्वच्छ और स्वस्थ नदी का संकेत मानी जाती है। लेकिन जल प्रदूषण, अवैध मछली पकड़ने के जाल तथा जल स्तर में बदलाव के कारण इनकी संख्या प्रभावित हुई है।
0: और दोस्तों, साथ ही गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए सरकार और विभिन्न संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी दिशा में गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: दोस्तों, ये विशेष एम्बुलेंस उन डॉल्फिन्स को बचाने के लिए तैयार की गई है जो किसी कारणवश उथले पानी में फंस जाती हैं, घायल हो जाती हैं या संकट में आ जाती हैं। एम्बुलेंस में आवश्यक उपकरण, ऑक्सीजन व्यवस्था और प्रशिक्षित विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं जो डॉल्फिन को सुरक्षित तरीके से बचाकर पुनः उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ने का कार्य करते हैं।
0: और दोस्तों, इस पहल से न केवल डॉल्फिन्स की जान बचाई जा रही है, बल्कि नदी की जैव विविधता के संरक्षण को भी मजबूती मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि गंगा डॉल्फिन सुरक्षित है तो इसका अर्थ है कि नदी का पारिस्थितिक संतुलन भी बेहतर स्थिति में है।
1: जी हाँ दोस्तों, यदि हम अपनी नदियों को स्वच्छ और जीवित बनाए रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इन प्राकृतिक धरोहरों का लाभ उठा सकेंगी। नमामि गंगे अभियान और गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जैसी पहलें हमें ये संदेश देती हैं कि विकास और पर्यावरण संरक्षण

तो चलिए दोस्तों, फिर से आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और फिर से सुनाते हैं आपको एक बेहद प्यारा गीत। आइए सुनते हैं।

0: दोस्तों, इस बेहद ही प्यारे गीत के बाद अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट नॉलेज कॉर्नर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे विश्व महासागर दिवस के बारे में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विश्व महासागर दिवस की, जो प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य महासागरों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। महासागर पृथ्वी की सतह के लगभग 70% भाग को ढकते हैं। वे न केवल लाखों जीवों का घर है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महासागर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जलवायु को संतुलित रखते हैं और करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है।
1: दोस्तों, लेकिन आज महासागर अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना, जलवायु परिवर्तन और समुद्री प्रदूषण उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। हर वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंचता है, जिससे समुद्री जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान होता है।
0: दोस्तों, विश्व महासागर दिवस हमें ये संदेश देता है कि महासागरों की रक्षा केवल सरकारों की ही नहीं, बल्कि हम सभी की भी जिम्मेदारी है। प्लास्टिक का कम उपयोग, कचरे का उचित निपटान और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार, इन सबको अपनाकर हम इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
1: तो दोस्तों, आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि महासागरों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे, क्योंकि स्वस्थ महासागर ही स्वस्थ पृथ्वी और सुरक्षित भविष्य की नींव है।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हमने अमृत को कभी चखा तो नहीं, उसकी अमर मिठास शायद ऐसी ही।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: तो दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं नॉलेज कॉर्नर सेगमेंट के अगले विषय पर। दोस्तों अब हम बात करेंगे विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस की, जो प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन। इस दिवस का उद्देश्य मस्तिष्क ट्यूमर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, रोगियों का मनोबल बढ़ाना तथा समय पर जांच और उपचार के महत्व को समझाना है।
1: दोस्तों मस्तिष्क ट्यूमर मस्तिष्क

0: में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि को कहा जाता है। ये किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसके सामान्य लक्षणों में लगातार सिरदर्द, चक्कर आना, दृष्टि संबंधी समस्याएं, याददाश्त में कमी, दौरे पड़ना तथा शरीर के किसी भाग में कमजोरी शामिल हो सकते हैं।
1: हालांकि हर सिरदर्द ब्रेन ट्यूमर का संकेत नहीं होता दोस्तों, लेकिन यदि लक्षण लगातार बने रहें या गंभीर हों तो चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लेना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जांच और उपचार की अनेक प्रभावी सुविधाएं उपलब्ध है, जिनसे समय रहते रोग का पता लगाकर बेहतर उपचार संभव है।
0: दोस्तों, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस हमें ये भी याद दिलाता है कि रोगियों को केवल चिकित्सा ही नहीं बल्कि परिवार और समाज के सहयोग, संवेदना और मानसिक संबल की भी आवश्यकता होती है।
1: तो दोस्तों, आइए इस अवसर पर हम जागरूकता फैलाने, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और मस्तिष्क ट्यूमर से जूझ रहे लोगों के प्रति सहयोग और संवेदनशीलता का भाव रखने का संकल्प लें। तो दोस्तों, आइए फिर से ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं आपको एक और बेहद बेहद बेहद प्यारा गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आइए सुनते हैं।

0: दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कुछ खेल गतिविधियां।
1: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए एशियाई खेल 2026 का स्क्वाड घोषित किया गया है।
0: साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज वेस्टइंडीज महिला टीम के खिलाफ T20 विश्व कप के अभ्यास मैच में उतरी।
1: दोस्तों साथ ही इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 115 रनों से हराया।
0: साथ ही भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रगनंदा को नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने पर सम्मानित किया गया और 50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया।
1: बारह जून से शुरू होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर प्रसारण और कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियां तेज है।
0: जून में एवीसी मेंस वॉलीबॉल नेशंस कप 2026 की मेजबानी करेगा जो 20 से 28 जून के बीच अहमदाबाद में आयोजित होगा।

0: वैज्ञानिकों के अनुसार 8 जून को G3 श्रेणी का भू चुंबकीय तूफान पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है। इसके कारण कुछ क्षेत्रों में दुर्लभ अरोरा यानी नॉर्थन लाइट्स जैसी रोशनी दिखाई देने की संभावना जताई गई है।
1: हाल ही में अहमदाबाद में प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया।
0: पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हुए। योजना के तहत 75 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी ऋण और डिजिटल भुगतान सुविधाओं का लाभ मिला है।
1: साथ ही भारत और यूके ने क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी शुरू किया, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है।
0: दोस्तों, भारत का पहला फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल लॉन्च किया गया, जो वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देगा।
1: और दोस्तों, साथ ही नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया।

0: दोस्तों, अब हमारे स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि शाम के 6 बजने वाले हैं, यानी कि अब वक्त आ चुका है आप सभी को अलविदा कहने का। फिर से मुलाकात होगी युवानी के अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आपकी दोनों रेडियो दोस्त, मैं शिका
1: और मैं खुशी को।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही आप हमें न्यूज ऑन AIR के ऑफिशियल ऐप पर भी सुन रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब श्रोता सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले हिंदी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान प्रदान किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर खेद व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 180 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 kHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हो चुके हैं और कुछ ही क्षण में आगाज होगा आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत से पहले लेकिन आपको दे देते हैं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। आज रात 9 बजे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में हमारे केंद्र से एक परिचर्चा का प्रसारण किया जाएगा, जिसका विषय है भारतीय संगीत के विकास, संवर्धन और प्रचार प्रसार में आकाशवाणी का योगदान। इस परिचर्चा में प्रतिभागी हैं पंडित महेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर सुधा अग्रवाल और डॉक्टर रोशन भारती। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला नगमा फिल्म कबीर सिंह से।

फिल्म कबीर सिंह से अभी आपने ये नगमा सुना विशाल मिश्रा की आवाज में। बोल लिखे मनोज मुंतशिर ने, संगीत विशाल मिश्रा का। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म लव ब्रेकअप्स जिंदगी से ये गीत।

फिल्म लव ब्रेकअप्स जिंदगी से अभी आपने सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सलीम मर्चेंट और श्रद्धा पंडित की आवाजों में ये गीत सुना, जिसके बोल लिखे जावेद अख्तर ने और संगीत सलीम सुलेमान का। लीजिए फिल्म संगीत में अब प्रस्तुत है अगला नगमा फिल्म नोटबुक से।

विशाल मिश्रा, आशीष कौर की आवाजों में अभी आपने ये फिल्म नोटबुक से गीत सुना। अक्षय त्रिपाठी के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत। लीजिए, अब प्रस्तुत है फिल्म ओम जय जगदीश से ये गीत।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही आप हमें न्यूज ऑन AIR की ऑफिशियल ऐप पर भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, आपको एक कार्यक्रम संबंधी सूचना दे देते हैं। आज रात 9 बजे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में हमारे केंद्र से एक परिचर्चा का प्रसारण किया जाएगा, जिसका विषय है भारतीय संगीत के विकास, संवर्धन और प्रचार प्रसार में आकाशवाणी का योगदान। इसके प्रतिभागी हैं पंडित महेश चंद्र शर्मा, डॉ सुधा अग्रवाल और डॉ रोशन भारती। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। अब श्रोता सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार एवं जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर केंद्र से।

0: कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
2: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: हम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
6: आगे सैलरी?
7: हाँ।
6: नए झुमके?
7: ना, पहले बचत।
6: पहले झुमके? सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि

0: टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हित की विकास यात्रा बताया है। आज श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना, किंतु इस विकास यात्रा के केंद्र में गरीब और वंचित वर्ग का कल्याण रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। श्री मोदी ने कहा कि गरीबों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डबल इंजन सरकार प्रदेश में जनहित योजनाओं के जरिए सेवा कर रही है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंतिम व्यक्ति के विकास का काम सुनिश्चित किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य में 5 जून से 21 जून तक 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह के प्रथम चरण में सशस्त्र बलों और सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित कर रही हैं। राष्ट्रपति भवन में हो रहे इस समारोह में अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करने जा रहा है। ये बैठक कल से 13 जून तक इंदौर में होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की ये बैठक भारत की अध्यक्षता में हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि इसमें मुख्य रूप से किसानों की आमदनी, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के

0: उपायों पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन आवासों में नल से जल, रसोई गैस और शौचालय की आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने इसे लाखों गरीब परिवारों के लिए बड़ा बदलाव बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में देश में समावेशी विकास को नई गति मिली है। इंडिया गठबंधन की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले बैठक में शामिल हुईं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आज शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत करीब 125 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वहीं कई क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। जयपुर के संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं जल्द बहाल होने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया की समय सीमा आज समाप्त हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 3 प्रत्याशियों ने 9 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। नाम वापसी की आखिरी तारीख 11 जून है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ सतीश पूनिया और डॉ अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशियों ने आज अपने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण के समक्ष दाखिल किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने उन पर भरोसा करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया।
2: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा देके युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते, एक बार विधायक के नाते, पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए नंबरों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की विंडो 2 से 7 जून तक पूरी तरह कार्यरत थी। इस दौरान 1,60,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 3,08,000 से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया। CBSE ने मीडिया पर इस पोर्टल के काम नहीं करने को लेकर चल रही कुछ खबरों पर भी स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों का भ्रम दूर करते हुए बताया कि जिन छात्रों के स्क्रीन पर रोल नंबर नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है, इसका कारण ये है कि उन्होंने इस प्रक्रिया के पहले चरण यानी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए आवेदन नहीं किया था। बोर्ड ने कहा कि नियम के मुताबिक केवल वही छात्र अगले चरण के लिए पात्र होते हैं जिन्होंने पहले चरण में अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई किया था। राज्य में सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाकर 43 दिन कर दी गई है। पहले ये 17 मई से 20 जून तक 35 दिनों की थी। शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव आलोक

0: जैन ने आज इस बारे में एक आदेश जारी किया। इसके अनुसार संस्था प्रधान की ओर से एक अवकाश के स्थान पर अब दो दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज के ही दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजी की रिपोर्ट।
1: 8 जून का दिन देश की सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। साल 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्रों के माध्यम से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए दुनिया के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
0: राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों में आज कमी देखने को मिली और मौसम का मिजाज मिला जुला रहा। एक ओर जहां श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं पुष्कर में करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा बीते 24 घंटों में अजमेर, बूंदी, कोटा, टोंक, झुंझुनू और भरतपुर में पानी बरसा। जैसलमेर में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 11 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार जताए हैं। इस दौरान पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में पारे में 2-3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आने की संभावना है। 11 जून से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आंधी बारिश की गतिविधियां एक बार फिर जोर पकड़ सकती हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में काउंटडाउन कार्यक्रम जारी हैं। इसके तहत लोगों में स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए रोजाना सामूहिक योग और प्राणायाम सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
2: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना, ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं, शरीर से और मन से मजबूत होते हैं, तो परिवार मजबूत होता है, उससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। चाहे हम पैदल चलें, चाहे हम सीढ़ियां चढ़ें, चाहे हम नियमित रूप से खाना खाएं, ऑयल कम करें अपने खाने के अंदर, ये सारी चीजें एक फिट इंडिया बनाता है, एक मजबूत भारत बनाता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की गई। 25 मई से शुरू हुआ ये अभियान 5 जून को पर्यावरण दिवस तक चलाया गया। इस दौरान जल संरचनाओं की साफ सफाई, जल संरक्षण के कार्य, मरम्मत और पुनरुद्धार संबंधी कामों के साथ ही श्रमदान और जागरूकता गतिविधियां रखी गईं। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने भी पौधरोपण कर पक्षियों के लिए परिंडे बांधे। उन्होंने जाखम और भंवर सेमला बांध का निरीक्षण कर जल संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर मीडिया राउंड टेबल आयोजित की गई। जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों ने परिंडे बांधे और पौधरोपण किया। जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से मीडिया एक्सपोजर विजिट का भी आयोजन रखा गया।

0: अभियान का समापन समारोह पूर्व मंत्री और निम्बाहेड़ा विधायक श्री चंद कृपलानी की उपस्थिति में रखा गया। माही बजाज सागर बांध से पीपलखूट अपर हाई लेवल बहुउद्देशीय कैनाल परियोजना का निर्माण कार्य इन दिनों अंतिम चरण में है। 1565 करोड़ रुपए की लागत की इस अनूठी परियोजना में बिना भूमि अधिग्रहित किए पाइपलाइन डाली गई है। इसके जरिए जमीन से 3 से 4 मीटर की गहराई पर पानी बहेगा और ऊपर किसान खेती करेंगे। परियोजना के पूरा होने से प्रतापगढ़ सहित उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। लक्ष्य हासिल होने से अगली रबी फसल के लिए 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। वहीं जल जीवन मिशन के लिए जाखम बांध तक पानी पहुंचने से प्रतापगढ़ शहर और उसके 554 गांवों के अलावा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के 1899 गांवों को पानी मिलेगा। जिले के करजू और रावतपुरा गांव में इन दिनों किसानों ने आधुनिक मल्चिंग तकनीक अपनाकर नकदी फसलों की खेती शुरू की है। इस तकनीक से टमाटर और मिर्च सहित अन्य नकदी फसलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों को गर्मी के मौसम में बोई जा रही फसलों से अच्छी आमदनी की उम्मीद है। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने बीते दिनों बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया। इस साल अब तक जिले में ये सातवीं बड़ी कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि इससे पहले भी एक अन्य तस्कर की करीब 3.25 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी हैं। पुलिस ने अभियान के तहत नौगावा के देवलदी गांव स्थित चारागाह से भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और जल संरक्षण तथा पौधरोपण कार्यों का निरीक्षण किया। इधर जिला स्तरीय बैंकिंग समीक्षा समिति की आयोजित हुई बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के उन्होंने निर्देश दिए। सांसद सीपी जोशी ने दिशा समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बार अधिक मास के चलते जिले भर में धार्मिक गतिविधियां चरम पर रहीं। मंदिरों और आश्रमों में अनुष्ठान हुए। अक्षय तृतीया पर धार्मिक स्नान और दान पुण्य किए गए। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ में आखातीज के अबुझ सावे पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। वहीं मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल अजहा का त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। जिले में बीते दिनों मौसम ने कई रंग दिखाए। कभी आंधी तो कभी बारिश की गतिविधियों ने जिलेवासियों को परेशान किया। वहीं बढ़ते तापमान और तपन ने भी लोगों को व्याकुल किए रखा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आई बारिश ने गर्मी का असर कम किया। इसके साथ ही प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज न गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना रा तहत हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया। प्रदेश हूँ राज्यसभा री 3 सीटा माथ चुनाव सारू पर्चा दाखिल करन रो काम पूरो भयो। 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। और आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा भया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागे 98% आबादी ताई पहुंच। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज ने गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो है। श्री मोदी कहो के इन दौरान देश कई बदलावा रो गवाह बनियो। प्रधानमंत्री कहो के जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत सरीखा हर जतन रो मकसद जनता सारू पूरा मानु जीवनु तय करनो है। श्री मोदी कहो के गरीब

0: तबकारी जनतारी जिंदगी बेहतर बनावण माए प्रौद्योगिकी की खास काम की नो है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो के वानी डबल इंजन सरकार प्रदेश में जनतारा भलारी योजनाओं के जरिए सेवा कर रही है। वे आज विधानसभा परिसर में राखी जी विधायक दल री मीटिंग में बोल रहा है। श्री शर्मा कहो के प्रदेश में आखिरी छोर ताई रा हर एक जनारो विकास तय करियो जा रियो है। ध्यान जोग है के राज्य में 5-21 जून ताई 12 साल विश्वास के विकास के और जन कल्याण के अभियान चलायो जा रियो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह रा पहला दौर में सशस्त्र बलों रा और सुरक्षा कर्मचारियों रो मान कर रही है। जबरदस्त हिम्मत और समर्पण रो दर्शाव करण वाला जवाना ने इन कार्यक्रम में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण नवाजा जा रहा है। जलसा में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई हस्तियां शामिल है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स रा सदस्य देशां रा कृषि मंत्रियां री मीटिंग काल मध्य प्रदेश रा इंदौर माय शुरू फैला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल माय खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे कहो के 13 जून ताई फेवन वाली मीटिंग री सदारत भारत करेला। श्री चौहान कहो के मीटिंग माय किसाना री आमदनी, काम धंधा, खेतीबाड़ी सारू कर्ज और बाजार ताई पहुंच बधावन राजतन रबारा माय चर्चा करी जावेला।
2: खाद्य सुरक्षा पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सकें।
0: देश में प्रधानमंत्री आवास योजना रा तहत हाल ताई 4 करोड़ 32 लाख मकान बनाई चिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आ जानकारी दीनी। वे बतायो के आम मकाना माय नल, पानी, रसोई गैस और शौचालय रा बुनियादी सुविधा मुहैया कराई चिया है। वे इनने गरीब परिवारा सारू मोटा बदलाव बतायो। केंद्रीय मंत्री कहो के लाडला 12 साल माए देश माए सगला रो विकास और तेजी उम्फियो है। विपक्षी पार्टियां रा इंडिया गठबंधन री आज नई दिल्ली माए मीटिंग भी। इन माए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस रा आला नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी रा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस री अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रा नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट री सुप्रिया सुले शामिल फिया। जयपुर विकास प्राधिकरण री ओरू आज जयपुर शहर माए गैर कानूनी कब्जा हटावन री मोटी कार्रवाई करी जी। नंदपुरी अंडरपास रेलवे लेन रे बराबर री सड़क ने 80 फीट चौड़ी करण सारू चलाई जिया। ई अभियान रा तहत 225 गैर कानूनी तौर करी जिया बनाई चुनाई रा काम हटाई जिया। ई दौरान एहतियातन 3,000 पुलिस वाला तैनात करी जिया, जदक कई हलका माए मोबाइल और इंटरनेट जुड़ी सेवाएं बंद रखी जी। जयपुर रा संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार का नियम जारी हुकम रे मुजब बेगोई आ हलका माए इंटरनेट पाछो चालन री संभावना है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव सारू प्रदेश 3 सीटा माथे चुनाव बाबत पर्चा दाखिल करण री मियाद आज पूरी फेगी। राज्य रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बतायो के प्रदेश 3 उम्मीदवार 9 पर्चा दाखिल कीना। भारतीय जनता पार्टी री ओरू डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर आज नाम पाना रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण सामी पेश कीना। ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और जनता रा और कई नुमाइंदा मौजूद।

0: सुधा। खबर नवीसां सागे बातचीत करता थका श्री पूनिया वा माथे भरोसो करण सारू भाजपा रा केंद्रीय नेतृत्व रो आभार जतायो।
1: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा दे के युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते, एक बार विधायक के नाते, पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
0: कांग्रेस पार्टी री ओरू नीरज डांगी पहले पर्चो दाखिल कर चुका है। नाम 11 जून तक पाछा लिया जा सके है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इस साल 12वीं कक्षा री परीक्षा सारू नंबरन रो सत्यापन करण और कॉपियां ओजू जंचावन सारू अर्जी देवन री विंडो 2-7 जून तक लगातार चालते रहवन रो दावो किन्नो है। बोर्ड रे मुजब इन दौरान 1,60,000 बत्ता विद्यार्थी 3,08,000 बत्ती कॉपियां सारू अर्जी दीनी। CBSE भ्रम दूर करता थका बतायो के रोल नंबर नॉट फाउंड री जानकारी रो कारण ई प्रक्रिया रा पहला दौर माए कॉपी री फोटोकॉपी लेवन री अर्जी नी देवनु हो। बोर्ड रे मुजब नियमा रे मुताबिक कॉपी री स्कैन कॉपी हासिल करण सारू अर्जी देवन वालाई अगला दौर सारू पात्र वह है। राज्य री सरकारी स्कूलां माए गर्मी री छुट्टियां 28 जून ताई रहवेला। शिक्षा विभाग रा शासन उप सचिव आलोक जैन री ओर जारी हुकम रे मुजब गर्मी री छुट्टियां 17 मई 20 जून ताई 35 दिन री करी जी ही, जो अब वधार 43 दिन री कर दी री जी है। हुकम रे मुजब संस्था प्रधान री ओर एक री बजाय अब 2 दिन री छुट्टी दी जा सकेला। आज आकाशवाणी रा गौरवशाली 90 साल पूरा फेंक्या। साल 1936 माई आज ही रा दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने ऑल इंडिया रेडियो नाम दियो चियो हो। पेश है समाचार कक्ष डॉक्टर सालेहा गाजी री रपट।
2: साल 1956 माए इनरो आकाशवाणी नाम दियो जियो। आज देशभर माए आकाशवाणी रा 551वां केंद्रा रे जरिए 23 भाषावा और 146 बोलियां माए कार्यक्रम प्रसारित करिया जावे है, जो देश री 98% आबादी ताई पूगे है। इस आगे ही आकाशवाणी रो विदेश सेवा विभाग दुनिया रा 100 देशा माए भारत री आवाज पुगारियो है। आकाशवाणी रो समाचार सेवा प्रभाग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागे रेडिया प्रसारण रा सब ऊंचा मानकारी पालना करता थका 2400 घंटा सगली भाषावा और बोलिया माए समाचार और समाचारों जुड़िया कार्यक्रम प्रसारित करे है।
0: अरब मौसम राज्य रो कई हल्का माए आंधी बारिश री हलचल आज थोड़ी कम रही। इन कारण श्रीगंगानगर माए पारो 44 डिग्री सेल्सियस ताई पूग गयो। जैसलमेर माए जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। दूजिकानी अजमेर कने पुष्कर माए करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। लाडला 24 घंटा माए अजमेर बूंदी कोटा टोंक झुंझुनू और भरतपुर माए में बरसियो। मौसम विभाग 11 जून ताई आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए कमी रा आसार जताया है। इन दौरान उगनी और उत्तराध उगनी हलका रे अलावा मौसम सुखो रेवन री संभावना है। रजरा आतुनी हलका माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार है। 21 जून न मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम चल रहा है। इन तेत जीवन रा स्वस्थ तरीका न बधावो देवन रा मकसद रोजिना योग और प्राणायाम रा सत्र रख्या जा रहा है। युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जनताओं आ कार्यक्रम माए भागीदारी करण री अरज कीनी है।
3: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना, ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं, शरीर से और मन से मजबूत होते हैं, तो परिवार मजबूत होता है, उससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है।
0: आखिर में खास समाचार एक कर फेरू सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लाडला 12 साल रा कामकाज न गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो। देश माए प्रधानमंत्री आवास योजना रा तेज हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया। प्रदेश हूँ राज्यसभा री 3 सीटा माथा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो भियो। 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। और आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा भिया। बहुजन हिताय बहुजन

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजने को हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

नई नई जानकारियां और नया नया लोक गीता सु भरियो कार्यक्रम चौपाल न सुनबाला मां का संदा करसाण बण भाया के ताई रामू भाई की अड़ी सु घणी घणी राम राम राम राम जी करसाण बण भायाओ राम राम। बिल्कुल मां का बण भाई सारा मजामो होगा और खेता की तैयारी में लागी रिया छे, छाटा चीट भी हो रिया छे, रात भी बरखा पड़ी जी आपने अड़ी और आप जो छे मौसम धीरा धीरा बदल रही छे, बरखा की अड़ी आप आता जा रहा छा, तो खेता की तैयारी भी आप पूरी पूरी किसान बन भाओ राका। और आज जो छे विश्व महासागर दिवस भी छे किसान बन भाओ, हर साल 8 जून के दिन पूरी दुनिया में यो मनायो जाओ छे। पूरी धरती के खाण महासागर को महत्व समझावा के लेके यो खास दिवस मनायो जाओ छे। विश्व महासागर दिवस समुद्र अर्जु जलिए जीवा की सुरक्षा को एक संकल्प छे। आदि सु ज्यादा ऑक्सीजन महासागर सु आवे छे कृष्ण मण भाईओ, और महासागर ने धरती को फेफड़ा भी खो जाओ छे। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जीवन जैसे कि रोजगार छे, भोजन छे, यह महासागर पे ही निर्भर छे। महासागर अपनी धरती का तापमान न और मौसम न नियंत्रण राखवा में सबसे बड़ी भूमिका निभावे छे। पण करसाण बण भाईओ, समुद्र में बढ़तो प्लास्टिक प्रदूषण, तापमान बढ़वो और जरूरत से ज्यादा जलीय जीवा को शिकार करवो अपना समुद्री जीवन ने तेजी से जो छे नुकसान पहुंचा रियो छे, जो बहुत ही सोच बाकी या बात छे। तो आपने ते अपना महासागर ने बचाणो छे और इनके साथ साथ करसाण बण भाईओ अपना स्वास्थ्य ने भी अपने ते बचाणो छे। देखो भाग दौड़ गया जिंदगी छे, सुबह सु शाम ताई आपण काम धंधा पर लागा छा और अब शरीर ने अपना तरह काम लंगा तो किसान बन भाई देखो शरीर भी फिर मजबूत होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल मस्त होनी चाहिए। जब बढ़िया काम हो छे तो हूँ के लिए का अपन काय करा, योग करा, प्राणायाम करा और स्वस्थ फेफड़ा और हृदय जो धमनी छा अपनी जो सहन शक्ति ने बढ़ावा के लेकर प्राणायाम ये घणो असरदार तरीको छे। प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन को जो प्रभाव ने सुधारे छे और फेफड़ा की कार्य क्षमता ने भी बढ़िया मजबूत करे छे। जैसे कि बात करा अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम की, तो यो प्राणायाम दिल और फेफड़ा के बीच खून का संचार ने बढ़िया करे छे और नर्वस सिस्टम ने शांत राखे छे। और भस्त्रिका प्राणायाम, यो प्राणायाम फेफड़ा ने सबसे ज्यादा मजबूती दे छे और यो प्राणायाम फेफड़ा का हर हिस्सा में भरपूर ऑक्सीजन पहुंचाव छे, जिसमे फेफड़ा की क्षमता तेजी से बढ़िया बढ़े छे, काम करे छे। कपाल भाती प्राणायाम, यो प्राणायाम धमनिया की जो रुकावट ने दूर

करे छे और पूरा शरीर में खून को प्रभाव ने सुधारवा में मददगार बने छे। पण करसाण बनबायो प्रणाम करा योग करा लेकिन की जानकारी आप ताई होनी चाहिए जी को सही तरीको करवा को आप ताई ध्यान होनी चाहिए। सुबह का टाइम पर करा ताजा हवा में करा और खाली पेट ने सुबह की टाइम में करा तो फायदा मंद हो छे। जबरदस्ती न करा जैसे कि आप सांस रुके छे 40-50 सेकंड आपने एक मिनट को पढ़ ले जा रहे हैं एकदम ही तो यू आपने लिख बहुत नुकसानदायक हो सके छे। तो इसमें धीरे धीरे अभ्यास करके आपने आपनों जो टर्म छे उन्हें आगे बढ़ा सका छा। और सबसे पहली तो जो योग गुरु छे जो प्राणायाम सिखाव छे या जो डॉक्टर साहब छे वहाँ की सलाह के अनुसार ही आपन जो छे प्राणायाम करा। जब जारी जो छे बढ़िया आपन जो प्राणायाम कर पाऊंगा और वहाँ को लाभ भी बढ़िया मिलोगे। करसान मन भाई चौपाल में और घनी सारी आप आगे बातचीत करेंगे और यहाँ सुना चाह अपने प्यारो सो लोकगीत।

0: करसान बन भयो। अब आपने यो सुनो शिवा उपाध्याय की आवाज में यो लोकगीत, और अब खेती किसानी की अब आपन चौपाल में बात करा चाह तो किसान बन भया हो। देखो बाग लगावा को अब जो छे टर्म आ गयो, छाटा चीट भी हो गया, घना किसान बन भया ना गड्ढा भी कर दिया, और इनके साथ साथ अब बाग तो लगा रहा जा, पण सरकार की अडीसू या उद्यान विभाग की अडीसू कहीं कहीं सुविधाएं आप ती मल रही है, तो इनका बारे में जानकारी देवा के लेके आज अपने बीच में पावना छे श्रीमती सोनल सिंगल, आप चौ कृषि अधिकारी उद्यान विभाग रेणीबाग कोटा में, और यहाँ से बातचीत कर रहा था अपना तेजराम भाई।
1: किसान भाइयों, खेती को लाभकारी बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और खेती को ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए बागवानी का बहुत बड़ा योगदान है। किस प्रकार से हम खेती को ज्यादा लाभकारी बना सकते हैं बागवानी करके, हमारे आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन से फलदार पेड़ पौधों की अधिक संभावना है, किस प्रकार से पौधों का रोपण करें, साथ में उद्यान विभाग द्वारा क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है नए बगीचों के लिए, आज विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्रीमती सोनल सिंगल जी। आप हैं कृषि अधिकारी उद्यान रेणीबाग कोटा में। श्रीमती सोनल सिंगल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम।
2: राम राम जी।
1: सोनल जी, देखिए कृषि आय बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बागवानी का इसमें क्या योगदान हो सकता है?
2: बागवानी, जैसे कि अपन देखते हैं कि अपना जो कृषि प्रधान देश है, यहाँ शुरू से ही पारंपरिक कृषि किसानों द्वारा की जा रही है। अगर कृषकों को अपनी आमदनी में बढ़ोतरी चाहिए तो उनको हाईटेक की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। इसमें उद्यान विभाग द्वारा उसकी बहुत बड़ी पहल की गई है, और हाईटेक हॉर्टिकल्चर में सबसे बड़ा जो अगर अपन कदम उठाएं तो नवीन बगीचों स्थापना से इसकी शुरुआत कर ही सकते हैं।
1: अब आपने कहा हाईटेक बागवानी करनी चाहिए, हाईटेक आप किसान भाई कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते, तो हाईटेक बागवानी आप किसे कहते हैं?
2: हाईटेक बागवानी मतलब पारंपरिक कृषि वाली प्रणाली, जैसे अपने गेहूं, सोयाबीन, मक्का, इनसे बढ़ के अपन बगीचों की स्थापना करें। बगीचों की स्थापना करके उसमें फ्लड इरिगेशन की जगह सूक्ष्म सिंचाई, जैसे अपना ड्रिप है, अपना माइक्रो स्प्रिंकलर है, उससे उनकी सिंचाई करें। इसके अलावा उसमें खाद जो है अपन अपनी खेत पे ही तैयार करें, वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना करें, ताकि अपन को महंगी खाद पे निर्भर ना होते हुए अपनी खेत में ही तैयार हुई खीवी खाद से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल सके, उसको हाईटेक कह रहे हैं
1: जी। आजकल संरक्षित खेती भी की जा रही है, तो क्या वो भी हाईटेक बागवानी में?
2: बिल्कुल बिल्कुल, अगर संरक्षित खेती की बात करें तो जो उच्च मूल्य वाली अपनी फसलें हैं और बेमौसम में अपन अधिक उपज लेके अपन ज्यादा उपज ले सकते हैं, तो वो भी संरक्षित खेती में पॉली हाउस हुआ, अपना ट्यूबलर संरचना हुई, प्लास्टिक मल्च हुई, प्लास्टिक टनल हुआ, आदि संरक्षित खेती में शामिल है।
1: सोनल जी, अब जैसे बहुत सारे किसान भाई तो आर्थिक रूप से संपन्न है, कुछ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत से किसान भाई के पास जमीन कम है, लघु सीमांत कृषक हैं, तो क्या ऐसे किसान भाइयों के लिए उद्यान विभाग की कोई योजनाएं चल रही है जिनके माध्यम से किसान भाई नए बगीचे स्थापित कर सकें?
2: उद्यान विभाग द्वारा जो अपने कृषक भाई हैं उनको नवीन बगीचे स्थापना पर सब्सिडी दी जा रही है। उसमें दो तरह के बगीचे जो हैं कृषक लगा सकते हैं, जिसमें अगर वो सामान्य अंतराल पे अगर बगीचे लगा रहे हैं और सघन अंतराल पे लगा रहे हैं, तो उनकी अलग अलग इकाई लागत है। जैसे कि अपन उदाहरण से समझे, जैसे आम, अमरूद, नींबू वर्गीय जितनी भी अपनी फसलें हैं, मौसमी है, संतरा है, किन्नू है, इसके अलावा अनार है या लीची है, ये सब अगर अपन सामान्य अंतराल पे लगा रहे हैं, सामान्य अंतराल मतलब जैसे 6x6 पे लगा रहे हैं, तो उसकी 1.25 लाख रुपए इकाई लागत मानी है। इस 1.25 लाख का 40% अनुदान कृषकों को दिया जा रहा है। अगर इन्हीं फसलों को अपन सघन अंतराल पे लगाते हैं, सघन अंतराल मतलब 2.5x2 पे, 3x3 पे, 4x4 पे, तो कृषकों को इकाई लागत 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर माना है, जिसका 40% जो अनुदान है कृषकों को 2 वर्ष में दे है, यानी प्रथम वर्ष में 60% और द्वितीय वर्ष में 40% देंगे उनकी जीवितता के आधार पे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अनुदान के चक्कर में कृषक भाई बगीचे तो लगा लेते हैं पर उनकी उपयुक्त तो देखरेख नहीं कर पाते, तो द्वितीय वर्ष में अगर 90% उनकी जीवितता है तो उस आधार पे उनको 40% अतिरिक्त अनुदान और दिया जाएगा।
1: अच्छा, तो इसमें क्या करना होगा किसान भाइयों को?
2: किसान भाइयों को एक एकल विंडो सरकार द्वारा बनाई गई है, राज किसान साथी पोर्टल, इस पे कृषकों को आवेदन करना होगा। अधिकतम 0.5 से लेके अधिकतम 2

0: स्तर तक के बगीचे के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर किसान पपीता, बेर, बेल, कटहल हुआ, अपना आंवला, करोंदा, अगर इनके बगीचे लगाना चाहते हैं, क्योंकि इनमें क्या बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती, मेड़ पे लगाना चाह रहे हैं किसान, तो 75,000 रूपए इकाई लागत का 40% किसानों को दे होगा। पहले ये जो अनुदान है वो 3 वर्ष में किसान को मिल रहा था, इसी वर्ष से सरकार ने इसको 2 वर्षों में ही दे दिया है और इकाई लागत में भी काफी वृद्धि करी है, जिससे सरकार चाह रही है कि कृषक जो है बगीचों की तरफ अपना रुख अपनाए।
1: अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कि वो आवेदन करें और उनको उसी आधार पर उनको अनुदान मिलेगा, पहले किसी जिले में कुछ फलदार पेड़ पौधों का चयन किया जाता था, अब क्या जो भी फल लगाना चाहे उस पर अनुदान मिलेगा?
0: सरकार द्वारा फसलों की चयन पे जो रोक थी वो हटा दी गई है, कृषक कोई से भी फल बगीचे लगा सकता है
1: जी।
0: कोई भी चयनित फसल की बाध्यता नहीं है।
1: अच्छा, अब रही बात पौधों की, क्योंकि आजकल पौधे कुछ बाहर से भी आ रहे हैं, कुछ स्थानीय नर्सरियों में उपलब्ध हैं, तो क्या उद्यान विभाग द्वारा पौधे भी उपलब्ध कराए जाते होंगे?
0: उद्यान विभाग द्वारा, जैसे अगर कोटा डिस्ट्रिक्ट की अपन बात करें तो हमारे खुद के ही कार्यालय में एक सरकारी नर्सरी है, इसके अलावा नांता रोड पे सीओई जो है, मतलब सेंटर एक्सीलेंस जो है सिट्रस का, वहाँ पे नींबू वर्गीय फसलों की उच्च क्वालिटी की जो है पौध मिल रही है। इसके अलावा एनएचबी से जितनी भी एक्रेडिटेड नर्सरियां हैं, कृषक कहीं से भी अपने ले सकता है सामग्री और रोपण कर सकता है। इसके अलावा मतलब जो कमल रोपण है, इसकी रोपण सामग्री है, इसके अलावा उर्वरक हुए और खड्डे खोदने की कीमत हुई, उसमें अपन जो उर्वरक डाल रहे हैं उसका, लेबर का चार्ज, सभी तरह से शामिल इसी में है
1: जी। जैसे आपने कहा कि प्रमाणित नर्सरियों से ही पौधे लेंगे तभी अनुदान मिलेगा, तो किसान भाई जैसे मान लीजिए कोटा वाले कोटा से ले सकते हैं, अगर बारा वाला कोटा से लेना चाहें, क्या उनको अनुदान मिलेगा?
0: बिल्कुल दे है, इसमें पूरे आप भारत में कहीं से भी अपनी सामग्री ला सकते हैं, सिर्फ वो एनएचबी एक्रेडिटेड नर्सरियां होनी चाहिए, इस पे कोई रोक नहीं है कि आप कहां से अपने फसल ला रहे हैं। अधिकतर जैसे संतरे की बात करें अपन, जो अपने रामगंज मंडी बेल्ट है वहां पे संतरे की तरह तरह की किस्में किसान लगा रहे हैं, तो वो अधिकतर नागपुर से वहां की जो है अपनी ला रहे हैं सामग्री और अच्छे फल यहाँ पे दे रहे हैं, तो वहां के भी हम यहाँ पे अनुदान दे सकते हैं।
1: अच्छा, किसान कहीं से भी ले सकते हैं लेकिन जो प्रमाणित नर्सरियां हैं उनसे लेते हैं तभी उनको अनुदान मिल सकता है,
0: तभी अनुदान दे सकते हैं, क्योंकि अपन जैसा देखते हैं कि जैसा बीज होता है उसका फल भी उसी तरह से आता है, तो सरकार चाहती है कि कृषक अच्छे से अच्छा बीज लगाए ताकि उसको अच्छे फल दे। अगर किसान किसी भी लोकल नर्सरी से अपनी सामग्री लेगा रोपण और उसके फल अच्छे नहीं आए तो किसान की लागत भी खराब होती है, इसके अलावा उसकी मेहनत भी खराब हो जाती है, तो किसान भाइयों को अच्छी से अच्छी रोपण सामग्री काम में लेनी चाहिए।
1: इसके अलावा और भी कुछ सुविधाएं किसान भाइयों को उद्यान विभाग से इस समय उपलब्ध कराई जा रही है?
0: नवीन बगीचा स्थापना में फलों के अतिरिक्त फूलों की खेती पे भी अनुदान दिया जा रहा है। फूल जैसे देसी गुलाब हुआ, गेंदा, गुलदावदी, गैलाडिया, इनकी फसलों पे अधिकतम 4 हेक्टेयर तक किसान जो है फूलों की खेती कर सकता है। इकाई लागत 50,000 रूपए मानते हुए प्रति हेक्टेयर को 40% अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसान को फाइल जो है ऑनलाइन करनी है और हर वर्ष प्रतिवर्ष किसानों को अनुदान दे सकते हैं अपन। इसके अलावा कृषकों को अगर नवीन बगीचों स्थापना की योजनाओं का लाभ लेना है तो उन्हें सूक्ष्म सिंचाई को अपनाना जरूरी होगा। सूक्ष्म सिंचाई से क्या होता है कि जब बगीचे अपन लगाते हैं तो उसमें इनलाइन ड्रिप बिछाई जाती है, जिससे जल का कुशलतम उपयोग होता है और पर ड्रॉप से जो बागवानी है या फसलों की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। अब किसान भाई जब बगीचे के लिए राजकिसान पे आवेदन करें उसी समय वो ड्रिप के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, तो ड्रिप पे सामान्य श्रेणी को 70% और अनुसूचित जाति, महिला और जनजातियों के लिए 75% का अनुदान जो है वो दे है, तो इसमें डबल यानी दोहरा लाभ कृषकों को मिल रहा है। जहाँ वो बगीचे पे अपनी सब्सिडी ले रहे हैं उसके अतिरिक्त उन्हें ड्रिप पे, ड्रिप की लागत पे भी 75% तक अनुदान मिल रहा है। ड्रिप की बाध्यता बगीचों में है ही सही, अगर कृषक ड्रिप की स्थापना नहीं करता है तो उनको बगीचों पे भी लाभ नहीं मिल पाएगा
1: जी। अब रही जैसे ड्रिप की बात, आपने कही कि ड्रिप लगा सकते हैं, सौर ऊर्जा के लिए भी क्या कुछ उद्यान विभाग से कुछ सुविधाएं?
0: बिल्कुल मिल रही है। अब जैसे अपन सोचते हैं कि भाई अपन को ड्रिप लगा रहे हैं तो लाइट का सोर्स भी अपन को चाहिए, तो इसके उसके लिए पीएम कुसुम कंपोनेंट बी के अंतर्गत 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP 4 तरह के पंप जो हैं सरकार किसानों को उपलब्ध करा रही है। इसमें जो पात्रता होगी वो

0: मिनिमम 2.5 बीघा जमीन कृषक के पास होनी चाहिए और विद्युत कनेक्शन नहीं हो कि सिर्फ डीजल इंजन पे वो निर्भर हो या फिर पड़ोसी से अपन लाइट की व्यवस्था कर रहा हो। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि कृषक को अपने अनुदान का इंतजार नहीं करना, क्योंकि और जो भी योजनाएं रहती है उसमें क्या होता है कि कृषक एक बार में अपना पूरा पैसा लगा देता है और फिर उसके बाद जो सब्सिडी या अनुदान है वर्ष के अंत तक उसके खाते में आता है। इस योजना का इतना सुंदर भाग ये है कि कृषक को सिर्फ अपना हिस्सा राशि यानी 60% छूट के बाद जो 40% हिस्सा राशि बच रही है कृषक को वो जमा करानी है और एक माह के अंदर उसके खेत पे सोलर पंप की स्थापना हो रही है। इसके अतिरिक्त अगर SC ST का कोई फार्मर है तो उनको अतिरिक्त 60% के अतिरिक्त 45,000 का लाभ और मिल रहा है। जैसे अपन उदाहरण ले कि 3 HP का पंप अगर अपन अपने खेत में लगा रहे हैं तो सामान्य श्रेणी को जहाँ 96,000 रूपए जमा करने वहाँ SC ST के कृषक को सिर्फ 51,000 रूपए जमा करने से ही सोलर पंप का लाभ मिल जाएगा। और जो जैसे बगीचों की प्रकृति होती है कि उसको मतलब लाइफ सेविंग इरिगेशन, जैसे उसको समय समय पे इरिगेशन की जरूरत पड़ती है तो अपन को बिजली पे निर्भर नहीं रहते हुए सौर ऊर्जा से अपन उनकी सिंचाई भी कर सकते हैं।
1: अब वो रही जैसे मान लीजिए बगीचे लगा लिया, बगीचे से कुछ समय बाद फल भी आएंगे, फलों के भंडारण के लिए या उनकी पैकिंग करने के लिए उन पे भी कुछ सहायता उपलब्ध करा?
0: बिल्कुल, सरकार द्वारा समन्वित पोषक प्रबंधन IPM के अंतर्गत पैक हाउस और इंटीग्रेटेड पैक हाउस, दो तरह के पैक हाउस हमारे पास बन रहे हैं। जो सिंपल वाला पैक हाउस है जो 20x4 मीटर का बनेगा उसको 25 लाख रुपए इकाई लागत मानते हुए उसका 50%, और जो फार्म गेट पैक हाउस है जो फुली मतलब अपन कह सकते हैं ऑटोमेटिक है, जिसमें कन्वेयर बेल्ट है, जिसमें ऑटोमेटिक वॉशिंग होती है, उसके बाद कंटेनर में भर के पैकिंग वगैरह सुविधा हो जाती है, उसकी जो इकाई लागत है वो 1,60,00,000 रुपए मानते हुए उसका 35% अनुदान कृषकों को दिया जा रहा है। तो कोई किसान जो इसे बहुत अच्छे स्तर पे अगर बगीचे लगा रहा है तो वो पैक हाउस की सुविधा भी ले सकता है।
1: श्रीमती सोनल सिंगल जी, कोटा में या कोटा के आसपास कोई ऐसे जो संयंत्र लगाया हुआ है जहां पर किसान भाई देख सकते हैं जाके?
0: ये एक तो अपने यहाँ पे जैसे अपन जैसे चाहते हैं कि फसलों को अपन सुखा के, जैसे कुछ फलों को सुखा के उनके पैकिंग बंद करके भी करते हैं, तो अपने यहाँ गंदी फली में ही एक कृषक है अपने कपिल जैन, उन्होंने सौर ऊर्जा के सुखाने का यंत्र लगा रखा है ना। उसमें वो क्या करते हैं कि फसलों को सुखाते हैं, जैसे उन्होंने गुलाब की खेती कर रखी है 400 बीघा में कृषकों को मिलाकर, तो वो उन पत्तियों को सुखा के उनकी गुलकंद बनाते हैं, और अजमेर जो पुष्कर कहा जाता है गुलकंद बहुत ज्यादा बन रहा है, तो वो वहां से करके और अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। इसी तरह अपना जो रामगंज मंडी एरिया है वहां पे कई कोल्ड स्टोरेज हमने बनाए हैं उद्यान विभाग के अंतर्गत, तो ये भी इसमें समन्वित पोषक प्रबंधन में ही आता है कि अपन अपने फसलों का अच्छी भाव मिले, उचित भाव मिले, जब तक उनको अपन कोल्ड स्टोरेज में जमा कर सकते हैं और अच्छे भाव मिलने पे उनको बेच भी सकते हैं।
1: अंत में आपकी हमारी जो बातचीत सुन रहे हैं श्रीमती सोनल सिंगल जी, उन किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे नए बगीचों के बारे में या उद्यान विभाग के बारे में?
0: कृषकों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कृषक चाहते हैं कि वो नवीन बगीचे स्थापना करें तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है, क्योंकि जुलाई से अपने बगीचे जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, तो उनकी जो तैयारी है आरंभ की तैयारी है, जैसे गड्ढे खोदने की तैयारी है, तो 1x1 यानी 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा आप खोदें, ऊपर की जो भूमि होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, उस मिट्टी को अलग रख लें, फिर उसमें अपन 25 किलो गोबर की खाद हुई, वर्मी कंपोस्ट हुआ और उर्वरक मिलाकर उन गड्ढों को उस मिट्टी सहित वापस भर दें और खपच्ची लगा दें, ताकि अपन उसका निर्धारण कर सकें कि अपना जो लेआउट है वो कहां कहां पर है, और मिट्टी की तैयारी कर लें, भुरभुरा करें, गहरी जुताई करें, ताकि उसमें जो भी कीट वगैरह हैं अपनी गर्मी में वो मिट्टी जो है पूरी तरह से तैयार हो जाए। और इस बार किसानों को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई 1 हेक्टेयर की यानी 6 बीघा में भी खेती कर रहा है तो वो अपने 2 बीघा में 3 बीघा में बगीचों को स्थान जरूर दे, ताकि वो अपनी अतिरिक्त आमदनी करके अपने परिवार का जो है पालन पोषण अच्छे से कर पाए।
1: श्रीमती सोनल सिंगल जी, आप स्टूडियो में आए और उद्यान विभाग से किसानों को नए बाग लगाने के लिए दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया, किसान भाई सुनकर जरूर लाभान्वित होंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम।
2: किसान मन भाई देखो कतरी अच्छी अच्छी बातें बताई जा बारू सोनल जी ने, और ये बात आपन ते ध्यान में रखनी चाहे जब जा रहा अपनी सुविधाओं को फायदो उठा सका चा, और एक साथ साथ बाग लगावा के फली आपन ते कहीं तैयारी करनी चाहे तो वो सब आबारी आपन ते तैयारी में लागनो चाहे। किसान मन भाई चौपाल में और भी आपन नरी सारी बात करेंगा ई छोटा सा अंतराल के पाछे।
3: बदलो बदलो।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: करसान बन भयो, एक बार फिर आप संधा कोई चौपाल में स्वागत है। और बात यह अच्छा है कि अब अपन बीज बुजोड़ा ने संभाल रहा चाह, क्योंकि खेत है कि अपन तैयारी भी कर रहा चाह।

धंधा कोई चौपाल में स्वागत है। और बात यह है कि अब अपन बीज बजोड़ा ने संभाल रहा चा, क्योंकि खेत है कि अपन तैयारी भी कर रहा चा। और ये मान लो खेती को आधार तो बीज ही है, और बीज अगर डंग को खोना तो फिर फसल भी डंग की न हो, और फसल डंग की न हो तो फिर आमदनी भी डंग की न हो। तो करसान बन भाई बुआई सु पली बीजा न बीमारियाँ सू कीड़ा सू और पपून सू बचावा के खाण अपन ताई बीज उपचार जरूर करनी चाहिए। और बीज उपचार करती टाइम न आपने ताई हमेशा जो छे छोटी छोटी बातें छे वहाँ को आपने ताई ध्यान रखना छे। पहली बात यह छे कि FIR, हाँ सबसे पहले आपने ई फार्मूला को ध्यान रखा भाई, सबसे पहले यह दवाई फिर उनके बाद यह दवाई फिर उनके बाद यह दवाई, जैसे कि कवकनाशी सबसे पहले बीज ने फफूंद जनित रोगों से बचावा के लेकर कवक नाशी सू उपचारित करा, जैसे कि बाविस्टीन छे थायरम छे ट्राइकोडर्मा छे यहाँ सू आप उपचारित कर सका था। और कीटनाशी सू बचावा के लिए के बीज ने जैसे जमीन में कीड़ा छे दीमक छे यहाँ सू बचावा के लिए के कीटनाशी दवा को आप प्रयोग करा उसमें उपचारित करा, जैसे कि एमेडा क्लोरोप्रिट छे या फिर क्लोरोपायरीफोस दवा छे यहाँ सू आप बीज उपचार कर सका था। करसान मन भाई राइजोबियम या जैविक टीको भी आप लगा सका था सबसू वाकरी में, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग और यह PSB जैसे कि जैविक कल्चर सू उपचारित आप करा, और मात्रा को आप पूरा ध्यान रखा, जैसे कि फफूंदनाशक के लेकर कार्बेंडेजिम 2 ग्राम मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर सू आप बीज में मलावा। और कीटनाशक की अगर आप बात करा तो उनके लेकर इमिडाक्लोरोपिड 17 WS की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज का हिसाब से आप काम लेनी चाहिए। और इनके साथ किसान मन भाई कुछ बातों को आप ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि बीज ने उपचारित करवा के बाद उनके ताई आप सीधो तावड़ा में न सुखावा, छाया में सुखावा, बोरी को ऊपर सुखावा या फिर तरपाल पर छायादार स्थान में सुखावा। और हाथा की सुरक्षा भी घनी जरूरी है, हाँ अपन हाथा में दस्ताना फरा, इनके साथ साथ मुंडा पर भी कपड़ो बांधा। देखो दुआए छे मुंडा में आ जाओ छे, गर्मी का दन छे चढ़ जाओ छे तो फिर बेहोशी छा जाओ छे, और अपने नरी सारे चमड़ी के भी लाग जाओ तो कुचर चाल बा लाग जाओ छे, तो नरी सारी बात हो जाओ छे। तो सावधानी हटीर दुर्घटना घटी ई बात को आप ध्यान रखना छो कि सावधानी सबसे पहली छे। तो करसान बन भाई ये बात छे जहाँ को आप ध्यान रखना छो बीज उपचार में, और बीज उपचार आप जरूर करना छे। और बीज उन्नत किस्म को जहाँ तक हो सके उन्नत किस्म को बीज ही आप काम में ला। और करसान बन भाई कोटा मंडी से प्राप्त बाजार भाव भी अपने पास आ चुका है। तो आज का जो भाव है गेहूं की अगर आप बात करा तो गेहूं बक्या है 2331 रुपया सु 2633 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से, और सरसों बकी है 7100 रुपया सुलेर 7999 रुपया प्रति क्विंटल। सोयाबीन 6200 रुपया सुलेर 6825 रुपया, और धान बक्यो छे 3714 रुपया सुलेर 4476 रुपया। धनिया की बात करा तो 10300 रुपया सुलेर 12750 रुपया तई धनियो बक्यो छे, और उड़द 4500 रुपया सुलेर 7952 रुपया। और जो की बात करा तो 2121 रुपया सुलेर 2301 रुपया, और मूंग बक्या छे 7390 रुपया सुलेर 8677 रुपया। मक्का को एक ही भाव छे 1650 रुपया, और चना बक्या छे 4800 रुपया सुलेर 5602 रुपया, और लसन बक्यो छे 6350 रुपया सुलेर 14625 रुपया। तो भाई लसन ने तो देखो करसान मन भाव रिकॉर्ड तोड़ मिलियो छे और बहुत जोरदार भाव में जा रियो छे। तो बढ़िया आपनी जो भी फसल छे जो भी सब्जियां छे तो वहाँ की बढ़िया आपन ग्रेडिंग करा, उनके बाद ही धान मंडी में जावा या फिर सब्जी मंडी में जावा, ताकि आप बढ़िया बाजार भाव
मला और किसान मन भयो देखो बात करता करता।

चौपाल को भगत भी अपूरो हो रहे छे, तो आज तो आपका साथी राम भाई, तो आज तो आपका साथी रामू भाई ताई दुआ गया, फिर मिलंगा नई नई बातों के साथ, नई नई जानकारी के साथ। चला जा, राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक और पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही आप हमें न्यूज़ ऑन AIR की ऑफिशियल ऐप पर भी सुन रहे हैं।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है माटी के सुरों से सजा कार्यक्रम लोक संगीत।

अभी श्रोता सुन रहे थे माटी के सुरों से सजा कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए आपको एक कार्यक्रम संबंधी सूचना देते हैं। आज रात 9 बजे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में हमारे केंद्र से एक परिचर्चा का प्रसारण किया जाएगा, जिसका विषय है भारतीय संगीत के विकास, संवर्धन और प्रचार प्रसार में आकाशवाणी का योगदान। इसमें प्रतिभागी होंगे पंडित

0: महेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर सुधा अग्रवाल और डॉक्टर रोशन भारती। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा, आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद, जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से अब से थोड़ी देर में प्रसारित होगा।
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप, आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
3: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
4: नमस्कार, थैंक यू।
3: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूं।
5: नमस्कार, यहां आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो इस सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूं, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं, और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं।

0: देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी, यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
1: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना, और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहाँ आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार, या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है, या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के। तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है, जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ, आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया है आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है, और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी, अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी, आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर TV चैनल्स, विजुअल माध्यम जो हैं उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स हैं वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना है, आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे? क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है। यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है, इसलिए ये

0: आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ टीआरपी की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी टीआरपी की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है, या पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये पीटीआई के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ाया भी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूं जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे, तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा। मनोरंजन का साथ, महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार, जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकी नंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
2: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पामेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने एफएम रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए, लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपके आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया, इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का। और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंडोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश, गोवा सीएम डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
2: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म करेंगे। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ।

0: प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजे ने कहा सर हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा सीएम डेड, उसका फॉलो अप क्या है। तब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
1: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था, उस समय भी ऐसा होता था। पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल। इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लग रहा है शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको आज सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स, रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं, उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं, और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में जो किया, अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो।
2: देखिए 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा, और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
1: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है,
2: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहां महात्मा गांधी आए थे
1: जी।
2: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा के बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खास तौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थीं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गईं, और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा, तीन तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर,

0: कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो, या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो। जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है, और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरि प्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक, कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न कटोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो, या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ, नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब भारत चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे, एक तरह से हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवा अवस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे कि इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं?
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन। उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करेंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करेंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं, और इन कार्यक्रमों को हर छात्र, युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक

0: होता है, तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो, कवियों को,
1: पंत जी हो, सबने, महादेव वर्मा, सबने,
0: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद। और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे,
1: हाँ।
0: ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे। और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल

0: इतना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे,
1: हाँ।
0: ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे, और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था, और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है, तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सवैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ, और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया, तो वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा, मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से, अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गए लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मैट्रिक रिकॉर्ड हो जाता था वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था, लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से भी बात करते थे, लोगों से भी बात करते हैं, कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए वो भी इसके अंदर चल रहे हैं, तो टंडन साहब एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
2: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहूंगा,
1: कीजिए,
2: क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है, पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया, विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे, और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर, हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे, और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करेस्पोंडेंट के साथ काम किया देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना तो यहाँ से एक स्पेशल वार कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है, आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है, और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे। आज वो

0: हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है। चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा। उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है। पहले जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था। हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी। आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल से मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है, पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: तो इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
3: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर परिवारी बारियों को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंजन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में?
1: जी टंजन सर,
0: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर ना और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी है ही है। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं।

0: और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है। सरकार के पक्ष का भी नहीं है, और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है, मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है, उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए, वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं, या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
1: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, रंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है, और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही है, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा।
2: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
3: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम, मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हूँ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
2: इसीलिए रेडियो वाला आपका नाम है।
3: सर, ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं, आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
1: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का, वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था, उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
2: जी आप पूछिए सवाल।
4: जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
4: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन, तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है, वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाएं, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
2: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
1: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर,
2: सखी संगीत चल रहा है, महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो व्यंग के कार्यक्रम उस पर जोर देते थे कि आप जो अचार बनाना सिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कई पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कह रहे, वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन।

0: साहब कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
1: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही। और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ। इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
0: जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासतौर समाचारों के प्रति।
1: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और जितने लोग भी कार से सफर करते
0: हैं, सुबह 8 बजे शुरुआत होती है वो
1: इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का। तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं। तो ये जो सुविधा आई है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं।
0: बिल्कुल।
2: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर यहाँ, मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
0: अच्छा।
2: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे। सरदार जी होते थे एक, लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया। मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है। आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
0: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। और आप भी आइए।
3: मैम, मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
4: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और PhD रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स थे उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है, विशेष रूप से आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेशन करना है, रिसर्च करनी है,
0: बड़े बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
4: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
0: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी का अभी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी है अपने मेरे कवि बनने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगो युगो तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
5: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
6: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका, प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉ. वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियामन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक, प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इजराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से

टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक कि लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में

0: प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
3: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
4: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही आप हमें न्यूज ऑन एआईआर के ऑफिशियल ऐप पर भी सुन रहे हैं।

0: लीजिए श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में हमारे केंद्र से प्रस्तुत है एक परिचर्चा, भारतीय संगीत के विकास, संवर्धन और प्रचार प्रसार में आकाशवाणी का योगदान। इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं वरिष्ठ शास्त्रीय संगीत मर्मज्ञ एवं गुरु पंडित महेश चंद्र शर्मा, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा से सेवानिवृत्त प्राचार्य और वरिष्ठ संगीत शिक्षिका डॉक्टर सुधा अग्रवाल, और आकाशवाणी के टॉप ग्रेड गजल गायक एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा के प्राचार्य डॉक्टर रोशन भारती। चर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी कोटा के वरिष्ठ उद्घोषक एवं कवि राम नारायण मीणा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज 8 जून 2026 का दिन है और 8 जून 1936 को, यानी कि आज से लगभग 90 वर्ष पहले, जिस माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं, इस रेडियो प्रसारण की भारत में शुरुआत हुई होगी, तो वो किस तरह का एक रोमांच रहा होगा श्रोताओं के बीच में। कितने लोगों के पास में ये यंत्र, जो आज एक सांस्कृतिक यंत्र के रूप में हमारे देश में सम्मानित है, रेडियो प्रसारण, उसका किस तरह का इतिहास रहा होगा, ये हमने आपको पिछली परिचर्चा में सुनाया। लेकिन आज की इस परिचर्चा में जो 90 सालों का ये संदर्भ है आकाशवाणी का, उसको लेकर एक ऐसी महान कला विधा के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बिना आकाशवाणी का प्रसारण पूरा नहीं कहा जा सकता, या फिर यूं कहें कि अगर आकाशवाणी के साथ संगीत को नहीं जोड़ा जाए तो फिर बात बनती नहीं है। क्योंकि मुझे तो अच्छी तरह से याद आता है कि जब मैं रेडियो ट्यून करता था बचपन में, तो मैं वहीं रोकता था जहां गाना आ रहा होता था। तो संगीत के साथ में रेडियो का बहुत गहरा नाता है और बहुत दिल का नाता है, और भारतीय संगीत जिसकी विभिन्न विधाएं हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली, दो शैलियां हमारे यहाँ प्रचलित हैं भारतीय संगीत की, उसका जो विकास है, उसका जो संवर्धन है और उसका जो प्रचार प्रसार है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है वो निश्चित रूप से आकाशवाणी की रही है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे कोटा शहर के बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं और संगीत के शिक्षण से जुड़े हुए हैं, उनमें सबसे वरिष्ठ आदरणीय पंडित महेश चंद जी शर्मा साहब संगीत के शिक्षक रहे हैं और गुरु जी हैं, अभी भी संगीत की तालीम बच्चों को दे रहे हैं। तो आदरणीय गुरु जी का इस परिचर्चा में बहुत स्वागत है। प्रणाम सर, गुरु जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: जी, और आपको मैं बता दूं कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का कला पुरोधा सम्मान से आप सम्मानित हैं और भी बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले हुए हैं। और इनके साथ ही आज की हमारी परिचर्चा में डॉक्टर सुधा अग्रवाल जी हैं, वे भी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के कला पुरोधा सम्मान से सम्मानित हैं और राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय से वो प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत मैम आपका भी कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: धन्यवाद, आपने बुलाया हमें, ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है और गर्व की बात है।
1: वाह। और अब मैं जिनका परिचय आपसे करा रहा हूँ वे हैं डॉक्टर रोशन भारती साहब, जो टॉप ग्रेड आकाशवाणी के टॉप ग्रेड सुगम संगीत के कलाकार हैं।
3: आपको राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है
1: और उन्हें 13 बार अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता में 13 बार वे प्रथम रहे हैं और सिडनी में हिंदी गौरव रत्न से वो सम्मानित हैं और कई

0: के उन्हें अन्य पुरस्कार भी मिले हुए हैं। अभी वर्तमान में वो राजकीय कला महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार।
1: बहुत बहुत मेहरबानी। ये जब भी रेडियो की बात आती है तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर लौट करके आया हूँ, और मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस मौके पर आपने याद किया। थैंक यू।
0: तो ये इस तरह से मैं रामनारायण, आपका रेडियो साथी, मैं इन सब के चरणों में बैठकर और संगीत का आनंद लेता रहता हूँ। और कहते हैं ना कि वो कुछ जो मेहंदी बांटने वाले होते हैं ना, उनके हाथों पे भी कुछ रंग लग जाता है, तो हम मेहंदी
1: आप पे तो पूरा लगा हुआ है, मुझे पर्सनली मालूम है।
0: तो मैं मेहंदी बांटने का काम करता हूँ, तो कभी कभी कुछ रंग मेरे हाथों में भी लग जाए माता सरस्वती की कृपा से। तो आइए इस परिचर्चा में आगे बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर सुधा जी से सबसे पहले मैं आरंभ करना चाहता हूं कि आज मैम जो परिदृश्य हम संगीत का देखते हैं हमारे देश में, चाहे वो गांव हो, चाहे छोटी ढाणी हो, चाहे बड़ा शहर हो, महानगर हो, वहां शास्त्रीय संगीत की सभी विधाओं के श्रोता हमें मिलते हैं। हमारा देश पूरा सुरीला है, तो इसमें आकाशवाणी का किस तरह से आप योगदान देखती हैं?
2: आकाशवाणी का योगदान तो अकथनीय है, शब्दों में उसको बांधना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबसे अधिक जो भाग है संगीत को प्रचलित करने का वो आकाशवाणी का ही है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। मुझे तो अपने बचपन की याद है कि जब मेरे पास संगीत विषय में थी मैं, तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि रेडियो हो, रेडियो। बाय द वे मेरे यहाँ घर रेडियो नहीं था, और जब मुझे इंटरमीडिएट में मेरठ में फर्स्ट डिवीजन मिली, तो उस जमाने का 60 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप मिला, और उस स्कॉलरशिप से सबसे पहले मैंने रेडियो खरीदा। ये शायद 1959 की बात है। और उसके बाद इतनी उत्सुकता से हम बैठ करके रेडियो सुनते थे, रेडियो में क्या नहीं है, सुगम संगीत है, लोक संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, रेडियो संगीत सम्मेलन सुन रहे हैं, समस्त कलाकारों को सुन रहे हैं, और उस समय बड़ी बिना का गीतमाला बड़ी प्रसिद्ध थी, उन सबकी इतनी हमको प्रतीक्षा रहती थी। और बाय द वे मेरी एक फ्रेंड जो आपके रेडियो में ही डायरेक्टर होके रिटायर हुई हैं, प्रमिला राव
0: जी,
2: हम उस जमाने में ना तो टेलीफोन होते थे ना और कोई सुविधा, पत्र द्वारा हम पत्र मित्र बने, और रेडियो संगीत सम्मेलन में या जो भी प्रोग्राम होते थे उन प्रोग्राम्स का क्रिटिसिज्म हम पत्र द्वारा किया करते थे।
0: जी जी जी जी।
2: तो ये हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रहा कि हम संगीत को सुनना, उसको क्रिटिसिज्म करना और उसकी व्याख्या करना, ये सारा हमने रेडियो से सीखा।
0: वाह वाह वाह वाह।
2: अब लोक संगीत देखें तो आप, सुगम संगीत देखें तो, फिल्मों का संगीत देखें तो, क्लासिकल म्यूजिक देखें तो, इन सारी विधाओं को रेडियो ने इतनी खूबसूरती से संभाला और इतना लोकप्रिय बना दिया कि उसमें और भाषण या दूसरे जो भी विषय आते थे उनको हमें सुनने का कोई शौक नहीं था। संगीत जहां कानों में पड़ा, संगीत तो एक शॉर्टकट है ईश्वर की प्राप्ति का, चिंतन का शॉर्टेस्ट रूट है
0: जी।
2: हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं जब हम गाते हैं या सुनते हैं, तो वो आकाशवाणी ने उसको इतनी इम्पोर्टेंस दे करके हम लोगों के जीवन में लाया, तो उसको तो शब्दों में बांटना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं समझती, उसकी व्याख्या करना भी
0: मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर रोशन भारती साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले ये जो संगीत था वो राजा रजवाड़ों के दरबार में और बादशाहों के वहां हुआ करता था, और आम लोगों की पहुंच में संगीत नहीं था
1: जी।
0: रेडियो ने वहां से निकालकर जो असंभव था आम आदमी के लिए, अच्छे कलाकारों को सुनना, चाहे वो पंडित भीमसेन जोशी हो, चाहे पंडित रविशंकर हो, इनको सुनना, और बड़े महान गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, इन सबको सुनना एक आम आदमी के बस में नहीं था, जहां तक मैं सोचता हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में?
1: देखिये, मैं अपने बुजुर्गों की बात से शुरू करूंगा, जिसमें मैं अपनी भी याददाश्त जो मेरे साथ हुआ
0: जी,
1: जो मैंने जिया रेडियो के साथ, उसको भी शामिल करूंगा
0: जी।
1: मैं बता दूं कि हम लोग सैनीय हैं, और मियां तानसेन जी की औलादों में
0: वाह
1: और भी लोग हैं, उसी

0: परंपरा से, मैं 17वीं पीढ़ी हूं। संगीत शुरू हुआ है दृश्य श्रव्य से
1: जी,
0: और वहां से फिर मैं आऊंगा अदृश्य पे,
1: वाह,
0: जो रेडियो ने किया। समझ रहे हैं आप बात?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो इसकी मैं समझता हूँ एक उल्लास उमंग से इसकी शुरुआत हुई है, और जाहिर सी बात है कि खेतों से इसकी शुरुआत रही होगी, फिर ये मंदिरों में आया है, जैसा मैडम सुधा जी ने कहा
1: जी,
0: कि उपासना की एक बेमिसाल तरकीब जो है वो म्यूजिक है, संगीत है, मंदिरों से फिर ये राजाओं के यहाँ नवाबों के आ गया, और आपने कहा कि बिल्कुल ही आम आवाम से दूरी थी इसकी, वहां से ये दृश्य और श्रव्य चल रहा है अभी
1: जी जी।
0: जब पहली बार ये अदृश्य रूप में आया तो उसका नाम है रेडियो,
1: वाह,
0: और उसमें एक रोमांच था क्योंकि दिख नहीं रहा, सिर्फ सुन रहा है, तो सिर्फ सुन रहा है तो उसमें हम ज्यादा कंसंट्रेट कर पाए, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि जब विजन भी साथ में जुड़ जाता है तो भटकता है आदमी, लेकिन सिर्फ अगर हियरिंग है, सिर्फ सुन रहे हैं तो आप एकाग्र हो जाते हैं, एकाग्र चित्त हो जाते हैं, फिर वहां जैसे मैडम ने कहा कि हम एज ए क्रिटिक हमने काम किया फलाने राग में, इस सुर को ऐसे बरतना है, आंदोलन नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा राग, या किस सुर की तफसील करके, किस को सुर को लांघ करके, जिसे हम लंघन कहते हैं, अल्पत्व है बहुत्व है, लंघन अलंघन है, वादी संवादी है, इससे राग की पहचान होती है। तो रेडियो ने इस लिहाज से एक बेमिसाल काम किया है
1: जी जी,
0: जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। फिर उसके बाद जब रेडियो में आने लगी ये चीजें, राग रागदारी, और फिर राग के साथ रंग भी था, हम सिर्फ राग की बात करके पल्ला झाड़ लेते हैं, रंग का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि आप किसी पेंटर को अगर रंग दे देते हैं, दो रंग दिए मान लीजिए, तो उसको कैसे और रचाव करेगा, कैसे उसकी बनावट होगी, वही तो राग है, उसके कुछ उसूल हैं, उसके कुछ कायदे हैं। तो इन चीजों पे जो एकाग्रचित होकर के श्रोता ने, यहाँ सिर्फ श्रोता है, श्रव्य है, दृश्य नहीं, तो एक बेमिसाल काम हुआ कलाकारों के लिहाज से, आप लिहाज से भी और सुनकार के हिसाब से, फनकार का और सुनकार का दोनों का इसमें फायदा हुआ है रेडियो से, क्योंकि फनकार पाबंद हो गया कि यार वो सुन रहा होगा इसको, मैं तो शास्त्र नियम में रह करके ही इस पे बरतू इस फलाने राग को, तो रेडियो तो बेमिसाल काम है साहब, मैं समझता हूँ। और इसमें सबसे पहली इब्तिदा मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे बड़े पापा जो हैं उस्ताद जमालुद्दीन भारतीय साहब का नाम लूंगा
1: जी,
0: बल्कि सुधा जी बैठी हैं, वो भी पहले उनसे सीखती थी, तो वो पंडित रविशंकर जी के शागिर्द थे और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में मुलाजिम थे। सबसे पहला काम जो ऑल इंडिया रेडियो में, क्लासिकल मौसीकी की बात कर रहा हूँ, उसमें पंडित रविशंकर जी का अभूतपूर्व योगदान है। सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर पंडित रविशंकर जी,
1: क्या बात है, वाह वाह।
0: और जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई, तो आपको ये भी बताता चलूं कि दूरदर्शन पे जब वो लोगो आता था, पीछे जो शहनाई बन रही है, बज रही है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो ये सफर है,
1: ये
0: श्रव्य दृश्य से अदृश्य का सफर है, जो कि बड़ा एक रोमांचकारी है,
1: मतलब कितनी एक
0: बड़ी परिष्कृत, बहुत परिष्कृत हुआ है म्यूजिक, रेडियो की वजह से बहुत परिष्कृत हुआ है, क्योंकि वहां दिख नहीं रहा, सिर्फ सुन रहा है, कंसंट्रेट आदमी एकाग्रचित, तो रेडियो बेमिसाल है साहब।
1: तो ये एक रोचक जानकारी आपने बताई, और इसकी तिथि भी मेरे सामने है कि 20 जुलाई 1952 को आकाशवाणी दिल्ली से शास्त्रीय संगीत का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित हुआ, पहला कार्यक्रम प्रसारित
0: जी,
1: हुआ
0: जी,
1: और उसमें
0: पंडित जी रहे होंगे,
1: हाँ, पंडित रविशंकर जी का सितार वादन,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अब मैं आदरणीय गुरुजी पंडित महेश चंद्र शर्मा जी से मैं जानना चाहूंगा सर, कि ये जो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन आरंभ हुए अलग अलग शहरों में जाकर, और आकाशवाणी संगीत सम्मेलन आकाशवाणी प्रतिवर्ष करते हैं, अभी भी करते हैं, फिर उनका प्रसारण अपने प्रसारणों में रात्रि के समय किया जाता है, तो आम जनता में इस शास्त्रीय संगीत को ले जाना ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शास्त्रीय संगीत बहुत कम लोगों के लिए होता है, उससे सेलेक्टेड लोग हैं।
2: बिल्कुल
1: जी,
2: ऐसा है, देखिए कि चूंकि आकाशवाणी अवल तो नाम ही बहुत सुंदर है,
1: वाह,
2: आकाशवाणी सुनते ही थोड़ा सा पुराने हमारी जो

0: विरासत है उससे हमारा ताल्लुक होता है
1: जी।
0: तो आकाशवाणी अपने आप में बहुत सुंदर नाम है, और चूंकि जैसा कि रोशन जी ने कहा कि संगीत एक श्रव्य कला है, सुनने की है, देखने का उसमें ज्यादा नहीं है, कलाकार बैठा है और गा रहा है, बहुत ज्यादा देखने का कुछ नहीं है, सितार वादक बैठा है और बजा रहा है। तो आकाशवाणी चूंकि श्रव्य कलाओं के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए बहुत बड़ा काम किया है, और खास तौर से संगीत जैसे श्रव्य काव्य के लिए तो आकाशवाणी वरदान साबित हुआ। और आकाशवाणी का और संगीत का चोली दामन का साथ है। आप ये देखिए कि आपने जैसा बताया अभी कि आज से 90 साल पहले इसकी शुरुआत हुई,
1: जी जी जी,
0: तो 90 साल तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरी उम्र 87 साल है।
1: वाह।
0: और जब मैं 7-1 साल का था, जब हमारे मामा जी ने एक 300 रुपए का रेडियो इतना सा खरीदा था,
1: अच्छा,
0: दो बैंड का, उस समय देखो आप आज से 80 साल पहले 300 की वैल्यू कितनी थी,
1: बहुत बड़ी रकम थी।
0: तो हम शाम को नियमित रूप से उनके सुनने जाया करते थे,
1: अच्छा।
0: और लगातार 12 घंटे वगैरह या 24 घंटे प्रोग्राम नहीं होते थे, बल्कि एक निश्चित समय पे शाम को स्टार्ट होता था, प्रोग्राम शुरू होता था, और एक निश्चित समय पे खत्म हो जाता था,
2: और उसको ट्यून करना होता था तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर।
0: तो फिर हम जो है
3: के भी शुरू हो गए थे सुबह,
0: जब से वो प्रोग्राम शुरू होता तब से वहाँ बैठते
1: जी,
0: पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाने पे अपने घर आते। बाद में फिर क्या हुआ कि मामा जी का ट्रांसफर हो गया, तो हमारे पास रेडियो था नहीं, तो हम हमारे गुरुजी का प्रोग्राम सुनने के लिए या नेशनल प्रोग्राम जो हर शनिवार को 9 से 11 आ जाते थे, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम थे, सभी बड़े बड़े।
1: कौन थे सर
0: जी
1: गुरुजी, कौन थे आपके, उन गुरुजी का नाम बताएं।
0: गुरुजी मेरे IAR शास्त्री, आयधान राव शास्त्री, जो बाद में रेडियो जयपुर पे,
1: अच्छा,
0: चले गए।
1: अच्छा, जयपुर के थे वो,
0: नहीं यही थे,
1: अच्छा, कोटा,
0: बाद में सर्विस में चले गए थे तानपुरा,
1: अच्छा,
0: बजाने के।
1: वाह वाह वाह।
0: तो अब उसके बाद फिर बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि नेशनल प्रोग्राम किसके यहाँ सुने, और उस वक्त क्या है 9 से 11 बजे बहुत आधी रात से हो जाती थी, लोग सो जाते थे,
1: पहले जल्दी सोते थे,
0: तो हाथा जोड़ी करके लोगों से कि यार भैया आज तेरे यहाँ सुनेंगे नेशनल प्रोग्राम, बड़े बेबन से कोई तैयार होता तो
1: अच्छा।
0: वैसे सुनते हम, और आप देखिए कि उस पे हमने बड़ा बड़े गुलाम अली खान साहब का,
3: सब बड़े बड़े,
0: मुझे अब तक याद है, छाड़ दे बोर आँच राग कामोद राग में उन्होंने, हम अभिभूत हो गए हम लोग, और भूपाली में उन्होंने महादेव की एक रचना गाई,
1: अच्छा।
0: तो बड़े गुलाम अली खान उस वक्त आफ्ताब थे साहब संगीत के,
3: बिल्कुल,
0: तो उनको आज सुनना भी
2: वो रहती दुनिया तक आफ्ताब,
3: बिल्कुल,
0: तो उनको सुनना आसान थोड़ी था, वो बड़ी उपलब्धियां हमें मिली, अमीर खान साहब को सुना, सबको सुना, अकबर अली खान साहब को, अमजद अली खान साहब को, और रविशंकर जी को, और रविशंकर जी ने अभी जैसे इन्होंने कहा रोशन जी ने
1: जी।
0: पहले पन्नालाल घोष थे उसके वाद्य वृंद की, वाद्य वृंद की परंपरा हिंदुस्तान में क्लासिकल म्यूजिक में नहीं रही,
1: अच्छा।
0: क्योंकि हिंदुस्तानी म्यूजिक मेलोडियस
2: है,
0: मेलोडी पे
2: हारमोनी की और जगह
0: वो हारमोनी पे होती है वाद्य वृंद। तो पहले पन्नालाल घोष ने कुछ रचनाएं की, और फिर पंडित रविशंकर ने वाद्य वृंद के डायरेक्शन किया, और बहुत अच्छी रचनाएं उन्होंने बनाई, हमने सुनी है वो। और उसके बाद फिर आपको एक वाक्या मजा क्या सुनाता हूँ,
1: अच्छा, हाँ,
0: कि एक सज्जन जो है वो पंचायत का रेडियो ठीक कराने लाए हैं,
1: अच्छा,
0: और ठीक करा के बैटरी का इतना बड़ा रेडियो था, और बड़ी सारी बैटरी उसके साथ थी, तो हमारे घर पे रख गए,
1: अच्छा,
0: कि यार मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूँ यात्रा वगैरह, आके इस रेडियो को ले जाऊंगा,
1: अच्छा।
0: हमारे पास रेडियो था नहीं, तो हम तो लड़ाई रहते थे कि यार कैसे क्या

0: तो हमने उस रेडियो को निकाल के बक्स में से और बैटरी से लगाया तो चर चर तो करे लेकिन आवाज नहीं आवे। तो फिर एक दो भाई के दिमाग में आया एक लंबी सी कील लाके एरियल वाले सॉकेट में घुसा दी उसने, तो वो बजने लग गया। तो साहब आप ताज्जुब करोगे कि दो दो घंटे हम लोग वो कील को पकड़ के बैठे रहते और रेडियो सुनते रहते। फिर दूसरे भाई की ड्यूटी लग जाती तू पकड़ इसको।
1: अच्छा मैं पंडित जी की बात काटते हुए वापस इन्हीं की बात को कोट करते हुए
2: जी जी।
1: एक बड़े गंभीर मुद्दे को मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ।
2: हाँ।
1: कि वो दौर था जिसमें हम मेडिटेशन कर रहे हैं, वो कील पकड़ के बैठे हैं, उसमें जो कुछ भी बज रहा है उसको आपको एक ही बार बजेगा, वो अगली बार बजे ना बजे आपके पास इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो जो ग्रैस्प करने की जो हमारी जो सिस्टम था ना माइंड का, मुझे आज भी याद है डैडी मुझे बैठाते थे रेडियो के सामने और साहब एक बार में सुन के उस चीज को याद करना, इतना शार्पन हो जाता था दिमाग।
0: हाँ तो मैंने बहुत बहुत सारी बंदिशें,
1: इसमें बड़ी गंभीर बात छुपी हुई पंडित जी जो कह रहे हैं। एकाग्रचित होता है रेडियो से आदमी।
2: हाँ पंडित जी कुछ और बता रहे थे आप जी।
0: मैं ये बता रहा था
2: जी
0: कि आकाशवाणी सम्मेलन सुनने के लिए हम लोग लालायित रहते थे। बाद में जब हमारे पास रेडियो आ गया या एक हमारे मित्र ने खरीद लिया तब तो कोई आसानी हो गई थी, वरना कोई संस्था से हम कहते कि भाई कहीं बैठ के सबके सुनने का व्यवस्था करो।
2: अच्छा।
0: और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ओंकारनाथ ठाकुर बहुत दिनों तक आकाशवाणी से नाराज थे।
2: अच्छा।
0: और उनके प्रोग्राम कोई ना इत्तेफाकी थी पता नहीं।
2: अच्छा।
0: तो पहले बार आकाशवाणी संगीत सम्मेलन में ये पता लगा कि साहब ओंकारनाथ ठाकुर गाएंगे।
2: वाह।
0: ओंकारनाथ ठाकुर को सुनना अलंबे चीज थी, मिलना मिलता नहीं था। तो साहब उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम दिया और मुझे अभी तक वो मैंने एक दो, ये जैसे रोशन जी कह रहे हैं, एक दो बार उन्होंने हिस्सा अंदर बोला बड़ैया लाओ रे मैं आसावरी की मैंने याद कर ली और भीमसेन जोशी जी की मैंने याद कर ली, पंडित जसराज की रचनाएं याद की। तो ऐसे हम लोग वाकई इतना ध्यान रखना पड़ता था कि वो एक दो बार ऐसा यंत्र बोल रहे जिसमें हम लोग ग्रैप कर लेते थे। और इसलिए संगीत के मंगलवारी सभा चला करती थी, संगीत का राष्ट्रीय प्रोग्राम जो है वो तो था ही सही। और उसमें क्या है केवल क्लासिकल नहीं था
2: जी,
0: आप देखिए उसमें हमने कर्नाटक म्यूजिक के भी सुने प्रोग्राम, उसमें अपने लोक संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी सुना, उसमें सब तरह की, तो आकाशवाणी ने सभी विधाओं को उन्नति में समान योगदान दिया। और जैसा कि आपने कहा अभी के साहब आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, तो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन तो एक बड़ी उपलब्धि थी हम लोगों के लिए के सारे कलाकारों को सुनने को मिलता था। अभी भी जब भी मौका मिलता है हम सुनते हैं।
2: अच्छा, और कुछ ध्यान आ रहा है किन लोगों को आपने, प्रमुख लोगों को सुना आमने सामने बैठकर संगीत सम्मेलनों में?
0: संगीत सम्मेलन में आमने सामने ज्यादा नहीं सुन पाए
2: जी,
0: हमने रेडियो पे ही ज्यादा लोगों को।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
0: तो अब उसमें देखिए आप रेडियो कई कई जो कॉन्फ्रेंसेज होती है रात रात भर की
2: जी,
0: उनको भी नष्ट करता था, उनको भी रिले करता था। मैंने जो हरिबल्लभ संगीत महोत्सव रात भर चलता है जलंधर में,
1: मेरे डैडी ने तो
0: उसको सुना है,
1: अटेंड किया है बहुत बार,
0: है ना। और कई सारे संगीत सम्मेलन को वो करते थे,
2: सीधे प्रसारित, लाइव प्रसारित,
0: लाइव प्रसारित, तानसेन संगीत समारोह को लाइव प्रसारण होता था, जो सब हमने सुने हैं। और संगीत में संगीत शिक्षा की भी एक क्लासेस चला करती थी।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जब छात्र थे हम तो उससे भी लाभ उठाने की कोशिश करते थे, इसलिए संगीत की उपाधि था मैं हमेशा से बांधता हूँ, आज भी बांधता हूँ।
2: वाह वाह वाह वाह। अच्छा आदरणीय सुधा जी से मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी ने बहुत सारे कलाकारों को एक रोजगार की जो चिंता होती है ना कलाकारों को,

0: हाँ
1: तो बहुत सारे लोगों को आकाशवाणी ने नौकरी दी,
0: जी
1: बड़े बड़े हमारे कलाकार उसमें स्टाफ आर्टिस्ट रहे।
0: जी
1: तो आप इस बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरह से कलाकारों को संरक्षण दिया, उन्हें रोजी रोटी से जोड़ा और उनकी सेवाओं का फिर लाभ लिया आकाशवाणी ने।
0: कलाकार शुरू से अंतर्मुखी होता है,
1: जी
0: लेकिन आकाशवाणी ने कुछ ऐसे पद
1: जी
0: सृजित किए जिसमें उन कलाकारों को ये मौका मिला कि वो वहां जाके अपनी कला का प्रदर्शन करें।

0: कमजोर थे
1: जी.
0: उनको कोई जॉब नहीं था क्योंकि वो संगीत में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिल रहा
1: जी,
0: था
1: जी, जी,
0: घरानेदार बहुत सारे लोग थे तो ऐसे लोगों को आकाशवाणी ने आश्रय दिया. आकाशवाणी ने क्योंकि जगह जगह आकाशवाणी के केंद्र खुले तो सभी जगह उन लोगों को एब्जॉर्ब करने का मौका मिला और बाकायदा आकाशवाणी ने अलग अलग विधाओं के लोगों को.
2: देखिए सुधा जी की बात को बढ़ाते हुए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. जब राजा श्रेय खत्म हो गया तो कलाकारों के सामने बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हुई. तो उस वक्त आकाशवाणी ने हर केंद्र पे चार तानपुरा छेड़ने वाले, चार सारंगी हाँ, वाले और वायलिन वाले और मैंडोलिन वाले, गिटार वगैरह, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रश्रय दिया. तो ये राजाश्रय के बाद वरना उनकी बहुत स्थिति खराब हो रही.
0: तो उनको ये एक मौका मिला जो भी कलाकार थे
1: जी.
0: कि उनको पहचान भी मिली, काम भी मिला और सम्मान भी मिला. तो ये बहुत बड़ा काम आकाशवाणी ने किया कलाकारों के उत्थान के लिए. जो अदरवाइज अन्यथा वो समाज में उनकी कोई उन्हें नहीं पहचान. अरे ठीक है वो तो गाना गाता है, अरे ठीक है तबला तो बजाता है, क्या करेगा तबला बजा के कौन सा पेट भर लेगा. इस तरीके की बातें थी जो उनको सम्मान मिला. वो ये बहुत बड़ा काम आकाशवाणी ने किया. उसके लिए जो हायर अथॉरिटीज थे उन्होंने वो उनका चयन किया और कमेटीज बनाई गई. कमेटीज में एक्सपर्ट्स को रखा गया और उन्होंने सिलेक्शन करके तबले वालों का भी, वायलिन वालों का भी, तानपुरा छेड़ने के लिए भी और ऑर्केस्ट्रा के लिए भी, हर विधा के लिए लोगों का अपॉइंटमेंट किया. एक बहुत बड़ा मौका कलाकारों को मिला. और इसलिए ही उनके परिवार के बच्चे या अन्य बच्चे जिनमें जिनको संगीत में रुचि या समझ
1: जी,
0: थी
1: जी, जी,
0: उन्होंने इस पेशे को अख्तियार करने की कोशिश की और सफलता प्राप्त की.
1: अच्छा डॉक्टर रोशन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई भी कलाकार हम देखते थे हमारे यहाँ चीपा बड़ोद में, वहाँ बहुत बड़े दो कव्वाली के उर्स होते हैं. मैं अपने बचपन को याद कर रहा हूँ. तो वहां पर कव्वाल आते थे
3: जी.
1: तो वो कव्वाल अपने नाम के साथ में और आकाशवाणी कलाकार वो लिखते थे. आकाशवाणी कलाकार
2: सम्मान की बात.
1: तो मैंने देखा हर कलाकार अपने नाम के साथ में आकाशवाणी कलाकार, उसने एक बार भी अगर कार्यक्रम दिया है तो आकाशवाणी कलाकार लिखकर, और ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि उसके जीवन में हुआ करती थी. इसको आप किस तरह देखते हैं?
3: मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये
1: जी.
3: जब रेडियो का ऑडिशन होता है सबसे पहले
1: जी,
3: तो सुधा जी भी उसमें जूरी में, हमारे जयपुर रेडियो में रही है, मैं भी हूँ, अभी भी हूँ.
1: स्वर परीक्षण जो
3: मैं, हाँ स्वर परीक्षण नेशनल एमए भी मैं भी हूँ. मैं
1: जी, जी,
3: जो
1: जी.
3: दिल्ली में हम तमाम हिंदुस्तान के रिकॉर्डिंग
0: होता है,
3: सुनते हैं
0: दिल्ली में, उनका
3: दिल्ली में मैं उसमें भी मेंबर हूँ
1: जी.
3: बड़ा इंटरेस्टिंगली 80 के दशक में कुछ कलाकार, अब वो जो विजिटिंग कार्ड होता है उसमें अपना नाम, टेलीफोन है तो अच्छा है और मोस्टली नहीं होता था तो वहां पीपी नंबर लिखा होता था.
1: अच्छा,
3: ये पीपी नंबर का मतलब होता था प्राइवेट पार्टी, यानी आपके पास फोन नहीं है, आपके अड़ोसी पड़ोसी या 100 मीटर दायरे में किसी के पास है, तो ये सेवा केंद्र था एक तरह से. तो वहां फोन करना होता था कि रोशन भारती को बुला दीजिए, फिर वहां से कोई बच्चा आता था या तो कोई नौकर किसी अफसर का, अफसरों के यही होता था, फिर हम वो जाके अटेंड करते थे. तो ये प्राइवेट पार्टी, यानी वो लैंडलाइन का जमाना होता था, एक तो नाम, एक पीपी नंबर और एक नीचे आकाशवाणी कलाकार. समझिए कि बात बन गई. आपको इतना सम्मान देंगे साहब कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते. आकाशवाणी से पास होना ये उस दौर की बात है. मैडम तो और ज्यादा इस पे प्रकाश डाल सकती हैं, लेकिन ये विजिटिंग कार्ड वाला मेरे सामने ही आया है.
1: अच्छा अच्छा,
3: ये 80 के दशक की बात है. उसमें कार्ड में लिखा होता था डॉक्टर रोशन भारती, गजल गायक, आकाशवाणी कलाकार. फिर उधर टेलीफोन नंबर राइट में कॉर्नर में ऊपर लिखा होता था. फिर उसके बाद दूरदर्शन आ गया साहब. अब तो उनकी ज्यादा वैल्यू हो गई। कह रहे ये तो आकाशवाणी और दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कलाकार।

0: तो वहां कलाकार की वैल्यू उसका इवेल्युएट ज्यादा होता था। अगर आकाशवाणी और दूरदर्शन भी लिखा है तो उसका पैसा ज्यादा हो जाता था, इज्जत ज्यादा हो जाती थी समाज में। तो ये जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, आपने कव्वाली की बात करी
1: जी,
0: तो ये कद जो बढ़ाया है जनाब फनकारों का, ये तो आकाशवाणी ने ही बढ़ाया।
1: तो ये ऑडिशन की प्रक्रिया आप थोड़ा समझाएंगे किस तरह से इसमें ग्रेड मिलती है और कहां तक पहुंचते हैं?
0: देखिए, इसका सिस्टम ये है कि आप अगर अच्छा गाते हैं, अच्छी जगह सीखते हैं, अच्छा ये भी अदब होता था कि पहले मैं सीख लूं, क्योंकि रेडियो वो पैमाना है साहब कि अगर मैंने जेर जबर की गलती कर दी तो एक बार में रिकॉर्ड हो गया तो हो गया, उसको तो सुधार तो सकते नहीं हो आप, है ना। तो हम लोग मुस्तैद होके जाते थे पहले, रेडियो में रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं तो एक एक लफ्ज को, उसके तरीके को, उसके बोलने को, इश्क है तो इश्क ही रहे, इश्क ना हो जाए कंपोजिशन में, क्योंकि डांट पड़ेगी, डैडी की भी पड़ेगी और उस्तादों की भी पड़ेगी। तो अदब में आ जाता था, सिस्टम में आ जाता था, डिसिप्लिन में आ जाता था कलाकार। तो रेडियो में ऑडिशन देने के लिए तो पहले इतना जिगरा चाहिए होता था उस दौर में कि अपने आप को इतना मांझ लें कि जब सामने गाएं
2: कोई गलती ना हो,
0: कोई गलती ना हो। मुझे याद है 81 में मैंने ऑडिशन दिया था।
1: अच्छा।
0: और ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे से।
1: कितने साल के थे आप?
0: मैं 11 बरस का था।
1: अच्छा, वाह।
0: तो मैंने मुझे बी ग्रेड मिला और सी रामचंद्र साहब, नौशाद साहब, खयाम साहब,
1: अच्छा,
0: तीनों जने मेरे, मुझे नहीं मालूम था बीच में हमारे पर्दा लगा हुआ था,
2: पर्दा लगा।
0: और पर्दा भी कौन सा लगाया था साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, बॉम्बे रेडियो में।
1: अच्छा।
0: ये आपके पर्दे लगे ना इस पे, इसको टेप से चिपका दिया था।
1: अच्छा,
0: अब मैं गा रहा था तो मुझे नहीं मालूम कौन बैठा है।
2: हाँ।
0: वो फोर्थ क्लास आया है, वो आपको बुला रहे हैं, तो उन्होंने मुझे देखा और गोदी में बैठा लिया श्री रामचंद्र साहब ने।
1: क्या कहने,
0: कहने लगे बेटा तुम तो बहुत, किसके बच्चे हो, सारा पूछा था। फिर उनको पता लगा कि उस्ताद खानदान से। मुझे अच्छी तरह याद है साहब, उसी दिन हम तीन लोग पास हुए थे।
1: अच्छा।
0: रोशन भारती, दुर्गा जसराज और भवदीप जयपुर वाले।
1: अच्छा, क्या बात।
0: 53 ऑडिशन थे बच्चों के जिसमें से हम तीन क्लियर हुए थे और उसमें मेरी रिकॉर्डिंग उसी दिन स्कूल में रिकॉर्डिंग होती थी, अपग्रेडेशन के लिए बॉम्बे गई और मैं बी हाई हुआ। ये मौजजा है, चमत्कार है मेरे लिए भी और ये रेडियो के इतिहास में भी है कि इनिशियली हमें बी ग्रेड मिलता है, फिर आप बी ग्रेड में 5-6 साल रगड़े अपने आप को, उसके बाद
1: आपने क्या गाया था, थोड़ा ध्यान हो तो सुनाइए ना, बहुत पुरानी बात है।
0: तो बहुत पुरानी, मेरे ख्याल एक गजल गई थी मैंने,
1: थोड़ा सुनाइए जरा।
0: वही ये गाया हुआ तो रात पीलू में और थोड़ा प्रदीप का रंग है इसमें। पंडित जी इजाजत है मैडम।
3: बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: जी
3: सुनाने लायक, केवल आप ही हो, हम लोग नहीं सुना।

तो पंडित जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोक संगीत हमारा एक बहुत समृद्ध, हमारे पास में एक विधा है फोक म्यूजिक की, और हमारा पूरा पश्चिमी राजस्थान तो पूरी दुनिया में अगर कोई फेमस हुआ है तो वो लोक संगीत के आधार पर हुआ है। वहाँ के कलाकारों को मतलब जितना मान सम्मान और जितना कहते हैं कि आर्थिक रूप से संपन्नता वहाँ आई है कलाकारों में, वो हमारे राजस्थान के लोक संगीत की देन है। और फिर यहाँ पर तो हमारा कहते हैं कि भाई हमारा जो राजस्थान का लोक संगीत है वो तो शास्त्रीय संगीत के बहुत करीब है। मांड अपने आप में एक पूरा शास्त्रीय

0: संदीप की एक विधा है।
1: देखिए मैं आपको टोक रहा हूँ पंडित जी, बोले उससे पहले
0: जी,
1: सिर्फ और सिर्फ जितने हमारे सूबे हैं, स्टेट्स हैं, राज्य हैं, क्लासिकल मौसीकी के सबसे नजदीक अगर कोई हिंदुस्तान का फोक है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान है।
0: वाह, तो पंडित जी बताइए, मतलब हमारा जो राजस्थान का लोक संगीत है, ये मतलब रेडियो ने किस तरह से इसको संरक्षित किया और किस तरह लोगों को?
2: बात ये जी के रेडियो अभी तो आजकल तो बहुत चीजें हो गई हैं, गूगल वगैरह, यूट्यूब वगैरह है ना
0: जी,
2: दूरदर्शन वगैरह, लेकिन जब रेडियो ही था तो रेडियो के माध्यम से हम लोग लंगास को, माने मांगणियार को और अल्लाह जुलाई भाई और दुनिया भर के जो कलाकार लोग लोक संगीत के थे तो उनको सबको जान सके। और जो आपने बात कही कि राजस्थान का म्यूजिक, तो राजस्थान के फोक म्यूजिक में दो धाराएं हैं।
0: अच्छा, वाह।
2: एक धारा वो है जो राजाश्रय में रह के कुछ वो जातियां गाती हैं, जो मतलब संगीत जीवी हैं
0: जी,
2: वो तो जैसे मांड हुआ है ना, ऐसी चीजें हुई वो तो गाते हैं, उसमें
0: रजवाड़ी कहते हैं उनको, रजवाड़ी गायन मेरे ख्याल से,
2: तान अलाप भी होते हैं, रागदारी भी होती है, सभी होते हैं। दूसरी धारा है जो सामान्य लोग गाते हैं, जैसे देख बोल शंकर्यारे और इस तरह के
0: तेजाजी गायन है,
2: हरियो पोदीनु, ऐसे तो वो दो धारा स्पष्ट दिखाई देती हैं।
0: जी जी जी जी।
2: तो जो धारा राजाश्रय में पली या राजाओं के साथ रही
0: जी,
2: उन धाराओं में तो बाकायदा रागदारी, वो तो उसको आप लोक संगीत नहीं कह के अगर लाइट क्लासिकल सुगम शास्त्रीय संगीत भी बोल देना तो कोई हर्ज नहीं है। इतना रिच, इतना माला माल किसी भी प्रदेश का मेरे ख्याल से संगीत और नहीं है जितना राजस्थान का।
0: अच्छा आदरणीय सुधा जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे यहाँ से बहुत सारी महिला गायिकाएं पूरी दुनिया पर छाए, वो जैसा कि पंडित जी ने अभी नाम बताया अल्लाह जिलाई भाई, तो पहले महिलाएं गाती नहीं थी, मतलब ऐसे आम जनता में गाना अच्छा नहीं माना जाता था, खासतौर से महिलाओं को तो आने ही नहीं देते चाहे वो कितनी भी सुरीली हो, लेकिन जब वो रेडियो पर आई तो उन्हें पूरा बहुत सम्मान मिला। आपको क्या लगता है कि रेडियो ने महिला जो कलाकार थी, चाहे वो गायन से जुड़ी हों चाहे वादन से जुड़ी हों, तो नया उनके सामने द्वार खुला सफलता का?
3: निश्चित रूप से ये आपका कहना जो है बिल्कुल सही है, ये निश्चित रूप से सही बात है कि रेडियो द्वारा उनको जो प्रचार और नाम मिला और उस नाम की वजह से उन्हें देश में ही नहीं विदेशों में भी ख्याति मिली, तो इसका सबसे बड़ा आकाशवाणी पे ही जाता है इसका।
2: देखिए सुधा जी की बात को बड़ी करते हुए मैं
0: जी, जी, बोलता हूं। जी सर, आपको कुछ नाम याद आ रहे होंगे
2: के बेगम अख्तर को जब शादी के बाद उनके हस्बैंड ने, उनके पति ने गाने से बिल्कुल बिल्कुल मना कर दिया था।
0: अच्छा।
2: और फिर वो बीमार रहने लगी क्योंकि गाना तो उनके खून में बसा हुआ था। तो साहब उनको इतनी सी इजाजत मिली कि आप पर्दे में जाके और लखनऊ रेडियो से
0: अच्छा
2: अपना गाना कर सकती हैं। लखनऊ रेडियो पर जब उन्होंने प्रसारण किया तो साहब इतनी मकबूल हुई, इतनी ज्यादा फेमस हो गई वो कि बाद में तो उनको राष्ट्रपति पुरस्कार तक मिला और तब उनके हस्बैंड भी उनके साथ बाकायदा
0: अच्छा,
2: तो वहां गए
0: अच्छा, अच्छा।
2: राष्ट्रपति भवन। तो मतलब ये है महिलाओं को तो बहुत प्रश्न मिला है इससे, क्योंकि घर गृहस्थी में तो उनको प्रोग्रामों में जाने का तो मौका मिलता नहीं था।
1: बल्कि पंडित जी मैं समझता हूँ कि खास तौर से जो महिला कलाकार सामने आई है हमारे भारतीय परिवेश
0: जी, जी, जी।
1: वो मेरे ख्याल सामने आने की असल वजह ही रेडियो है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था।
2: यही
1: तो रेडियो का बड़ा ही योगदान है।
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: बिल्कुल सही।
0: अच्छा आपने तो बेगम अख्तर पर PhD की है
1: जी जी,
0: तो बेगम अख्तर की गायकी के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे, किस तरह से आपने जब उन पर इतना काम किया है तो क्या क्या चीजें ऐसी उसमें उस गायकी में मिली जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
1: देखिए बेगम अख्तर एक वो नाम है जो गजल की दुनिया में एक जिसे कहते हैं ना किसी भी

0: मुलाकात
1: वाह
0: बताते भी नहीं।
1: कि मैंने एक सोशल मीडिया पर एक प्रोफाइल देखा किसी बालिका का, उसने अपने नीचे लिखा कि हम बेगम अख्तर की गजलें हैं साहब, हर किसी के समझ में नहीं आते हैं।
2: सुभान अल्लाह।
1: तो ये
3: रेडियो की एक बहुत बड़ी वो विशेषता मैं बताऊं कि हमने रेडियो पे ही उस जमाने के सारे बड़े कलाकारों को सुना और उनका परिचय हमें रेडियो से ही हुआ, जिसके फलस्वरूप हमने संगीतिका नाम की संस्था यहाँ शुरू की।
1: अच्छा,
2: बेशक।
3: और संगीतिका में लगभग 300 प्रोग्राम हमने एवरी थ्री मंथ ऑन ईयरली बकायदा 3 दिन के प्रोग्राम किए, ITC संगीत सम्मेलन, रेडियो संगीत, और ये सब कौन कलाकार है जो नहीं आया हमारे यहाँ।
1: वाह वाह वाह वाह।
3: सारे कलाकार, एक ओंकारनाथ ठाकुर जी को छोड़ दीजिए, भीमसेन जोशी वो नहीं आ सके, वरना गिरजा देवी, एन राजम, सारे ही जो भी टॉप लेवल के कलाकार थे उन सबको हमने कोटा में बुलाया। और कोटा में इतना अच्छा,
2: उन तक को मैडम ने बुलाया, राशिद खान,
3: और कोटा में इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया था कि मेंबरशिप से हम एंट्री लेते थे लोगों की।
1: अच्छा।
4: और मैंने तो इनमें से बहुत से कलाकारों के साथ हारमोनियम प्ले किया।
3: हाँ, महेश जी।
2: और हमने
3: हारमोनियम ये बजाते थे, हलीम जाफर खान साहब, और माने मैं क्या क्या नाम गिनाऊं आपको, हीराबाई बरोदकर,
2: शिव
3: कुमार शर्मा, हरी हरि प्रसाद
2: चौरसिया,
3: सारे ही बड़े कलाकार जो भी थे, मालविका कानन, क्या वो राशिद खान,
2: मैंने कहा ना कि इस दौर के जो तानसेन है, राशिद खान साहब, अभी उनका इंतकाल हुआ है, उनको उस जमाने में बुलाया जब उनकी शादी
3: हुई थी शादी हुई, उनकी मिसेज ऐसे जेवर वेवर पहन के स्टेज पे उनके पास जाके बैठी है, और मैं प्रोग्राम कंडक्ट कर रही थी।
1: अच्छा।
3: मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप यहाँ जाइए और यहाँ तानपुर वाले बच्चे बैठेंगे।
2: मैं बच्चा था लेकिन मैंने देखा।
3: परवीन सुल्ताना,
2: परवीन।

0: सुल्ताना दो बार आए, पंडित जसराज दो बार आए,
1: पंडित जी आए, जसराज जी
2: आए, वाह
0: कुमार गंधर्व,
2: अच्छा
3: सब आए लगभग,
0: सारे ही उस जमाने के कलाकार।
2: तो ये संगीती का कब तक सक्रिय रही?
0: जब तक मैं सेक्रेटरी रही।
2: फिर भी थोड़ा सा बताएं
0: उसके हमें। बाद भी तो 98 में मेरा ट्रांसफर हो गया था, मैं टॉप प्रिंसिपल बन के चली गई थी। तब दूसरे सज्जन थे, एक सीएम सक्सेना म्यूजिक लवर थे, वो उसके वो बने, महेश जी और हम और पांडे जी तीन थे जिन्होंने ये संस्था शुरू की थी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: ये संगीत स्कूल में थे और पांडे जी भीम मंडी स्कूल में संगीत के टीचर थे। तो इनसे दोनों से कांटेक्ट किया हमारा, मेरा, मैं जेडीबी में अकेली थी उस समय। तब हम लोग ने ये पहले घरों घरों में जाके करते थे प्रोग्राम, अलग अलग कॉलोनीज में ऑटो में सामान वामान लेके टेम्पो में जा रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं। और उसके बाद ये, और मेरे हस्बैंड गेट पे बैठते थे, कलाकार जो भी मतलब संगीत के टीचर थे उनको भी नहीं आने देंगे जब तक कि आप उसकी मेंबरशिप नहीं ले लोगे।
2: अच्छा पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब क्योंकि हमने संगीत की बहुत सारी विधाओं को छुआ, लेकिन अभी फिल्म संगीत जो एक आम आदमी की गुनगुनाहट है, जो शास्त्रीय संगीत नहीं जानता न उपशास्त्रीय संगीत वो समझता है, लेकिन फिल्म संगीत उसके सामने उसके कानों में पड़ता है, उस साथ साथ गाने लगता है। आज भी स्थितियां यही है। और आप ने एक पूरा समय देखा है, एक आपके गुरुत्व में या कहें कि आपके शिक्षण में एक बहुत बड़ी देश की सिंगर बॉलीवुड में है, श्रेया घोषाल है। तो हम सबको जब आपका नाम जुड़ता है, कोटा शहर का नाम जुड़ता है, तो हम सब बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। फिल्म संगीत को रेडियो ने या यूं कहें आकाशवाणी ने कहां से कहां पहुंचा दिया, आप इस बारे में क्या कहेंगे सर?
3: देखिए
2: जी,
3: हमारे बचपन में आकाशवाणी से फिल्म संगीत रिलीज नहीं होता था।
2: अच्छा,
3: रिलीज नहीं होता था।
2: अच्छा,
3: कुछ बंदिशें लगाई थी केसकर साहब ने, जो उस वक्त के मिनिस्टर थे, तो फिल्म संगीत नहीं बजेगा।
0: अच्छा, वो बजता था बिना का।
3: उसके बाद रेडियो सीलोन ने जो है वो सारे उस पर कैप्चर कर लिया, सारे बिजनेस को
0: सीलोन से होता
3: और सारे उसका वो था, तो हेड ऑफिस तो बम्बई में था, नाम से सीलोन के चलता था और सब लोग उसको सुनते थे।
2: अच्छा अच्छा,
3: तब रेडियो ने देखा कि तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई, तो उन्होंने आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम
2: विविध भारती
3: चालू किया। और फिर देखिए विविध भारती ने इतने सुंदर कार्यक्रम करना शुरू किए कि आज कोई सीलोन का नाम भी नहीं जानता।
2: जी जी जी जी,
3: हमारे बचपन के अलावा कोई नहीं जानता रेडियो सीलोन।
2: तो निश्चित रूप से आज जो संगीत का हमारे देश में वातावरण है, और चाहे वो उपशास्त्रीय संगीत हो, चाहे संगीत की भाषा से परिचय अगर लोगों को मिला कि उसमें किस तरह से उद्घोषक जब शास्त्रीय संगीत या अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो वो उसमें बताते हैं कि विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, ये सारी चीजें जब आई हैं तो रेडियो के भाषा से ही आई मेरे ख्याल से, है ना। तो डॉक्टर रोशन साहब, आप परिचर्चा का इसका कार्यक्रम का समापन हम करेंगे क्योंकि समय जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे परिदृश्य पर जो 90 सालों का सफर है, इसमें संगीत रेडियो के साथ एक बहुत ही आत्मीय और बहुत महत्वपूर्ण जुड़ाव के साथ में रहा है। और एक बार फिर मैं कहूंगा कि अगर हमारे देश को सुरीला बनाया है तो वो आकाशवाणी ने बनाया है, आप क्या कहेंगे इस बारे?
3: देखिए एक मिनट रोशन जी से पहले,
2: जी
3: आपने अभी श्रेया घोषाल का नाम लिया,
2: हाँ जी हाँ जी,
3: तो मुझे याद आता है कि श्रेया घोषाल का पहला रिकॉर्डिंग कोटा आकाशवाणी से ही हमने करवाया था।
2: वाह,
3: श्रेया घोषाल का और क्षितिज तारे वगैरह का,
2: जी हाँ,
3: आदर्श सक्सेना का, जो सब बाद में अच्छे कलाकार।
2: मैं ही लाया था आपका हारमोनियम उठा के जब श्रेया घोषाल की रिकॉर्डिंग यहाँ हुई थी।
0: शुरू में तो हम जेडीबी से आपको इंस्ट्रूमेंट।
3: हाँ जी रोशन जी,
2: जी
3: आपको इंटरप्ट किया मैंने।
4: नहीं, आप बड़े हैं। रेडियो और संगीत, इसको कम लफ्जों में अगर मैं बयान करूं,
2: जी
4: रेडियो और संगीत इज इक्वल टू डिसिप्लिन टूवर्ड्स म्यूजिक, टूवर्ड्स लैंग्वेज, टूवर्ड्स डिलीवरी। एक ही वक्त में आपको इतना मज जाना है कि गलती की कोई संभावना ना रहे। संगीत और आकाशवाणी, ये है साहब मेरी नजर में।
2: जी सुधा जी, आप बताएं कुछ कंक्लूड के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप आज के इस कार्यक्रम में?

0: आज के जमाने में जरूर हर हाथ में मोबाइल और मोबाइल में साक्षात हर किसी कलाकार को सुना जा सकता है, लेकिन जड़ में क्योंकि आकाशवाणी ही है, शुरुआत क्योंकि आकाशवाणी ने ही की है, तो वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है, वो फिर भी हमेशा कायम रहेगा।
1: देखिए, और मुझे लगता है कि इससे अच्छा जरिया सीखने का, इफ यू वांट टू बिकम ए ट्रू सीकर, ट्रू लर्नर, तो जहां आपका ध्यान ना भटके, अभी इस झुंझुने में आप खोलेंगे 50 ऑप्शन आ जाएंगे, और 50 में तो आप भटकेंगे, यहाँ तो एक है, एक डिलीवर करने वाला है और एक रिसीवर है, यहाँ कहाँ भटकेगा आदमी। तो रेडियो का तो साहब कोई तोड़ हो नहीं सकता,
0: हो ही नहीं सकता, ये निश्चित बात।
2: पंडित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में?
3: ऐसा है कि जैसा सुधा जी ने कहा, जो सुनने से ही ताल्लुक रखते हैं वो अभी भी आकाशवाणी से बाकायदा करते हैं। और जैसा मैंने अभी पहले जिक्र किया था कि आपके प्रोग्रामों में आकाशवाणी की एक खास बात ये भी हुई ना असल में, कि वो लोगों से डायरेक्ट जुड़ाव कर लिया उसने, फोन के माध्यम से, इसके माध्यम से। तो जैसे कि आप रात रानी के फूल एक प्रोग्राम चलाते थे, तो उसमें बाकायदा लोग फोन करके पूछते थे, उनसे पूछते थे कैसे हाल है आपके गांव में,
2: हेलो आकाशवाणी,
3: हाँ
2: हेलो आकाशवाणी,
3: हेलो आकाशवाणी,
2: अभी भी होता है,
3: कैसे कैसे हाल है गांव में, आपके खेती कैसी है।
2: जी जी जी।
3: तो मतलब ये है कि आम आदमी आकाशवाणी से
0: साक्षात जुड़ाव,
3: जुड़ाव सा हो गया।
2: जी जी जी।
3: जबकि दूरदर्शन वगैरह में ये जुड़ाव नहीं हो सकता, उसमें उधर की बात सुननी पड़ेगी आपको, आप कुछ भी नहीं कर
1: कुछ इस बात को यूं समझ लीजिए रामनारायण हल्दर साहब
2: जी,
1: कि अगर आपको एक मजबूत और सच्चा कलावंत तैयार करना है तो उसकी जो ट्रेनिंग सेंटर है
2: जी,
1: वो तो सिर्फ रेडियो स्टेशन ही हो सकता है, जहां आपको एक बार में सच्ची बात कहनी है, अगर जरा सा भी झूठा हुआ सुर तो आप पकड़े जाएंगे। मैं संगीत की बात कर रहा हूँ।
2: जी जी जी जी। तो श्रोताओं, आज हमने चर्चा की भारतीय संगीत के विकास और इसके प्रचार प्रसार में आकाशवाणी का योगदान। ये बड़ा योगदान है, और इस छोटी सी बातचीत में उसके केवल हम छोटे से अंशों को छू पाए हैं। आकाशवाणी का इस क्षेत्र में महान योगदान है, और उस पर बहुत रिसर्च की मुझे जरूरत लगती है कि कोई भी कई PhDs इस पे हो सकती हैं इस काम पर। और आज इस विषय पर हमारे बीच में आदरणीय पंडित महेश चंद्र जी शर्मा जो गुरु जी हैं, डॉक्टर सुधा अग्रवाल जी जो बहुत ही वरिष्ठ संगीत शिक्षिका हैं और वाणिज्य गवर्नमेंट कॉलेज से आप सेवानिवृत्त हुई, और डॉक्टर रोशन भारती साहब जो राजकीय कला महाविद्यालय में अभी प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं, बहुत सारे पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, देश विदेश में अपनी परफॉर्मेंस उनकी होती रहती हैं। तो आप सब ने हमें समृद्ध किया, हमारे श्रोताओं को समृद्ध किया। आपकी बहुत ही मधुर स्मृतियां, जो इतने सालों की स्मृतियां थी, वो आज हमारे साथ साझा की आपने। हम आकाशवाणी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं।
1: हम सभी तीनों जने समृद्ध सुर में
3: आपको
1: बहुत शुक्रिया कोटा आकाशवाणी सेंटर का, कि आपने ये खुशबू अभी तक बरकरार रखी है, और ईश्वर हमारी मुख से जो बातें निकली है वो हमारी आवाम तक, आम जनता तक पहुंचे, और रेडियो का ये सुनने सुनाने का सिलसिला यूं ही जारी रहे। थैंक यू,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: अभी श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में हमारे केंद्र से प्रस्तुत एक परिचर्चा। भारतीय संगीत के विकास, संवर्धन और प्रचार प्रसार में आकाशवाणी का योगदान। इस परिचर्चा में भाग लिया वरिष्ठ शास्त्रीय संगीत मर्मज्ञ एवं गुरु पंडित महेश चंद्र शर्मा, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा से सेवानिवृत्त प्राचार्य और वरिष्ठ संगीत शिक्षिका डॉक्टर सुधा अग्रवाल, और आकाशवाणी के टॉप ग्रेड गजल गायक एवं राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के प्राचार्य डॉक्टर रोशन भारती ने। इस चर्चा का संचालन किया आकाशवाणी कोटा के वरिष्ठ उद्घोषक एवं कवि रामनारायण।

0: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही आप हमें न्यूज ऑन AIR के ऑफिशियल ऐप पर भी सुन रहे हैं। आकाशवाणी का जो ऑफिशियल ऐप है न्यूज ऑन AIR, उस ऐप पर भी आप हमें सुन रहे हैं। श्रोताओ, रात्रि के 10 बजने को हैं। अब से लेकर रात्रि के 11 बजे तक श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: छाया गीत के सुनने वालों को जयंत का नमस्कार।
1: पतंगा पतंगा जल जल जल मर जाए ये दीपक झूम झूम।

अग से खेला ये परवाना, मन की अगन को है नहीं जाना। आग से खेला ये परवाना।

0: गंगा जल जल जल मर जाए, ये दीपक झूम झूम लहराए।
1: दिल तो चाहता है छोड़ कर के दुनिया, बस जाए तेरी आंखों में। महकते दिल का अरमा यही है कि बस के रह जाए

रहेंगे साथ जिंदगी भर, इस दिल का यही वादा है। दे देंगे जान तुम पर ओ दिलबर, अब तो यही

घेर लिया है तेरी महकती जुल्फों ने, लिपटा हूं तो लिपटा ही रहूंगा, मिला है सुकून तेरे पलकों की छांव में, जो बैठा हूं तो बैठा ही रहूंगा।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे पहले हिंदी, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार, उसके बाद श्रोता सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु

0: अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: contribution, and the farmers of this country have worked hard through the ages to make India food secure. In fact, just recently I was talking to High Commissioner of African Nation, South Africa. He was mentioning in the context of the India-Africa Forum Summit, which of course could not help place, that the entire India, the kind of food basket India has, that not only it produces for its own 1.4 billion, but also exports. So he said it's much more what the population of Africa, I mean, so they said we're looking to countries like India, which have. So this tells you the long journey our farmers have made in this country, and in the last decade, how much of extra effort is being put in by the government or across the pillars Mr. Anand mentioned in particular, because they are multi-pronged. As far as you said, what are the three takeaways? I mean, there could be many for different people, but I think some of the logistical issues that have been problematic for this country is to ensure irrigation. We are largely still rain-fed irrigation, so the government has been addressing this in multiple, including micro-irrigation, and one of the things is per block more crop, which is talking of micro-irrigation drip, and this has been again going on for almost a little over two decades, because I remember way back in the year 2000, when Mr. Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, he sent a mission under then, I think, Mr. Chandrababu Naidu to work on this. So it has been a constant work in progress back there. I think that one of the technological driven aspects is the Namo Drone DV, which is now using modern technology, as Chang mentioned about ENAM, using the technology for market access. Now you're using the drone technology by training women to operate as a pesticides, help them in modern farming.
1: Yes.
0: Lowering the cost, because agriculture, we know, remains a labor intensive in sector. Yes. And increasingly, the hands get costly, because when you employ more people, obviously the farm cost goes. So government is mix and match kind of a thing, how to use technology and how to bring a better thing. So I think these are a couple of issues, but I also believe the larger aspect is the Agriculture Infrastructure Fund, which has a massive outlay to catalyze the creation of post-harvest management infrastructure, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean reforms within the sector that the government is looking at the problems that have been affecting this particular sector.
1: ओके मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं. जो मैंने अभी मिस्टर आनंद मिस्टर प्रसाद से पूछा, वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है, जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी फिगर्स में, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख 2-3 इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन?
2: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था, वो है एमएसपी का फिक्सेशन. पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था. आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
1: जी,
2: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा. लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है, सबके सामने 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है. शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा, ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है. कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है. और अब मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है. चना का देख लीजिए, चना ऊपर है. व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है. इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा, मतलब 50-100 रुपए नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहां पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस. तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो MSP से ऊपर है या MSP के बराबर के पोजीशन में है,
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है।

0: उसको
1: बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो। और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो 3 फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया, जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे कोई भी स्कीम हो।
0: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमेटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें MSP पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को MSP के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
2: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल MSP वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, वो 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने MSP के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए, इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की MSP थी अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि MSP को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
0: जी।
2: क्रेडिट की व्यवस्था में KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास KCC अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को DBT कर देते हैं, हमारे पास DBT का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे दर्शाता है कि सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। हाँ। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूँ, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है, और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्योरमेंट में और एमएसपी

0: में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था
1: जी।
0: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी, उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में, ऐसी नीति बनाई।

0: पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
2: सुनील जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, उसके खाते में पैसे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको इस, और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है, ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
2: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखे होंगे, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनी जी,
1: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल?
0: देखिए, जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
1: जी।

0: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नियत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा। ये
1: पैक्स जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज
0: जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ है वन नेशन वन राशन कार्ड और वो भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सकें और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर है इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से सारी चीजें हो रही है। मेगा फार्म फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनके जरूरत
0: क्या है, ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए, जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है। रहा है। चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है कंप्रेस बायोगैस में, और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं।

0: जी
1: और तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टरबाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही है, तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
0: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं, ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहां पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
0: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओ होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
2: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी, उनको बिजनेस बढ़ाना है। और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
0: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
2: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं। और अपने फार्मर को कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट ऑफ जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं, तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
0: So that collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years. Can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
2: See, fertilizer in

अभी श्रोता सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला, जिसकी थीम थी किसान सशक्तिकरण। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इसी के साथ हमारी आज की अंतिम प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।